0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: पूजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं तो लगता है हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये पिछले जन्मों का है तो इस जन्म में कर्म क्यों फल मिल रहा है इसका? मतलब
2: क्यों? फसल आपने बोई है तो काटना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी काटेगा। आज कत्ल करता है 10 साल मुकदमा चलता है, 20 साल की सजा होती है। कानून व्यवस्था है, ऐसे ही हमारी भागवतिक कानून व्यवस्था है। भीष्म जी सर सैया पे पड़े हुए हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं 70 जन्म तक देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे ये दंड मिले कि 6 महीना बाणों की सैया पर। तो भगवान ने कहा 100 के ऊपर चलो। एक बार आप राजा थे और एक सांप को उठा करके बमूल के पेड़ में बड़े बड़े कांटों में ऐसे डाल दिया और वो 6 दिन तक तड़प तड़प करके मरा, उसी का परिणाम आपको 6 महीने बाणों की सैया में। तो एक बार किसी एक आदमी का कत्ल किया तो उसको 50,000 जुर्माना या 1,00,000 जुर्माना और आजीवन सजा, क्या दंड मिलते हैं? नहीं मिलते। तो हमारे तो न जाने कितने पाप हैं। अब कौन ऐसा शरीरधारी है जो झूठ नहीं बोल रहा? कौन ऐसा शरीरधारी जिससे पाप नहीं हो रहा? ये तो बात कह देना कि हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल हम अविवेक पूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे गलतियां होती हैं और उसी भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है, क्योंकि वहां किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से और कुछ है ही नहीं तो उसको गवाही की क्या जरूरत है, वो देख रहा है। तो हमको बहुत धैर्य पूर्वक चलना है। देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की रचना 2 कर्म से हुई है, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है, केवल पुण्य से देव देह का निर्माण होता है जो स्वर्ग लोक, मार लोक, जनो लोक, तप लोक, सत्य लोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी, अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया, कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। वो पूर्व कर्मों का विधान चल रहा है। तो फिर मनुष्य जन्म में महानता क्या है? अब नवीन हमसे पाप ना होने पावे, अब नवीन कर्म हम ऐसे ऐसे समझ समझ के करें कि हमारी आगे की जो जन्म हो या आगे जो हमें मिले वो बहुत अच्छा ही हो, पाप कर्म नहीं होने चाहिए। अब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, अब लो नशानी अब ना नशही हो। तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि अपने कर्म को ही भोगना पड़ रहा है। इसमें बिल्कुल संशय न कीजिए कि मैंने तो पाप नहीं किया। किसने प्रश्न किया था? ईमानदारी से देखो, सखी वृंदावन में बैठी हो, ईमानदारी से जब से तुम्हें याद है तब से अब तक देखो, केवल इसी जन्म में क्या आपसे पाप नहीं हुई? क्या आपसे गलती नहीं हुई? आप विचार करके देखिए, हमसे पूर्व जन्म में कितनी गलतियां हो गई हैं, इतनी गलतियां हो गई कि भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है, मेरे कर्म से मनुष्य शरीर नहीं मिला। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। अब भी भगवान की कृपा देखो कि आप साधु समागम में बैठी हो, आप वृंदावन आई हो, संत समाज में बैठी हो, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान तो आपको दुलार ही कर रहे हैं, भगवान तो आपको कृपा ही कर रहे हैं, पर हमने गलती की है तो वो भोग तो हमें भोगने पड़ेगा।
1: उमर जी, इस जन्म का कब भोगना पड़ेगा?
2: अगला।
1: जो अभी जो वर्तमान में गलतियां,
2: अगला।
1: और ऐसा भी हो सकता है कि इसी जन्म में भी उसका दंड मिल जाए?
2: भयानक अपराध, भयानक अपराध। जैसे आप संत द्रोह कर दो, संत निंदा कर दो, किसी संत को मार पीट दो, फिर आपको भयंकर आपको कष्ट, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई के सुकृत बहु जन्म के छिन्नमिदायक को, तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा। तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा, तुरंत भयंकर कष्ट देने वाला योग लग जाएगा।
1: पर ये भागवतिक विधान है,
2: भागवतिक विधान है। दो मिनट में किसी को मार दिया, इसके बाद आजीवन कारागार, और उसको ऊपर से बोले 1,00,000 रुपया जुर्माना। तो ये जो हम भोगने आते हैं मृत्यु लोक में, जुर्माना भोगने आते हैं। मूल सजा तो नरक में मिलती है, ये जुर्माना यहां होता है, उसको भोगना होता है। तो जो हमें भोगने को मिला उसे मिल, आगे हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आगे हम अच्छा भजन करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा।
1: जी लोग कहते हैं नरक तो किसने देखा है,
2: अब कह दो कि किसने देखा। जब चोरी करोगे और जब तुम्हारे डंडा चलेंगे और जब जेल जाओगे तो अपने आप जान जाओगे कि जेल किसे कहते हैं। बोले किसने देखा है जेल। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब हमें बहुत छोटे हैं, कूप मंडूक हैं, जैसे कुआं का मेढक है ना, एक समुद्र का मेढक गया तो कुआं के मेढक ने कहां से आए, बोले समुद्र से। बोले तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है, इधर से इधर उछला कुआं का मेढक, बोले इतना बड़ा है, बोले नहीं, बोले इतना बड़ा है, बोले नहीं, बोले जिंदगी भरती उछलता रहे तो भी तू समुद्र की थाह नहीं पा सकता। अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान ने रचा है, स्वर्ग नर्क पाप पुण्य उसका फल दोनों रचे, और आपको छूट दे दिए, आप पाप कमा लो या पुण्य कमा लो। तो मनमानी आचरण करने में कोई तो मानता नहीं, और जब परिणाम आता है तब भगवान को कोसता है। तो ये विधान भगवान का बनाया हुआ आपके कर्म के अनुसार है, आपने जो कर्म किया उसके अनुसार विधान बनाया हुआ है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, शास्त्र को जानने वाले होते हैं, एक भी कदम गलत नहीं रखते। ए भाई मैं नहीं पाप कर्म नहीं करूंगा, तो मुझे मार डालो, पाप कर्म नहीं करूंगा, चाहे जितना कष्ट दो मैं अधर्म नहीं करूं। क्योंकि जानते हैं कि अधर्म जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लग करके ऐसा फलीभूत होगा कि हमारे पुरखा पानी पा जाएंगे भोगते भोगते। तो ये भगवान का गलती थोड़ी है कि यार एक को तो इतनी सुख सुविधा दे दी, एक को इतनी दुख दुविधा दे दी, नहीं, दोनों के कर्म है। उसने कर्म किया उस जगह पहुंच गया, उसने कर्म किया इस जगह पहुंच गया। एक बार राजसूय यज्ञ में एक चीटा एक दाना लेकर के चावल का, और एक टांग टूटी हुई थी, तीन टांगों से बड़ी मेहनत से चल रहा था। अर्जुन जी ने देखा, भगवान से कहा, सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण, क्या इस पर कभी कृपा नहीं होगी, ये बेचारा चीटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से ले जा रहा है। तो भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं मुझे पता है, ये 14 बार इंद्र बन चुका है। राजसूय यज्ञ का वो चीटा जो एक दाना चावल बड़ी मेहनत से ले जा रहा था, वो 14 बार इंद्र बन चुका है। महाराज नहुच इंद्र के पद में थे, और व्यभिचार प्रवृत्ति से इंद्राणी के साथ भाव गलत किया तो तुरंत जो है अजगर की योनि में आ गए। कर्म तुरंत देखो ना, बड़े बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप अपने कर्म जहां उत्तम किए तो आप चढ़ते चले जाएंगे। बुद्धिमान वही है जो सुख दुख को भोग कर भजन करते हुए नया पाप ना करे और अपने जन्म को भगवान में समर्पित कर दे। यहां का यश कितने मिनट का, जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहां जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे, और तुम्हारे साथ जाएगा क्या यहां का बैंक बैलेंस, यहां की वाह वाह, यहां की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा, उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो, जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए, आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो यह तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि, पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो। अब बम्बूल बोओगे दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेकूफी होगी, गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बूल बोओगे तो बम्बूल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, या मनमानी आचरण करते हैं इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं, यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे, लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता तो भगवान को कोसते हो। भगवान एक सर्व समर्थ पिता है जो तुम्हें दे दिया, अब तुम उसका वर्ताव क्या करते हो, अपनी श्वासों का, अपनी बुद्धि का, ये तुम देखो। अपनी श्वासें और बुद्धि गंदे कामों में लगाओगे बोले सफाया करवा दिया, गर्भ गिरा दिया। अरे इतनी हमारे वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाएं रखी है कि आप वहां तक पहुंचो ही मती, जब गर्भ आ गया है तो उसको नष्ट करो ही मती, वो भगवान का जीव अंश है, अब आप उसकी हत्या करोगे उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब दंड मिलेगा बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं, पराए पुरुष से व्यभिचार करोगे हमने कोई पाप नहीं किया, पराई स्त्री से व्यभिचार करोगे हमने कोई, हमारा शास्त्र कह रहा है ये व्यभिचार है ये पाप है, जिस स्त्री को स्वीकार करे आजीवन उसी पर ही अपने जीवन को निर्धारित रखे, किसी दूसरी स्त्री से सहवास न करे, एक स्त्री जिस पति को स्वीकार करे उसे भगवान मान करके आजीवन निर्वाह करे, ये हमारे भारत की पद्धति है। हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना पीछे, ये अभी चला है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्हीं के बाद ये चला है, नहीं हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना, हम अपने बचपन में कभी ये नहीं सुना कि उनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया या उनके पति ने, कभी नहीं, आजीवन संबंध निर्वाह करना ये हमारे भारत की पद्धति है, भारत है विदेश नहीं है कि आज इसके संग कल उसके संग, ये नहीं, यहाँ धर्म की मर्यादा है, ये परम पवित्र देश है जहाँ गंगा यमुना और रामकृष्ण के अवतार होते हैं, वो ये पवित्र देश है, तो ये हम कभी भगवान पर आरोप न लगाएं कि उन्होंने हमें दुख क्यों दिया संकट क्यों दिया, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए, आपका ही किया हुआ कर्म परिणाम आपके सामने आता है।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
13: श्रोता लोग प्रणाम, सुप्रभात, इस सुबह सवेरे के सुहाना मौसम में स्वागत बरुआ सबके।

सबसे पहले बताएं प्याज के बारे में। सफेद प्याज के गुलाबी, लाल और पीला प्याज के किस्म से उत्तम मानल गइल बा। प्याज के भोजन के साथ कच्चा रूप में ही प्रयोग करे के चाहिए, ताहे कि पाके से ओके खाद्य गुण नष्ट हो जाला। प्याज एगो उत्तेजक आहार है, अतः एकर प्रयोग अधिक मात्रा में ना करे के चाहिए। प्याज के बीज से वृय के मात्रा बढ़ेला और दांत में लागल कीड़ा नष्ट हो जाला। प्याज के पत्ता में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड पावल जाला। प्याज के सेवन से पेशाब खुल के आवेला और बलगम पिघलेला। औषधि प्रयोग में प्याज के रस ही प्रयुक्त होला। तो दोस्तों चले जानल जाओ कि प्याज के प्रयोग से कौन कौन बीमारी से पीछा छुड़ावल जा सकेला। बाजीकरण, बाजीकरण में सफेद प्याज के छील के लुगदी बनाई और मक्खन में भूरा रंग तक तली। यदि ई तलल प्याज के एक चम्मच मात्रा रोजाना शहद के साथ सेवन कैल जाए तो ऐसे काम शक्ति बढ़ी और यौनांग भी सबल हो जाए। ई उत्तम बाजीकरण के काम करेला। पेशाब में जलन होकल पेशाब रुकल में यदि पेशाब करते समय जलन हो रहा होके तो एक चम्मच प्याज के लुगदी के 500 ग्राम पानी में उबाली। आज जब मात्रा आधा शेष रह जाए तो ओकरा के ठंडा करके छान ली और वो पानी रोगी के पिलाई। ऐसे पेशाब के जलन दूर हो जाई। प्याज के कद्दूकस करके 10 गुना चीनी के साथ रोगी के दी। ऐसे पेशाब के रुकावट दूर हुई और पेशाब के निर्बाध प्रवाह पुनः चालू हो जाई। दिल के दौरा में प्याज पर 7 वर्ष तक शोध करे के बाद यदि 100 ग्राम कच्चा प्याज रोजाना खाई जाए तो दिल के दौरा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, खून में थक्का बने के प्रवणता और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ल सामान्य हो जाए, जैसे हृदय की प्रणाली सुचारू रूप से काम करे लगी। हैजा होके पे हैजा के इलाज में प्याज एगो प्रभावकारी साधन है। 5 से 6 चम्मच प्याज के रस में 7 काली मिर्च डाल के बारीक पीस ली और ई रोगी के दी। ऐसे प्याज कम लगी और बेचैनी, वमन और दस्त, सिरे की शिकायत भी दूर हुई। ऐसे अधिक प्रभावकारी बनावे खातिर इमें थोड़ा सा चीनी मिला दी। खूनी बवासीर में 30 ग्राम प्याज के पानी के साथ बारीक पीस ली। इमें 60 ग्राम चीनी मिला के रोगी के देवे से बवासीर रोग में खून आवल बंद हो जाए। मिर्च मसाला और खटाई के प्रयोग उपचार के दौरान ना करें। दोस्त लोग अबे हमनी के जननी है सन प्याज के बारे में। अब चली जान लिहल जाओ घिग्वार यानी ग्वार पाठा के बारे में। पाठा के पौधा स्वयं ही खेत के किनारे, जंगल में या नदी किनारे पैदा हो जाला। आयुर्वेद में एक सिनग्ध, भारी, शीतल प्रकृति वाला, तिक्त स्वाद में मधुर, विपाक में कड़वा, वृय बलवर्धक, रक्त शोधक, वातहर तथा नेत्र हितकारी मानल गइल बा। प्रयोग जिगर, तिल्ली, शोथ, खांसी, दमा, कब्ज, अंड वृद्धि, त्वचा और रक्त विकार के दूर करे में भी सहायक मानल गइल बा।

0: यूनानी चिकित्सा में एक शुष्क गर्म कब्ज हरी वाला रक्त शोधक रज और मूत्र प्रवर्तक अमाशय के बल देवी वाला जिगर तिल्ली के विवर्धन के कम करे वाला। पाचन सुधारक नेत्र खातिर हितकारी कृमि नाशक संधि विकार में लाभकारी और बवासीर में गुणकारी मानल गईल बा। घिग्वार के प्रयोग अनेक सौंदर्य प्रसादन में भी कई जा रहल बा। एकर प्रयोग में सावधानी ई बरते के बा कि प्रसूता स्त्री जब तक बच्चा के स्तनपान करा रहल होके ता एकर सेवन ना करे। एही प्रकार गर्भवती स्त्री भी एकर प्रयोग ना करे। यदि कोनो रोग के कारण शरीर के कोनो अंग में रक्त स्त्राव हो रहल होके तब भी एकर प्रयोग वर्जित बा। यदि एकर प्रयोग निर्दिष्ट मात्रा से अधिक कर लियल जाए तो दस्त और मरोड़ शुरू हो जाए। तो दोस्त लोग चली जानल जाओ घिग्वार के रोग उपचार के बारे में। कफ विकार में यदि कफ अधिक होके छाती में रुकल होके और बाहर निकले में कठिनाई होके तो घृत कुमारी के रस छाती पर मली ऐसे आराम मिले। खांसी में आधा चम्मच ग्वार पाठा के रस लेके उसमें एक चौथाई भाग सौंठ और एक चौथाई भाग काली शहद मिला के पिलाई। चोट लागे पे घाव के स्वच्छ करे के बाद घाव पर ग्वार पाठा के रस लगाई ऐसे घाव पाके ना पाई। ज्वर में ग्वार पाठा के रस में हल्दी डाल के रोगी के पिलाई और पंजा तथा माथा पर ई रस के मालिश करी। साथ में रोगी के सुदर्शन चूर्ण भी दी ऐसे बुखार उतर जाई। पेट दर्द और वायु विकार में ग्वार पाठा की सब्जी बना के रोगी के खिलाई। यदि पेट में गैस रुकल होके तो ग्वार पाठा की गुदा लेके उसमें जीरा काला नमक सेंधा नमक और हल्दी मिला के रोटी बनाई और रोगी के खिलाई ऐसे गैस और पेट दर्द दोनों में आराम मिलेगा। विकल्प के रूप में ग्वार पाठा के बारीक टुकड़ा काट ली उसमें जीरा अजवाइन सेंधा नमक और नींबू के रस डाल के शीशी में बंद करके 5 से 7 दिन पड़ा रहेगी। जब पेट दर्द गैस और अपचन के शिकायत होके तब 3 टुकड़ा मुंह में रख के ई रस के चूसी या अचार के तरह सेवन करी तो ई सब रोग में राहत मिली। जिगर के सूजन में सेंधा नमक या काला नमक मिला के रोगी के ग्वार पाठा के रस पिए के दी। बवासीर में 15 से 30 ग्राम ग्वार पाठा के रस रोगी के पिए के दी। साथ ही घिग्वार के गुद्दा में हल्दी के चूर्ण मिला के मस्सा पर लगाई ऐसे काफी राहत मिली। दांत में दर्द व दांत के हीले में दांत पर ग्वार पाठा के छिलका रगड़ी और चबाई ऐसे ये दोनों रोग में आराम मिली। आग से जलन पर ग्वार पाठा के पत्ता के चीर के उसमें से गुद्दा निकाल के जलल होकल स्थान पर दिन में 2 से 3 बार लगाई ऐसे शांति मिली और जलन कम हुई और घाव भी शीघ्र भरी। शारीरिक बल और पुष्टि खातिर ग्वार पाठा के 3 से 4 पत्ता के चीर के उसमें से गुद्दा निकाल के गिलोय और नीम के चूर्ण के 1 चम्मच मिला ली। इसमें से रोजाना 2 से 4 चम्मच खाई तो शरीर में बल वृद्धि हुई और शरीर पुष्टि हुई। हिचकी आवे पे ग्वार पाठा के 2 चम्मच रस में आधा चम्मच सौंठ के चूर्ण मिला के सेवन करे से हिचकी बंद हो जाए। सूजन में घीग्वार के पत्ता में पीसल हल्दी और जीरा डाल के लेप तैयार करें और इस सूजन के स्थान पर लगाएं। ये प्रयोग कई बार करे से सूजन दूर हो जाए। यदि शरीर में कहीं गांठ फट जाए तो घीग्वार के गुद्दा में हल्दी के चूर्ण और लहसुन मिला के प्रभावित स्थान पर गरम गरम लेप करें तो ऐसे गांठ दब जाए। दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही। कहे कि अब वो समय आ गई बा जेमें दीपाली ली है रउआ से जाए के विदा। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: देखिए, मुझे लगता है कि आपको उन्हें बुला लेना चाहिए।
11: ठीक है डॉक्टर। मम्मी जी, उठिए, खाना खा लीजिए।
12: नहीं बेटा, नहीं खा पाऊंगी। वेदिका ने फोन उठाया?
11: नहीं माँ, वो अभी उनके यहाँ देर रात हो रही होगी ना, उन्हें पता नहीं चलेगा। मैंने उनके लिए मैसेज छोड़ दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा भी कोशिश करूंगी।
12: ठीक है बेटा, बस तू मेरे पास बैठी रहे, और सुन, लॉयर अंकल को आज ही बुला ले, मैं नहीं चाहती कि कोई देर हो जाए।
11: कैसी बात कर रही है मम्मी जी, आप पहले ठीक हो जाइए और फिर ये सब काम कीजिए, चलिए आराम कीजिए।
12: नहीं बेटा,
11: मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए सो जाइए।
13: I'm unable to take your call now, so please leave your message after the beep.
11: Hi Vedika, मैं प्रार्थना बोल रही हूँ। मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। 4 दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी उनको होश आता है तो आप ही के बारे में पूछती रहती हैं वो। और उन्होंने लॉयर अंकल को भी घर बुला लिया है, हो सके तो एक बार उनसे मिलने आ जाइए, उन्हें उन्हें अच्छा लगेगा और उनके होते सारी फॉर्मेलिटीज भी हो जाएंगी, तो वो भी सही रहेगा। हेलो,
13: हाय प्रार्थना, वेदिका हियर, आई गॉट योर मैसेज, मैं कल ही आ रही हूँ, माँ को कहना कल ही आ रही हूँ मैं।
11: ठीक है वेदिका, खुश हो जाएंगी वो, मैं उन्हें बताती हूँ, आप आइए। मम्मी जी, मम्मी जी, वेदिका, वेदिका आ रही है कल, उनका फोन आया था।
12: सच? बेटा, अब थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाएं?
11: जी, मैं अभी लाती हूँ। यस,
14: हेलो प्रार्थना जी, मैं नील, मेरे पिताजी और आपके ससुर जी बहुत करीबी थे, मैं बचपन में आंटी के पास आया करता था। आज पापा ने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आकर मिल लूं। मैं आई कम इन?
11: जी बिल्कुल, आइए आइए ना।
14: अरे ये घर में तैयारियां किसकी चल रही हैं?
11: जी वो आज बहुत सालों बाद इस घर की बेटी वेदिका अमेरिका से आ रही है ना मम्मी जी से मिलने, इसलिए थोड़ा बहुत।
14: अच्छा, पापा बता रहे थे कि आंटी काफी सालों से बेडरिडन हैं, तो वेदिका पहले उनसे मिलने कभी नहीं आई?
11: जी वो थोड़ा बिजी रहती है ना, इसलिए मैं ही मम्मी जी के साथ रहती हूँ।
14: ये तो बहुत अच्छी बात है।
6: भाभी, हाउ आर यू स्वीट हार्ट, कितना समय हो गया हमें एक दूसरे से मिले हुए।
11: हाँ वेदिका, अरे आप ये इतना सारा सामान?
6: वो ना गिफ्ट है कुछ माँ के लिए।
11: वेदिका, पर ऐसे समय में गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी?
6: ओफो, हम खाली हाथ कहीं नहीं जाते, कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करती ना। खैर तुम नहीं समझोगी, तुम तो अपनी शादी में भी कुछ नहीं लाई थी, है ना?
14: हाय वेदिका जी, आपको शायद याद नहीं होगा मैं नील हूँ, बचपन में एक दो बार आपसे मिला था, आंटी से मिलने आया।
6: ओह हाय नील, प्रार्थना माँ कहाँ है?
11: चलिए मैं आप दोनों को ले चलती हूँ। मम्मी जी देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है।
15: वेदिका
6: माँ, कैसी है तू? देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आई हूँ, ये स्वेटर, ये शॉल, ये व्हील चेयर और ये वहाँ की फेमस चॉकलेट्स है।
15: अच्छा, और ये कौन है?
14: नमस्ते आंटी, मैं नील।
15: नील
6: माँ, बहुत महंगा है ये सब, आप तो जानती है भाई, हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और फिर माँ के लिए तो बिल्कुल नहीं।
11: नील चलिए हम चलते हैं, माँ बेटी को वक्त दे देते हैं, क्यों?
14: जी जी बिल्कुल।
6: ओके बाय।
11: इतने सालों में इन्हें कभी नहीं लगा कि अपनी माँ से मिल ले, और जब प्रॉपर्टी की बात है तो मैडम गिफ्ट लेके पहुँच गई है सीधे यहाँ।
14: प्रार्थना जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ?
11: सॉरी नील, मुझे आपके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था।
14: नहीं नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, ईश्वर सब देखता है, ईश्वर सब जानता है, सच्चाई और प्यार के सामने पैसों और पोजीशन की शक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जाने दीजिए, आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए, जब तक वो लोग आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं मैं आपको एक कहानी सुनाऊं।
11: कहानी?
14: हाँ एक कहानी।
6: कहानी सुना रहे हो, अरे वाह, फिर तो मैं भी सुनूंगी।
11: लेकिन हाँ, आप तो मम्मी जी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी ना।
6: हाँ इम्पोर्टेंट बट बोरिंग, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम सुनाओ ना कहानी सुनाओ।
14: ठीक है, तो बात तब की है जब रावण को अपनी शक्ति का बहुत अहंकार था, वो भक्ति भाव में नहीं शक्ति बल में विश्वास रखता था। एक दिन की बात है।
16: भ्राता कुबेर का अलका अब पूरी तरह से मेरा हुआ।
17: ये पुष्पक विमान तो अद्भुत है महाराज,
18: इस विमान से तो पूरी धरती दिखाई पड़ रही है। वो देखिए महाराज, पर्वत की चोटी कितनी छोटी दिखाई देती है।
16: अद्भुत। अरे ये क्या, ये विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा?
17: रुक जाओ, कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो, कहां चले जा रहे हो?
16: मुझे नहीं जानता मूर्ख, मैं महाराज दशानन अभी अलका राज्य जीत कर आ रहा हूं, चल हट मेरे सामने से।
17: मूर्ख, वो तो तुम हो दशानन, पर तुम ये भी जान लो कि तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, यहाँ प्रभु शिव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती शांति के पल बिता रहे हैं, इस मार्ग को पार करना वर्जित है।
16: मेरे लिए कुछ भी वर्जित नहीं, मुझे रोकने का साहस मत कर और हट जा मेरे रास्ते से।
17: मूर्ख, तू जानता नहीं अपनी शक्ति के अहंकार में तू क्या करने जा रहा है, अपने प्राण प्यारे हैं तो अभी भी समय है, संभल जा कि दुस्साहस मत कर।
16: मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है, मेरे मार्ग में आएगा तो बहुत पछताएगा तू मूर्ख प्राणी। रुक जा, मैं अभी इस पूरे पर्वत को ही अपने मार्ग से हटा देता हूं।
19: हा

0: ईश्वर, ये क्या हो रहा है प्रभु?
1: विचलित ना हो प्रिय, लगता है कोई दुस्साहसी है जिसे अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है।
0: इसे रोकिए महादेव, देखिए सभी पशु पक्षी और जीव जंतु भयभीत हैं, रोकिए इसे।
1: करने दो प्रिय, इसे प्रयास कर लेने दो।
2: क्षमा करें प्रभु, आपके शांति के पलों में बाधा आई है। ये दशानंद बहुत अहंकारी है, मैंने उसे रोकने का प्रयास किया पर।
1: चिंता मत करो नंदी, मैं बस देखना चाहता हूँ इस नीच का साहस, देखना चाहता हूँ इसका अहंकार कहाँ तक जाता है।
0: बस प्रभु रोकिए उसे।
1: ठीक है, रोकता हूँ उसे।
3: रुक जा दशानंद, अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है तुझे दशानंद।
4: हाँ है, बोल क्या कर लेगा तू
3: दुस्साहसी। रुक जा, तेरा अहंकार मैं अभी चूर चूर कर देता हूँ।
5: महाराज ये क्या किया आपने? शिव के क्रोध की बलि चढ़ गए आप?
4: बहुत पीड़ा हो रही है, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। सैनिकों!
5: महाराज, शिव के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज,
4: क्या अर्थ है इस बात का?
5: महाराज, अब तो आपको स्वयं शिव ही इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। उनके गुणगान गाइए, प्रसन्न करिए उन्हें, साधना कीजिए उनकी।

0: अरे ये कितने वर्षों से यहाँ पर्वत के नीचे दबा हुआ है।
1: हे प्रभु, ये मेरे पापों का प्रायश्चित था, मुझे क्षमा करें प्रभु। मेरे अहंकार में मैं ये समझ नहीं पाया कि आप ही मेरे प्रभु महादेव हैं। मैं भक्ति नहीं, बस शक्ति बल का प्रयोग करना जानता था। मैं समझ नहीं पाया कि आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले ले।
0: आयुष्मान भव, तुमने अपनी साधना से मुझे प्रसन्न कर दिया दशानन। तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।
2: इसी तरह रावण का अहंकार टूट गया और उसे एहसास हुआ कि शक्ति भी भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर वो तो महादेव थे, वो सर्वज्ञाता है, सब जानते हैं कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा, किसके मन में प्यार है और कौन स्वार्थी है।
3: अरे वेदिका, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं?
4: मुझे माफ कर दो प्रार्थना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
3: क्या हुआ वेदिका?
4: मैं बहुत स्वार्थी थी प्रार्थना, मुझे अपनी ऐश आराम की जिंदगी में कभी माँ की जरूरत नहीं महसूस हुई। माँ मुझे जब याद करती तो मैं उन्हीं को मन में भला बुरा कह के रह जाती थी। तुम फोन करती तो भी जवाब नहीं देती, और आज भी मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी।
3: वेदिका, मैं ये सब जानती हूँ, अब मुझे क्यों?
4: नहीं प्रार्थना, मैं लेकिन मुझे एहसास है इस बात का। पता नहीं क्यों, जब नील हमें ये कहानी सुना रहा था, मेरे अंदर एक आवाज मुझे उसका इशारा समझने को कह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई इशारा है। बस बहुत हो गया स्वार्थ, बहुत उछल लिया पैसों की शक्ति पर, अब वापस लौटने का वक्त आ गया है। नील, थैंक यू।
2: अरे आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हैं?
4: पता नहीं नील, बस ऐसा लगा जैसे तुमसे आज मिलने का कारण ही यही था कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो तुम्हारी कहानी से।
2: मेरी कहानी? नहीं नहीं, ये तो महादेव की कहानी है और मैं कुछ नहीं करता, करते तो वही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने के पीछे कोई कारण था आज, तो हो सकता है कि ये भी शिव का ही कोई खेल हो।
5: बेटा। हाँ मम्मी जी, आई।
6: वो प्रॉपर्टी, तुमने लॉयर अंकल से बात की है ना?
4: माँ कैसी बातें कर रही हो, प्रॉपर्टी का क्या करना है? ये क्या टाइम है ये सब डिस्कस करने का? और फिर जो है आपका और भाभी का ही तो है, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली और लड़के के साथ सेटल किया है कि मुझे इस सब की जरूरत ही नहीं है। माँ आप बस अभी मेरे साथ रहो ना।
6: बेटा
4: मैंने बोला ना माँ, मेरे साथ रहो बस।
2: अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ।
4: क्या हुआ नील, तुम भी रुक जाओ ना, कहाँ जा रहे हो?
2: जी वो मुझे थोड़ा दूर जाना है।
6: अच्छा तो मैं आपके लिए कुछ खाने को रख देती हूँ।
2: नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सब इंतजाम है।
4: अच्छा तो मैं कैब बुक कर दूँ? वैसे लोकेशन क्या डालूँ?
2: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा नंदू है ना, मेरी बाइक, घूमते घूमते हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे।
6: पर बेटा तुम जा कहां रहे हो?
2: आंटी मैं वो बस भोलेनाथ के धाम अमरनाथ, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी आइए कभी, आप ठीक हो जाएंगी तो जरूर आइएगा।
6: ऐसी हालत में
2: आप फिक्र मत कीजिए आंटी, वहां आपकी खातिरदारी मैं करूंगा। मैं चलता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी। हर हर महादेव।
7: क्यों पैसा पैसा करता है, तू पैसे में क्यों मरता है? एक बात बता दे तू मुझको, उस रब से क्यों नहीं डरता है? क्यों बिड़ू पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं देने का, परिवार को देने का, इससे पहले कि माँ बाप और परिवार जैसे अहम रिश्ते और उनका आशीर्वाद हमारे सर से हट जाए। उन पे ध्यान दो, उनकी इज्जत करो बिड़ू, देखना तुम्हें तरक्की से कोई दूर नहीं कर सकेगा। अगर माँ बाप का आशीर्वाद तेरे सर पे रहा, बात खत्म बॉस। शिव, मोह, माया दुनिया से ऊपर उठना सिखाता है, शिव परिवार से प्यार करना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देह व्यापार का हुआ भंडाफोड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सरकारी भूमि विवाद में BDC सहित 3 लोगों पर जानलेवा हमला। कोर्ट के आदेश पर अलग अलग जगहों से कई अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। माझा थाना की पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापपुर चार मुहानी के बगल में पेड़ के पास अवैध हथियार के साथ कोई व्यक्ति खड़ा है। पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ा गया आरोपी आशिफ अली, पिता जमालुद्दीन, साकिन सुरवनिया, थाना माझागढ़ का निवासी है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पास की ही झाड़ी में अवैध हथियार को छुपा रखा है। उसके निशानदेही पर झाड़ी में रखे लाल रंग के झोले से एक अवैध देशी कट्टा को बरामद किया गया, जिसके बाद हथियार और मोबाइल को जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही अवैध हथियार के नेटवर्क और इसमें संलिप्त अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान की जा रही है। इधर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र में मरछिया देवी चौक के पास स्थित वन बाइट रेस्टोरेंट के बेसमेंट से अनैतिक देह व्यापार के एक बड़े धंधे को उजागर किया है। बताया जा रहा है कि इसमें केबिन बनाकर देह व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ और थानाध्यक्ष मीरगंज के साथ एक विशेष टीम बनाते हुए यहां रेस्टोरेंट में विधिवत छापेमारी की। इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी अमित सिंह पिता विजय सिंह साकिन डुमरी छपरा थाना डोरीगंज का निवासी है और दूसरा मनीष कुमार राय पिता परमा राय साकिन धमौरा थाना बाबू बरही जिला मधुबनी का निवासी है। दोनों को अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान रेस्टोरेंट के स्टाफ अमित सिंह और मनीष कुमार ने बताया कि वन बाइट रेस्टोरेंट के संचालक दिव्यांशु सोनी उर्फ बिट्टू के निर्देशानुसार रेस्टोरेंट के बेसमेंट में अनैतिक देह व्यापार का संचालन किया जाता है। इस कार्रवाई में पाए गए 3 पुरुष एवं 3 महिलाओं को बंध पत्र पर मुक्त किया गया एवं रेस्टोरेंट में कार्यरत दोनों कर्मचारियों अमित सिंह एवं मनीष कुमार राय को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसमें मीरगंज थाना कांड संख्या 400/2026,

और आम रास्ता था। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग उस पर अवैध निर्माण कर रहे थे। जब बीडीसी सदस्य उनके परिवार के लोग तथा ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल बीडीसी सदस्य के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। न्यायालय के आदेश पर आज कई अलग अलग थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। नगर थाना की पुलिस ने चोरी कांड में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम विशाल कुमार, पिता छोटन रावत, साकिन हरखुआ, थाना नगर बताया जा रहा है। इस पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार कार्रवाई करते हुए नगर थाना की पुलिस ने एक और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रंजीत कुमार, पिता हरेंद्र महतो, साकिन हरपुर, थाना नगर, जिला गोपालगंज को भी इसके घर से विधिवत गिरफ्तार करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी 34 लीटर देशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी से 25 लीटर देशी शराब बरामद किया और इसमें रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह ओलीपुर थाना नगर के हरकेश यादव का पुत्र है। दूसरा अवैध शराब के साथ अभियुक्त सुरेश शाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह रामलाल शाह का पुत्र है और सासामुसा का रहने वाला है। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर भोरे थाना की पुलिस ने 15 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दो आरोपियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी घनश्याम सिंह, पिता स्वर्गीय राजवंशी सिंह, साकिन हरदिया, दूसरा सुनील शुक्ला, पिता स्वर्गीय अर्जुन शुक्ला, साकिन जोरावर छापर, तीसरा गोविंद कुमार कुशवाहा, पिता भीरगुन भगत, साकिन भोरे को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी भोरे थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए तीनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त हरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। यह पंचदेवरी के शिवबचन शर्मा का पुत्र बताया जा रहा है और इस पर पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी, अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तरह से पुलिस ने आज कई मामलों में गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में चौकीदारी परेड करते हुए सभी महाल चौकीदारों को थाने पर आवश्यक निर्देश दिए गए। थाना अध्यक्षों ने कहा कि सभी महाल चौकीदार अपने अपने क्षेत्र में सतर्क और सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे हुए पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखें। साथ ही स्थानीय आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। आज गोपालगंज के कमला राय महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्ति युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र और भारत स्काउट गाइड कैडेट के छात्र भी इसमें उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी तथा मध्य निषेध पदाधिकारी और कमला राय महाविद्यालय के प्राचार्य भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं को जागरूक किया, नशा से दूर रहने की सलाह दी और साथ ही इस योजना के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी गई। मीरगंज बाईपास पर आज सुबह बिजली के खंभे से एक ट्रक जाकर टकरा गया और पलट गया। यह हादसा इतना भीषण हुआ कि खंभा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया, जिसमें 11,000 वोल्ट की तार प्रवाहित हो रही थी। गनीमत रहा कि किसी की जान नहीं गई, परंतु तार टूटने के वजह से लछवार फीडर लाइन ठप हो गया। कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। बिजली विभाग की टीम नया खंभा लगाकर देर शाम तक आपूर्ति बहाल करने में जुटी हुई थी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देह व्यापार का हुआ भंडाफोड़, दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सरकारी भूमि विवाद में बीडीसी सहित तीन लोगों पर जानलेवा हमला।
कोर्ट के आदेश पर अलग अलग जगहों से कई अपराधियों की हुई गिरफ्तारी।

0: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 9797065775।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-714-86164।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आप सभी को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से नमन है, प्रणाम है। आप लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद से रेडियो रिमझिम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रेडियो रिमझिम का यह कार्यक्रम आपका संदेश मिला पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रमों का विश्लेषण करता है। अपने जिले के तमाम क्षेत्रों से, देश विदेश से और दूसरे प्रदेशों से भी बहुत सारे सुझाव आते हैं, जिसको हम लोग अंगीकृत करते हैं और उन विश्लेषणों का समीक्षा किया जाता है। रेडियो रिमझिम का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आपका संदेश मिला में हमारे जितने भी आदरणीय श्रोता हैं, वे अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। उन्हें मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। आज के युग में जहां किसी के पास समय नहीं है खड़ा होने का, चाय पीने का, बातचीत करने का, उस दौर में भी रेडियो रिमझिम का बेहतरी के लिए अपना मूल्यवान सुझाव देकर हमें एक नए रास्ते के तरफ ले जाते हैं। हम केवल प्रसारण करता हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, विद्वान और कोई खास व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं, जो समाज के प्रत्येक वर्ग से आते हैं, प्रत्येक उम्र वर्ग के लोग जो है अपना सुझाव देते हैं, हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे युवा, हमारी माताएं, बहने, उन सब का सुझाव पाकर मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली महसूस करता हूं कि जो हमारे श्रोता हैं अपने बातों को रेडियो रिमझिम तक पहुंचाते हैं। आज जो है सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक के इनबॉक्स में या पत्र के माध्यम से या टेलीफोन करके हमारे जो सहयोगी हैं उनको अपने बातों को लिखवाते हैं। मेरा मानना है कि हम जिसके लिए प्रसारण करते हैं, जिसके लिए सुबह 5 बजे से रात को 11-10 तक रेडियो पर लगातार ऑपरेटिंग करते हैं, वह व्यक्ति यदि कुछ कहता है तो उसकी बातें हमारे समझ में आती है, क्योंकि हमारे श्रोता जो है हवा हवाई नहीं है, वह जमीन से जुड़े हुए हैं। गांव, देहात, नगर परिषद क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं, जो सुबह शाम रेडियो रिमझिम को अपना एक साथी समझकर सुनते हैं और अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। हमारे हम उम्र के कई लोग जो है अपने नाती, पोता, बेटा से भी लिखवा लिखवा कर संदेश भेजते हैं। हम इसी क्रम में बताते चले कि अभी हाल में ही भारत सरकार का एक सर्वे टीम आया था जो सेहत सही लाभ कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जन जन तक इंटरव्यू लिया। जहां रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है उस जगह से 15 किलोमीटर आवृत्ति में रेडियस में वे लोग गए, लोगों से बातचीत किए। हमारी कई बहनें, बेटियां, माताएं, हमारे उम्र के लोग अपने बातों को बताए। वे उनका तस्वीर भी लिए, फोटो भी खींचे, वीडियो भी बनाए। उसमें से कुछ वीडियो और फोटो हमें भी मिला है। यह जानकर काफी अच्छा लगा कि गांव देहात में जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, गांव में खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं या बागवानी या सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, सब लोग अपना काम छोड़कर 10 मिनट आधा घंटा सर्वेकर्ता से बातचीत किया, अपना फीडबैक दिया, अपना सुझाव दिया, आगे हमें कैसे क्या करना है उस टीम को बताया। वह केवल रेडियो रिमझिम का ही नहीं, बिहार के 3 रेडियो स्टेशन और भारत वर्ष के 40 रेडियो स्टेशन में यह सर्वे का काम हुआ। अब इसका रिजल्ट जो है बहुत जल्द 2 महीने के अंदर हम लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने कैसा जवाब दिया। आदरणीय श्रोता बंधु, सुबह से शाम तक अलग अलग कार्यक्रमों का हम प्रसारण करते हैं। सुबह में भजन के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोलेनाथ का महीना माना जाता है। हर घर में घंटा, फूल, आवाज, अगरबत्ती की सुगंध आ रही है और उस बीच में हमने भी सुबह 6 बजे से महा शिव जी का एक एपिसोड चालू किया है, भजन भी हो रहा है और शाम को 4:30 बजे से सावन का सबसे लोकप्रिय गीत कजरी का भी हम प्रसारण शुरू कर दिए हैं आप लोगों के सुझाव से। और हमें लगता है कि यदि कभी हम भूल जाते हैं कोई कार्यक्रम प्रसारण करते समय या कभी कोई चूक हो जाता है तो हमारे आदरणीय श्रोता हमें हमेशा अवगत कराते रहते हैं। हम कोई बहुत जानकार, विद्वान और बहुत अच्छे रेडियो प्रसारण करता नहीं है, लेकिन हमारे श्रोता बेहतर हैं। वे हमें हमेशा हर कमियों के तरफ इशारा करते हैं और रेडियो रिमझिम 90.4 को कैसे बेहतर बनाया जाए वे अपना सुझाव देते हैं। हमें काफी अच्छा लगा। जीवन का अपना मूल्यवान समय 20 वर्ष लगभग कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। रेडियो रिमझिम गोपालगंज की जनता की रेडियो के माध्यम से और ऐप के माध्यम से पूरे संसार में अपनी आवाज पहुंचा रही है। हमें पता है कि हमारे यहाँ के युवा देश विदेश और दूसरे प्रदेशों में रोजी रोजगार हेतु गए हैं। वे वहाँ से अपनी बातों को कार्यक्रम में भेजते हैं, गीत सुनते हैं, अपने बातों को रखते हैं। वह चाहे सांसा मूसा बाजार हो या बरौली, मीरगंज हो या बड़हरिया, सिवान और गोपालगंज कोई बटा हुआ नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जिला है। और हमें लगता है कि गोपालगंज जिला मुख्यालय और सिवान जिला मुख्यालय जितना नजदीक है उतना शायद ही बिहार का कोई जिला मुख्यालय नजदीक होगा। 30 किलोमीटर में दोनों जिला मुख्यालय है और यहाँ की भाषा, खान पान और अपने अगल बगल का जिला देवरिया, कुशीनगर, मोतिहारी, बेतिया, सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ के तमाम श्रोता रेडियो रिमझिम में अपनी फरमाइश करते हैं। हमारे यहाँ का ऑनलाइन कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस, एसएमएस फरमाइश, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम हेलो माई चॉइस है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक कार्यक्रम है हेलो क्विज कॉन्टेस्ट, जिसे हम लोग HQC कहते हैं। इसमें भी सैकड़ों युवा साथी जुड़ते हैं और कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा होता है। रेडियो रिमझिम एक प्रसारण करता नहीं, हम अपने श्रोताओं के दिलों से जुड़े हैं, उनकी भावनाओं से जुड़े हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव लेने का प्रयास करते हैं। रेडियो रिमझिम में जो भी कमियां होती है, जो बेहतर कार्य होता है, उस पर वे लोग अपना विचार और सुझाव देते रहते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम एक खुला मंच है, इसमें आप अपने बातों को बेधड़क निसंकोच होकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आज के जमाने में हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल आ गया, जितने हमारे युवा साथी हैं 6 घंटा से 8 घंटा तक लगातार मोबाइल देख रहे हैं, उसमें रेडियो रिमझिम का फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वे लोग देखते रहते हैं, उसके इनबॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहते हैं। अच्छा लगता है, समय के साथ रेडियो रिमझिम अपने को अप टू डेट करते रहता है कि समय के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चले। तो बातें तो अभी बहुत है, लेकिन मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर सोनू जी, जो आपके संदेशों को पढ़ेंगे और हम पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश मेरे पास है रतन कुमार चौहान जी का, कमालपुर से लिखे हुए हैं। रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम कब चलता है, कृपया बताएं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय चौहान जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं। आपके ग्रामवासी, पंचायतवासी और प्रखंडवासियों को भी नमन करते हैं। मेरा मानना है कि जो रेडियो रिमझिम को सुनता है, वही कार्यक्रम का नाम जानता है, कार्यक्रम में अधिक जानकारी लेने की उत्सुकता रहती है। यह बात सही है, सेहत सही लाभ कई स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को नाटक के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से और हमारे जो आरजे हैं, चाहे वह SMS फरमाइश हो, चाहे ऑनलाइन कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस हो, उसमें बीच बीच में आपको जानकारी देते रहते हैं। जैसे बरसात का समय आ गया, डेंगू मलेरिया कालाजार का प्रकोप बढ़ने लगता है, स्वास्थ्य विभाग भी सजग हो जाता है और अपने जिले के 6 प्रखंडों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए जिला प्रशासन सजग सतर्क हो जाता है। हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी दियारा क्षेत्र का कई बार भ्रमण किए, आप लोग रेडियो के माध्यम से इसकी सूचना पाते ही होंगे। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम चलाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस समाज में सभी लोग सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे, वह समाज जो है राष्ट्र के लिए, प्रांत के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जब हमारे क्षेत्र के युवा साथी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में या होमगार्ड के बहाली में जाते हैं, तो उनकी पूरी जांच होती है, मेडिकल होता है, फिटनेस देखा जाता है। तो इसकी तैयारी यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही करें, तो वह बच्चे जो है देश के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव बन जाएंगे। इसलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो माताएं अपने बच्चों का देखभाल कर रही है, बचपन से ही हम उसे पौष्टिक पूर्ण आहार दें तो वह बच्चा जो है स्वस्थ और निरोग होगा। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम बचपन से बच्चों को, चाहे बालक हो या बालिका, उसे स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक पूर्ण आहार दें। यह केवल सेब, अनार और महंगे फल खाने से नहीं मिलता है, पौष्टिक जो है हर चीज में होता है। हम लोग साग खा सकते हैं, कई तरह के जो फल मूल हैं जो सस्ते मिलते हैं उसे भी खाकर हम पौष्टिक पूर्ण जीवन बिता सकते हैं या अपने बच्चों को देकर उसे मजबूत बना सकते हैं। इसी तरह की बातें इस कार्यक्रम में बताया जाता है और जो समय समय से बच्चों का टीकाकरण है वह एकदम अनिवार्य है, क्योंकि पहले जैसा ना हवा रहा ना पानी रहा, सब कुछ बदल गया है और बदलते मौसम में, बदलते वातावरण में हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। उसके लिए सरकार द्वारा बताए गए विभिन्न बातों को हमें अपनाना चाहिए। विशेष करके स्वास्थ्य विभाग जब भी अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, कोई सूचना देता है, तो हमें गंभीरता से लेना है। रेडियो रिमझिम पर इसका प्रसारण शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को होता है। 3 दिन हम लोग इसका प्रसारण करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑनलाइन हमारे आरजे बैठते हैं वह कार्यक्रम के बीच बीच में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक स्वास्थ्य संबंधी बातों को बताते हैं। यदि हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तभी वह खुशी का आनंद ले सकता है। किसी बीमार व्यक्ति को कहिए कि उसे जो है बाजा अच्छा लगेगा तो नहीं लगेगा, बाजा या संगीत उसी को अच्छा लगता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। इसलिए रेडियो रिमझिम परिवार इस पर फोकस करता है और चाहता है यह कार्यक्रम प्रत्येक श्रोता सुने और अपना फीड

0: फीडबैक दें ताकि हम और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम बनाकर इसका प्रसारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। नजमा खातू दरगाह रोड गोपालगंज से भेजी है, लिखी है, रेडियो रिमझिम टीम को सलाम। ऑनलाइन शो में हम देखते हैं कि कॉल, एसएमएस और वॉइस द्वारा भी गाना सुनाया जाता है और बीच में लगभग 30 मिनट आरजे नहीं रहते हैं, क्यों? इसमें सुधार किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय नजमा जी, आपके पूरे परिवार को, दरगाह रोड में रहने वाले सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप रेडियो रिमझिम की एक अच्छी श्रोता हैं जो हमारे कमियों के तरफ इशारा कर रही हैं। चूंकि ऑनलाइन कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का जब प्रसारण दोपहर 12 बजे से शुरू होता है सोमवार से शनिवार तक, तो 2:15 पर राष्ट्रीय समाचार का प्रसारण होता है और जो हमारे आरजे हैं उनका लंच का टाइम भी हो जाता है। तो 15 समाचार, 15 लंच का टाइम यानी 30 उन्हें मिल जाता है। उसके बाद 2:45 पर यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यही वजह है कि 30 तक कार्यक्रम बाधित रहता है। आपको पता ही है कि सुबह 8 राष्ट्रीय समाचार, दोपहर 2:15 पर राष्ट्रीय समाचार, रात को 8:45 पर राष्ट्रीय समाचार और रात को 11 हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय समाचार का हम प्रसारण करते हैं। चूंकि वह समाचार दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से रिले होता है जिसे हम स्वीकार करके अपने क्षेत्र में इसका प्रसारण करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि नजमा जी, आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगी। आगे कार्यक्रमों के बारे में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है वृंदावन से उमेश बैठा जी का, लिखे हुए हैं, रेडियो रिमझिम परिवार को नमस्कार। मुझे आपका संदेश मिला कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हवा महल कार्यक्रम साफ सुनाई नहीं देता है जो शनिवार को बजता है। सुबह में राष्ट्रीय समाचार लेट से चलता है, इसे सुधार किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय बैठा जी, आपके पूरे परिवार को, आपके ग्रामवासियों को, पंचायतवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप बड़े ही ध्यान से और शांत स्वभाव होकर रेडियो रिमझिम 90.4 को सुनते हैं। मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार कहा है कि जो रेडियो रिमझिम को लगातार और नियमित सुन पाता है वही हर बात के बारे में हमें बता सकता है। आपकी बात सही है, हवा महल कार्यक्रम आकाशवाणी का बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम आज से 30-40 पहले हुआ करता था। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग साथी हैं, उन्हें याद होगा कि हवा महल रात को 8:30 से प्रसारित होता था आकाशवाणी पटना से भी और गोरखपुर से भी, और उस समय वे लोग सुनते थे। तो मेरे मन में यह ध्यान आया कि क्यों न जो पुराने कुछ कार्यक्रम हैं उसे जो है नई पीढ़ी को सुनाया जाए, उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। तो कई लोग बहुत अच्छे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपकी बात सही है, उसकी आवाज़ का लेवल जो है बड़ा ही डाउन है। तो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो युवा साथी हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि उसका लेवल ठीक करें और हवा महल को साफ और स्पष्ट शब्दों में सुनाएं। दूसरी बात आपने रखा है कि सुबह 8 का समाचार जो है जो आकाशवाणी नई दिल्ली से आता है उसके प्रसारण में लेट होता है, तो मेरे ध्यान

0: में अभी तक आया है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है, अगर कभी हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। चूंकि हमें पता है कई लोग जो है काम पर निकलने वाले होते हैं और 15 मिनट का यह समाचार जो है पूरे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर का होता है जो आकाशवाणी दिल्ली देता है, और उसमें हर बात की जानकारी मात्र 15 मिनट में मिल जाती है। तो हमारा यह प्रयास होगा कि पूरा का पूरा समाचार आपको सुनाया जाए और भविष्य में रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से ऐसी चूक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अतुल कुमार पांडे जी का विक्रमपुर से। सर नमस्कार, मुझे रेडियो रिमझिम के सभी कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं। सुबह शाम जो प्रादेशिक समाचार चलता है उसका आवाज बहुत कम आता है, उसे सुधार किया जाए तथा समय के साथ कार्यक्रम में भी बदलाव किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय पांडे जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछला आपका संदेश मिला में हमने बताया था कि दूसरे से लेकर तीसरे को हम देते हैं और हम मीडिएटर हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से रिले किया जाता है और हमारा भी प्रयास होता है कि वह साफ और स्पष्ट आप लोगों तक पहुंचे, और इसकी शिकायत मैं समाचार निदेशालय को भी किया हूं। फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि प्रादेशिक समाचार का लेवल हम लोग थोड़ा बढ़ाएं और आवाज़ आप तक स्पष्ट पहुंचे। चूंकि रेडियो रिमझिम का कार्यालय का नंबर, रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर भी हम लोग एक पोस्टर बनाकर डाल दिए हैं कि यदि कहीं कोई बात हो तो उसी समय आप फोन कर सकते हैं और यह इस तरह की बातों को बता सकते हैं। इसी क्रम में मुझे एक बात याद आया कि जब ऑनलाइन प्रोग्राम, चाहे वह SMS हो, योर वॉइस योर चॉइस हो, इन कार्यक्रमों के बीच बीच में रेडियो रिमझिम के कार्यालय पर कई हमारे आदरणीय श्रोता फोन करने लगते हैं कि हमारा नंबर जल्दी आए। चूंकि वह कार्यालय का नंबर है, उस नंबर पर अधिकतर ऑफिशियल काम हम लोग करते हैं और गाने के लिए जो है अलग से रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर हम लोगों ने नंबर अंकित करके पोस्टर लगा दिया है। उस पर कौन सा कार्यक्रम कब चलता है, कितने बजे चलता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वह सब लिख कर डाल दिया गया है। फिर भी कई श्रोता कार्यालय के नंबर पर फोन करके अपनी फरमाइश को पूरा कराना चाहते हैं, जो हमारे लिए असंभव है। तो इस पर विशेष ध्यान रखें कि आप किस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उस कार्यक्रम का नंबर यदि आपके पास नहीं है तो रेडियो रिमझिम के फेसबुक देखकर नंबर नोट कर लें। वैसे जो रेडियो रिमझिम के बेहतरीन आरजे हैं वह हर 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट के बीच में नंबर बताते रहते हैं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले बताते हैं। फिर कई श्रोता जो है बाद में रेडियो चालू किए हैं तो उनके लिए आधा कार्यक्रम बीतने के बाद भी बताते हैं, और जो 4 घंटा का कार्यक्रम है हमें लगता है कि 3-4 बार आरजे द्वारा बताया जाता है। और कई हमारे श्रोता हैं, जैसे ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है उसमें वीडियो कॉलिंग कर देते हैं, नेट कॉलिंग कर देते हैं, तो कहा जाता है कि जिसके पास धैर्य नहीं है उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए मेरा यह आदर पूर्वक निवेदन, आग्रह है कि जो ऑनलाइन हमारे आरजे बैठते हैं, हमने कई बार बताया, उनके पास डबल कंप्यूटर होता है, फिर मिक्सचर होता है, फिर जो है मैसेज या ऑडियो को सुनना पड़ता है, पहले चलाने से पहले मैसेज को पढ़ना पड़ता है, वह जो है घबरा जाते हैं जब वीडियो कॉलिंग, नेट कॉलिंग या फोन आने लगता है उस नंबर पर। इसलिए आपसे आदर पूर्वक आग्रह है कि इस तरह का कार्य न करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम बेहतर कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे और हमारे कई ऐसे शानदार, जानदार और अच्छे व्यक्तित्व के श्रोता हैं जो अपनी फरमाइश को सही ढंग से पेश करते हैं। जैसे SMS फरमाइश है तो वह अपना मैसेज भेज दिए, चुप लगा गए। फिर हमारे RJ कहते हैं कि यह जो है थोड़ा पीछे चला गया है, इसका रिपीट कीजिए, तो हमारे आदरणीय श्रोता उसे रिपीट कर देते हैं। उसी तरह ऑनलाइन कार्यक्रम जो रेडियो रिमझिम में काम कर रही बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वे भी चाहती हैं कि आप लोग वीडियो कॉलिंग या नेट कॉलिंग या डायरेक्ट कॉलिंग नहीं करें। ऑडियो मांगा जा रहा है, SMS मांगा जा रहा है, तो उसी के माध्यम से आए, तो आप लोगों का एक छोटा सा सहयोग जो है बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने में बड़ा ही सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है सिसवनिया लाइन बाजार से मंकेश्वर प्रसाद जी का। सर नमस्कार, गोपालगंज हालचाल यूट्यूब और ऐप पर सुनता हूं, जो काफी पॉजिटिव न्यूज देता है। मेरा सुझाव है कि हालचाल में कुछ और विषय को जोड़ा जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, आपके ग्रामवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम का यूट्यूब पर हालचाल गोपालगंज जो आता है, उसे प्रतिदिन कई हजार लोग सुनते हैं। रेडियो पर जब आता है तो गोपालगंज जिले के पूरी जनसंख्या का 25-50% लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। हमें भी अच्छा लगता है। आप देखे होंगे लगातार समय पर हालचाल गोपालगंज का प्रसारण होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कई ऐसे श्रोता हैं जो गाना कम सुनते हैं लेकिन न्यूज उन्हें चाहिए। उसी तरह कई ऐसे श्रोता हैं जिन्हें न्यूज से कम मतलब है लेकिन गाना सुनना चाहते हैं। तो सबका साथ लेकर, सबकी पसंद लेकर रेडियो रिमझिम प्रसारित करता है। दूसरी बात आपने रखा कि रेडियो रिमझिम हमेशा पॉजिटिव न्यूज देता है, तो यह मेरा मानना है कि जीवन में सकारात्मक होना बहुत अच्छी बात है। जीवन में जब आप सच्चा रहिएगा तो आपको कष्ट झेलना होगा। बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि झूठ बोलने वाले के बहुत सारे साथी होते हैं, बहुत सारे मित्र हो जाएंगे, लेकिन आप सत्य के साथ रहिएगा तो अकेला पड़ जाइएगा। और वही स्थिति हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी महसूस किए हैं। तो शुरू से ही हालचाल हमेशा पॉजिटिव न्यूज, सकारात्मक न्यूज देता है और नेगेटिव न्यूज से भागता है। जो सूचना देने से हमारे श्रोताओं के जीवन में बदलाव आए, जिस सूचना को पाने से उन्हें कुछ जानकारी प्राप्त हो, उस तरह की सूचना देने में हम लोग दो कदम आगे रहते हैं। तीसरी बात आपने रखा कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, तो हम लोग बदलाव के लिए विचार कर रहे हैं। यदि आपके भी मन में कोई नया चीज है कि हालचाल में यह छूट रहा है, इसे जोड़ना चाहिए, तो अगले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हम जो है आप सबके विचारों पर अपना प्रसारण करते हैं और आपकी पसंद जो है रेडियो रिमझिम परिवार की पसंद है। यह मानकर चला जाता है कि रेडियो रिमझिम के जो श्रोता हैं वह हमसे बेहतर है, हमसे ज्यादा सोचते हैं और हमें जो है अच्छी अच्छी सुझाव देते हैं, जिसके बदौलत रेडियो रिमझिम को राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तर के कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो है आप सबका है। तो हालचाल गोपालगंज में यदि कुछ बदलाव चाहते हैं या नया कुछ जुड़वाना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा, हम इसका खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, आरती कुमारी बघौच मतिया से भेजी है। सर नमस्कार, मैं रेडियो रिमझिम की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। मुझे रेडियो रिमझिम के लगभग सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, यहाँ तक कि विज्ञापन भी और रेडियो से अलग है, तथा 15 अगस्त भी आने वाला है तो राष्ट्रीय गीत भी बजाया जाए। और मेरा सुझाव है कि गोपालगंज जिले की महिलाओं की सफलता की कहानी को सुनाया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो मेरे पास अभी कई संदेश है, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय आरती जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा कि आप लंबे समय से रेडियो रिमझिम को सुनती हैं। हमें लगता है कि आपका पूरा परिवार रेडियो रिमझिम को सुनता है, क्योंकि जो गहराई से आपने बात को रखा है वह लगातार और नियमित सुनने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। आपने हमारी काफी प्रशंसा की कि रेडियो रिमझिम के गीत संगीत के अलावा आपको रेडियो रिमझिम का विज्ञापन भी अच्छा लगता है। तो आपको बताते चलूं कि विज्ञापन जो बनाने की हमारी टीम है वह बड़े ही कौशलपूर्ण है और समय के साथ विज्ञापन बनाने की कला में काफी दक्ष है। कई रेडियो स्टेशन हम लोगों से आग्रह करते हैं कि मेरा यह विज्ञापन बनाकर कृपया दीजिए, चाहे वह उत्तर प्रदेश का रेडियो स्टेशन हो या बिहार का। तो हमारे जो सहयोगी हैं वह बना देते हैं, सहयोग कर देते हैं। आपने सही कहा, गीत संगीत के अलावा भी रेडियो रिमझिम का विज्ञापन जो है काफी अच्छा लगता है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि हम लोग का राष्ट्रीय त्योहार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका त्योहार 15 अगस्त जो है आने वाला है, उसके लिए हम लोग जरूर राष्ट्रीय गीत प्रतिदिन कुछ न कुछ बजाएंगे। यह जानकर हमें भी अच्छा लगा कि जब मैं कुछ बातों को विस्मित हो जाता हूँ तो हमारे आदरणीय श्रोता हमें याद दिलाते हैं। और तीसरी बात आपने रखा कि गोपालगंज जिले की महिलाओं की सफलता की कहानी सुनाया जाए, तो हम लोग इस पर कभी विचार ही नहीं किए। आपने सही दिशा में हमें दिशा निर्देशित किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे गांव या शहर में रहने वाली कई महिलाएं जो है शून्य से शिखर के तरफ गई है और अपने परिवार का तकदीर बदल दी है। पुरुष तो है ही, लेकिन महिलाओं ने भी शून्य से शिखर के तरफ जाते समय अपने पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदली है। इस तरह के दो चार महिलाओं को हम तो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन आपने जब ध्यान आकर्षित किया तो इस तरह के महिलाओं की बातचीत, इंटरव्यू और कहानी के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से जरूर सुनाएंगे। कहा जाता है कि पूरे संसार की आधी आबादी जो है महिलाएं हैं, और जिस घर में परिवार में महिलाओं का आदर होता है वहां लक्ष्मी जी मुस्कुराते रहती है, उस घर में जो है सुख और शांति बना रहता है, और जहां घर में कलह होता है, छोटे छोटे बातों पर क्लेश हो जाता है, बड़े बुजुर्ग का आदर नहीं होता है, वहां जो है बड़ा ही माहौल जो है अलग हो जाता है। इसलिए मेरा यह आग्रह रहता है कि रेडियो रिमझिम को सुनने वाले सभी लोग अपने जीवन की कहानी यदि हम लोगों के साथ साझा करते हैं तो हम अपने रेडियो से इसका प्रसारण करेंगे। हमने कई लोगों को अपने जीवन में देखा है कि अपने जीवन की शुरुआत एक मजदूर के रूप में किया और आज जो है बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए। कई लोगों को ऐसे देखे हैं कि जो एक प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य किए लेकिन अपने बच्चों को इतना योग्य बना दिए कि वे बच्चे जो है आज देश में और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह देखकर सुनकर काफी अच्छा लगा। जीवन का 6 दशक पूरा करने के बाद हम ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जीवन के हर पहलू को समझने संवरने का मौका मिला। यदि कोई धान का रोपनी खेत में नहीं किया है तो वह अलग खड़ा होकर केवल फोटो खींच सकता है या फोटो खिंचवा सकता है और फेसबुक में लगा सकता है, लेकिन जिसका धान के रोपनी के समय पैर सड़ा है, वह जो है मरहम लगा लगा के कपड़ा बांध बांध के प्लास्टिक से और रोपनी किया है, तो वह जो है सही दर्द को पहचानता है। हमारे जमाने में लोग जो है अलता लगा लेते थे पैरों में तब पानी में घुसते थे, आज के दौर में खेत में धान रोपनी से पहले इतना खाद दिया जाता है कि कई हमारे साथी जो है प्लास्टिक बांध कर खेतों में उतर जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो जीवन के शून्य से शिखर के तरफ चढ़ा है वह जीवन के हर पहलू से गुजरा है, और मेरा यह अनुभव रहा है कि परिश्रम के अलावा जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे वह श्रम का क्षेत्र हो। जिसने लतरी दहिनी किया है उसका वंश भी आज लतरी दहिनी करेगा, और जो परिश्रम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया है वह जितना में था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन जीवन जो है सुख शांति से बीत रहा है। कई लोग कहते हैं कि उसके बाप दादा सरकारी सेवा में रहे, बहुत सारा धन कमाए, लेकिन वह धन जो है किस काम का है जहां उनके बच्चे जोगे नहीं हो पाए। सही पिता और माता वही है कि अपने जीवन को संवारते हुए बच्चों का जीवन सुधारे और उन्हें संस्कार के साथ जीवन में जीने का अधिकार बताए। जीवन जो है एक खूबसूरत चीज है जो बार बार मिलने वाला नहीं है, और जब एक बार मिला है तो इसके खूबसूरती को पहचाने। कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जिसे देखकर हृदय जो है दर्पित हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, दूसरों के साथ रहना है, दूसरों का सहयोग करना है, और जीवन में जब हम दूसरे का सहयोग करेंगे तो आत्मा और परमात्मा का आशीष हमको मिलेगा। इसलिए सत्य के साथ चलिए चाहे कितना भी परेशानी हो, और छोटी छोटी बातों में मत उलझिए। जीवन मूल्यवान है, अनमोल है, और किसी को दबाने से कोई दबता नहीं है। पानी जब बोरिंग का आने लगता है तो अंगूठा से दबाया जाता है ताकि प्रेशर बने, और जब प्रेशर बन जाता है तो अंगूठा को हटा दिया जाता है ताकि हथेली फट नहीं जाए। तो जिसके पास विद्वता है, योग्यता है, मेहनत करने की क्षमता है, वह जो है जीवन के शिखर तक जाएगा, और जो दहिने बाएं कर रहे हैं कुछ समय के लिए चमकेंगे, फिर टूटते हुए तारे के तरह आकाश में विलीन हो जाएंगे। तो इस अनमोल जीवन को बेहतर ढंग से जिए, तनाव मुक्त होकर जिए और ये हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते रहे कि हमारे भाग्य से अधिक आपने हमें सुख समृद्धि दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने वाला है। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा, मिला ही नहीं
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: गार्डन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
12: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
12: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
12: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
12: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
13: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
14: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
13: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
14: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेगा।
13: हम तो अपना नौका घरवा खाते
15: से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए। बोल,
13: सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
14: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
16: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
13: हमारा पता
17: टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
18: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
19: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
18: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
20: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

0: मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी

0: अलग रास्तों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: ओ जालिमा।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: ओए
1: टन प्रमोशन लेटर
0: कंग्रेचुलेशंस
1: थैंक यू
0: वाओ
1: बेबी बैंगलोर
0: आई होप यू सेड नो
1: नो मैं नो क्यों बोलूंगी
0: हाँ मेरा क्या होगा एज इन हमारा क्या होगा
1: बाबा तुम्हारे हमारे की बात नहीं है तुम्हें पता तो है ये प्रमोशन मुझे कितनी मुश्किल से मिली है आई हैव टू गो टू बैंगलोर
0: अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर मुझसे पूछने क्यों आई है
1: हेलो मैं पूछने नहीं आई हूँ मैं बताने आई हूँ आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग और मैं जा रही हूँ बैंगलोर व्हाटएवर
0: लिसन बेबी
1: डोंट टॉक टू मी

0: Is there a position in Bangalore, sir?
1: Yeah. Hey, but for you, it's much.
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के कुर्जी से कालीघाट तक गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गया और पटना के मसौढ़ी में नकली और अवैध दवाओं के 8 गोदामों के साथ एक विनिर्माण इकाई को जब्त किया। और सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का लगा हुआ है तांता। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। मतों की गिनती का कार्य सुबह 8 बजे शुरू हो गया। आज भाजपा, राजद और जनसुराज के प्रत्याशियों समेत 25 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: पटना की प्रतिष्ठित विधानसभा सीट बांकीपुर में उपचुनाव की मतगणना का कार्य एएन कॉलेज केंद्र पर हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 3-3 मतगणना कर्मी मौजूद हैं। मतों की गिनती 31 राउंड में पूरी की जाएगी। मतगणना केंद्र और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है। साथ ही बोरिंग रोड चौराहे से एएन की ओर वाहनों का परिचालन आज प्रतिबंधित किया गया है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। 30 जुलाई को संपन्न मतदान में 34.31% मतदान हुआ है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना के क्या रुझान हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन के पास। जी आशीष, बताएं, इस समय मतगणना शुरू हुए करीब घंटा भर होने को है, क्या रुझान मिल रहे हैं?
4: जी, मतगणना शुरू हो गया है और फिलहाल डाक मत पत्रों की गिनती जो है वह की जा रही है। शुरुआती रुझान हालांकि थोड़ी देर में आने लगेंगे और हर राउंड के साथ स्थिति जो है वो अपडेट होती रहेगी।
2: जी क्या लगता है आपको, कितने बजे तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है आशीष?
4: जी, यदि मतगणना इसी गति से चलती रही तो दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है और सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे।
2: आशीष, मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम दिख रहे हैं आपको?
4: सुरक्षा की बात करें तो मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है और केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है।
2: बहुत धन्यवाद आपका आशीष रंजन, अपडेट का इंतजार रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेपी गंगा पथ को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए समग्र विकास कार्यों में तेजी लाने और पटना के कुर्जी से कालीघाट तक 6.5 किलोमीटर गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में जेपी गंगा पथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार गंगा किनारे फुट ओवर ब्रिज निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने समीक्षा बैठक में बक्सर से भागलपुर तक गंगा तट के समेकित और चरणबद्ध विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उद्योग विभाग की ओर से इन जिलों में पार्क निर्माण के लिए 1,050 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ और दरभंगा में 350 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है। उद्योग सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार विकास कार्य के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की मदद देगी। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की बीमारी का रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार देश भर में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 7 करोड़ लोगों की बीमारी का रिकॉर्ड सरकारी अस्पतालों में तैयार किया गया है। 3 वर्ष पहले शुरू हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये रिकॉर्ड लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर शंकर रजक ने बताया कि राज्य के अस्पतालों में 6,57,00,000 लोगों की आभा आईडी बन चुकी है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में आज से मंत्रियों का जन सुनवाई कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि विधानमंडल के मानसून सत्र और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए यह कार्यक्रम 18 जुलाई से 2 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब यह जन सुनवाई कार्यक्रम पूर्व की तरह ही आयोजित होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज सावन की पहली सोमवारी है, इसे लेकर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। प्रदेश के शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिन्हेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। राज्य में कई अन्य स्थानों पर भी श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट से डाक बम जल लेकर बाबा बैद्यनाथ में जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि कांवड़ियों से उत्सव का माहौल बन गया है।
1: भागलपुर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। ये कांवड़िए 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बोल बम, ताड़क बम किनारों से पूरा मार्ग भक्तिमय बन गया है। सावन माह के दौरान पर्यटन विभाग और कला तथा संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 28 अगस्त तक प्रतिदिन आयोजित होने वाले इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा लोक कलाओं से जोड़ना है, साथ ही बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराना है। इधर जिला प्रशासन की ओर से डाक बमों को प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई स्थानों पर शिविर भी बनाया गया है। इन शिविरों में डाक बमों की सुविधा के लिए कई प्रकार की सेवाएं भी दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: इधर सारण संवाददाता ने बताया है कि सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रात 2 बजे पट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। इधर पहलेजा गंगा घाट पर भी कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। कांवड़िया संगम स्थल से जल उठाकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर और मुजफ्फरपुर स्थित गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं। पटना के बैकटपुर धाम और बीटा स्थित बिटेश्वर स्थान समेत विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में आज सुबह हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और सीवान जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस अवधि में किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी है।
2: दिनांक 3 अगस्त को राज्य के गोपालगंज एवं सिवान जिलों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों, पूर्वी चंपारण, सारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर हमारे बांका संवाददाता ने बताया है कि जिले में अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कटिहार जिले के बैरिया पंचायत के सुलकंधा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई। नेपाल के सुनसरी समेत तराई क्षेत्र के विभिन्न भागों में तनाव के हालात के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा क्षेत्र में सघन वाहन जांच, गश्त और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल SSB के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं। बिहार पुलिस ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और बगहा पुलिस अधीक्षकों को सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रोहतास पुलिस ने डेहरी के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में छापेमारी कर अंतरराज्यीय गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, खाली मैगजीन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में SSB और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में एक आम के बगीचे से 30 किलो गांजा बरामद किया है। तस्कर मौके से फरार हो गया। सशस्त्र सीमा बल जयनगर, बिहार STF और बिहार पुलिस SOG की संयुक्त टीम ने विशेष कार्रवाई में 50,000 रुपए मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा और 2 मोबाइल फोन के साथ 2 भारतीय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का ग्लासगो में एक भव्य समारोह में समापन हो गया। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष PT उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को सौंपी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नशे के खिलाफ देश में 100 सप्ताह की जंग छिड़ी। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू किया। प्रभात खबर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखता है, हर मंत्री, विधायक, जनसेवक, सरकार का एक एक पल बिहार के लिए। दैनिक जागरण लिखता है, 20 वर्षों और 3 चरणों में विकसित होगी पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप। आज अखबार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर को अपना शीर्षक बनाते हुए लिखा है, किसके सिर बंधेगा ताज, फैसला आज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। JP गंगापत को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वरूप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के कुर्जी से कालीघाट तक गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गया और पटना के मसौढ़ी में नकली और अवैध दवाओं के 8 गोदामों के साथ एक विनिर्माण इकाई को जब्त किया। और सावन की पहली सोमवारी आज, मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का लगा हुआ है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है। आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।

0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
2: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
2: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
2: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: कैसी है मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
2: अभी तो कॉल लगा रही थी, उसी समय से कॉल लगाते लगाते हो लगेगा और लग ही नहीं रहता।
1: चलिए कोई नहीं, देर सवेर तो लग ही गया।
2: तब और सब बताइए।
1: और सब तो ठीक है।
2: आपका खाना हो गया है?
1: ठीक
2: है।
1: कौन सा गाना आज सुनना है
2: मैम? आपको नाम बता दे रहे।

0: बता दीजिए।
1: मनीषा कुमारी। मैम गाना आज दिन का शुक्रवार का सुन ली हूँ।
0: बजा था?
1: बज गया, आज ही बजा है।
0: सुबह में भी बजता है,
1: शनिवार को भी बजा, शनिवार को भी कभी एकदम फुल साउंड में सुन रही थी बजा कर।
0: चलिए सुनने को मिला, अच्छी बात है।
1: बता दे रहे हैं आपको कि आपको भी पता चल जाए कि सुन ली हूँ गाना।
0: कौन
1: आज सुनवा दीजिए अब देशभक्ति गाना।
0: गाने के कुछ बोल याद है?
1: ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: जी मैम, आपको और अपने घर में सभी को और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: जी मैम, बाय।

0: अपना शीश कटा देंगे,
1: अपना शीश कटा देंगे।
2: हेलो नमस्ते
3: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा जिला गुना। बढ़िया है, आप कैसी हो?
3: मैं ठीक हूँ
2: जी। अभी तो हम खेत पर जा रहे हैं।
3: अच्छा, क्या खेत पर जा रहे हैं?
2: खेत पर जा रहे हैं अभी तो, क्योंकि खा चाटेंगे मक्का में, फसल लगा रखी है हमने मक्का की।
3: अच्छा जी,
2: और क्या, और आपके कार्यक्रम सुनते हैं रेडियो रिमझिम के पूरे, और क्या,
3: हमें अच्छा लगता है,
2: बढ़िया लगता है, और क्या है। भुट्टा आएंगे अभी तो एक महीने बाद।
3: चले बढ़िया है।
2: गाना सुनना है?
3: कौन सा?
2: वो साजन के घर फिल्म का गाना है, फिल्म का नाम है साजन का घर। गाने के बोले, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चेकी फूल के ले, आने वाले कब आएंगे लेकिन तुम कब आओगे। साधना सरगम कुमार सानू का आवाज में
3: जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
2: डेडिकेट है हमारे दोस्त है जीतेन धाकर, सुनील साहू है मकसूदनगर से, ज्योति साहू जी है, नरेश प्रजापति जी इनके लिए है और आपके लिए भी है
3: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
7: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
8: Jab phone din de bajte hai to kehte hai hello.
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
10: जी मैं सुधीर कौर बोल रहा हूँ, परिजनवाई जिला देवघर झारखंड से। मैम
11: कैसे हैं आप?
10: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
11: मैं भी अच्छी हूँ
10: जी। आज गाना सुन लीजिए मैम, प्रेम रोग फिल्म का।
11: और गाने के बोल?
10: गाने के बोल हैं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद क्यों तुझे प्यार करता हूँ, इस तरह के गीत के बोल हैं। सुरेश वाटर की आवाज में।
11: जी जी, और गाना किसको डेडिकेट है?
10: पहले मैम आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, आपके रेडियो रूम के पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिव्यू के लिसनर हैं सबों को, और हमारे कुछ दोस्त हैं मदन कोल हैं, राजकुमार प्रभु कोल हैं, कृष्णो कोल हैं, भोलानाथ कोल हैं, संजय कोल हैं, विष्णु प्रसाद यादव, श्रीधर प्रसाद यादव, राजीव रोशन, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
11: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनकर सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
10: थैंक यू मैम।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: कैसी है मैम?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कॉल लगा रही थी, उसी समय से कॉल लगाते लगाते और लगेगा और लग ही नहीं रहा था।
0: चलिए कोई नहीं, देर तो वेर तो लग ही गया।
1: तब और सब बताइए।
0: और सब तो ठीक है।
1: आपका खाना हो गया है? ठीक है।
0: कौन सा गाना आज सुनना है?
1: मैम आपको नाम बता दे रही हूँ।
0: बता दीजिए।
1: मनीषा कुमारी। मैम गाना आज उस दिन का शुक्रवार का सुन रही हूँ। गाना
0: बजा था?
1: बज गया, आज ही बजा है।
0: सुबह में भी बजता है।
1: शनिवार को भी बजा, शनिवार को भी कहूँगी। एकदम फुल साउंड में सुन रही थी बजाकर।
0: चलिए सुनने को मिला, अच्छी बात है।
1: बता दे रहे हैं आपको कि आपको भी पता चल जाए कि सुन ली हूँ गाना।
0: कौन
1: आज सुनवा दीजिए आप देशभक्ति गाना।
0: गाने के कुछ बोल याद है?
1: ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: जी मैम, आपको और अपने घर में सभी को और रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
1: जी मैम, बाय मैम।
0: बाय।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजैट पर।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
11: नमस्ते,
6: कैसी हैं मैडम जी?
11: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ।
11: तो नाश्ता हो गया आपका?
6: जी नाश्ता हो गया, नाश्ता हो गया जी।
11: आपकी तो आज कौन सा गाना सुनना है?
6: गाना सुना दीजिए, आज मैं 4 साल के बाद याद आएगा।
11: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
6: आपके? आज इतना रेडियो रंजीम आ गया सबके, सब दोस्त सुनता है सबके साथ।
11: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
6: जी मैडम जी, नमस्ते।
11: नमस्ते।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
1: वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल चल रहा
0: है? मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: ठीक ब्राह्मण
0: बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा?
1: निरवा गाना सुना दे, मरून कलर साड़ी वाला।
0: अच्छा, और गाना क्योंकि सुना होगा
1: सबके निरवा सुन ले।
0: हम तो सुन रहे करें
1: गुरु में जितना लग वाला लग सुनिए। और सब बताए?
0: अरे सब तो ठीक बाबे,
1: कब सुना दे गाना?
0: ये गाना और वो कल सुने के मिल जाए।
1: ठीक, और सब बताए?
0: सब ठीक बात,
1: गाना सुना दे।
0: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते नहीं सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 FM में।
13: वालेकुम।
14: हेलो, मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
13: और मैडम इधर मौसम कैसे हो रहा है?
14: मौसम तो इधर गर्मी पड़ रहा है और धूप भी निकला हुआ है।
13: तो नहीं बोल रहे ना?
14: नहीं, भारती बोल रहे हैं।
13: गाना सुनना थी,
14: बता दीजिए।
13: राजी फिल्म का
14: गाने के बोल,
13: गाने का बोल है जितने रेडियो रिलीज वाले दुकान का सुनाना चाहता हूँ।
14: तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: तुझे माथे पे सजा लूंगी ओ सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने, तेरे कदमों पे छलका दूंगी मैं सारे मेहखाने।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: नमस्कार,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: अभी उधर का मौसम कैसा है?
1: इधर का तो मौसम बहुत गर्मी पड़ रहा है और धूप भी निकला हुआ है।
2: उधर बारिश चालू है अभी।
1: अच्छा, चलिए तब तो अच्छी बात है।
2: क्या अच्छी बात है, खराब है?
1: क्यों?
2: ठंडी भी चालू हो गया ना बारिश?
1: ठंडी कहाँ चालू हो गया,
2: हमारी तरफ चालू है।
1: अच्छा, आपकी तरफ चालू है, बारिश हो रहा है तभी तक?
2: अभी बारिश चालू है, एक हफ्ता से हो गया 24 घंटा बारिश है।
1: अच्छा चलिए, कोई नहीं, बारिश खत्म होगा तो। इधर तो बारिश हुआ उसके बाद भी मौसम इतना गर्म है कि पूछिए मत।
2: बारिश एक हफ्ते से चालू है, 24 घंटे बारिश हो रहा है।
1: तब तो अच्छा नहीं है, दिक्कत तो होता है बारिश में।
2: आप सुनिए ना, बात कर रही थे?
1: नहीं
2: मैं सुन रहा हूँ।
1: अच्छा, आवाज में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग।
2: मतलब कई महीने बाद फोन किया हूँ ना, कंपनी मोबाइल अलाउ नहीं रह रहा है, आज रूम पे सोचा फोन कर लूं।
1: चलिए कोई नहीं, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
2: बरसात का कोई सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: कौन सा?
2: बरसात का।
1: बरसात मूवी का या फिर बारिश वाला सॉन्ग? कोई
2: बारिश वाला सॉन्ग।
1: अच्छा
2: नहीं, गाना बजाइए ना, खराब में होता है।
1: कौन सा सॉन्ग?
2: खराब में होता है।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया?
2: सबसे पहले आपको जितने भी डेडिकेशन सुनते हैं सही होता है।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
8: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
11: नमस्ते मैं।
10: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
11: क्या हाल है?
10: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
11: नासा तो हो गया।
10: हाँ, नासा हो गया, आप सभी का हो गया।
11: मैं संदेक मौर्य बोल
10: रहे हैं। आज कौन सा गाना सुनना है?
11: हाँ बोलिए,
10: आज कौन सा गाना सुनना है?
11: कब सुना रही है गाना? हम तो सुन भी नहीं पा रहे हैं, हमें फरमाइश कर रहे हैं लेकिन कभी भी नहीं सुन पा रहे हैं।
10: शाम को बजता है 5 बजे से 7 बजे के बीच और सुबह सेम रिपीट होता है सॉन्ग 9 बजे से 11 बजे के बीच।
11: सुना दीजिएगा ये काटू कैसे रहा रतन बावरे, नेचुरल गाना है।
10: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
11: लंबी है, लंबी है।
10: हाँ हाँ,
11: आपको और सुनने वाले रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को
10: आप सुन लीजिएगा ना।
11: हाँ,
10: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।
11: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार।
0: और क्वेश्चन बनी?
1: हम तो ठीक बनी, रहो बताए रहो कैसे
0: बस ठीक है बनी। आज छुट्टी रहेला?
1: आज तो छुट्टी रहेला।
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली तो आज तो अकेले ही रह पड़ी। तो चली नी?
1: चली
0: ठीक है बा चला ही।
1: तो
0: गाना सुना दिए
1: बता दी कौन सा गाना?
0: अमित उपाध्याय के गाना हो फादर के आदर मदर के कदर। हाँ ये सुना दे।
1: और गाना
0: क्या सुना? बस रौड़े लोग सुनावे के बाद टोनी मैम जहाँ रहे मुझे सुन लेम और रौड़ो सुन लेम और जितना हमारे नाम से जाने वाला लोग सब सुनू। तनी बढ़िया गाना बटे एक के काटे मत। हाँ तो काटे मत तनी बढ़िया गाना बा कोनो खराब गाना नहीं है। हमारा मुँह से खराब गाना तो रेडियो में नहीं जाये हम ना सुन ले। हाँ चले फिर सुना दे
1: गाना प्ले करते नहीं सुनते रेडियो 90.4।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87-894-18744।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
12: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
13: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
4: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते,
4: क्या हाल है?
3: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। क्या हो रहा है अभी?
4: अरे क्या हम कर रहे हैं अपना, अभी तो पहला कॉल है क्या?
3: अभी तो आपका पहला ही कॉल है।
4: और सब बताइए?
3: और सब ठीक है।
4: दीदी क्या हाल है?
3: आज छुट्टी पे हैं।
4: आज छुट्टी पे हैं? आज तो आप ही सोचा लाएंगे। मेरा एक हफ्ता हो गया है, मेरा गाना बजा दीजिए। ठीक है, आज ही बजा दीजिए गाना है। ओढ़ने उड़ के नाचेंगे गाना पे।
3: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
4: आपको, स्वामी देवी को, मनोरमा देवी को, पूजा देवी को।
3: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा ग्राम जिला
1: जी। कैसे हैं आप?
0: मैम अपना बताएं।
1: हम भी अच्छे हैं।
0: और क्या हो रहा है?
1: बस आप सभी से बातें हो रही हैं।
0: और मौसम का क्या हाल चाल है गोपालगंज में?
1: मौसम तो इधर अभी गर्मी पड़ रहा है।
0: गर्मी बहुत ज्यादा, 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रहा
1: है। और धूप भी वैसा ही निकल रहा है।
0: बहुत तगड़ी धूप हो रही है। तो मुझे गाना सुनवा दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: और गाना ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, यही गाना सुना दीजिए।
1: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा,
11: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
9: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
12: Now pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
12: Pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up.
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
17: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
15: जी नमस्कार मैम,
16: रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार
15: मैम,
16: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
15: जी हम भी ठीक हैं। जी मैम, आप कॉल कट कर रही हैं?
16: जी कॉल कट कर रहे हैं।
15: जी उठ गया था अभी भी?
16: नहीं तो वो आवाज नहीं आ रहा था मेरे को।
15: आपका आवाज आ रहा था, इधर भी जा रहा था,
16: इधर से, मतलब आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी।
15: जी मैम लग के कट गया, बहुत मेहनत करके लगाया था।
16: अच्छा, नहीं आपकी आवाज आ नहीं रही थी, बहुत देर से हेलो हेलो कर रहे थे इसीलिए कट करना पड़ा।
15: आज बहुत कोशिश की है मैम, 11:02 लगाए।
16: अच्छा, हम स्टार्ट भी उतना ही टाइम से किए।
15: जी मैम, 11 बजे राइट लगाए थे तो बंद था। आपसे शिकायत है दूसरा शो का कि आप मैसेज शामिल क्यों नहीं करती है मैम?
16: मैसेज शामिल करते तो है।
15: जी मैम, नहीं योर वॉइस, योर वॉइस है ना उसमें।
16: नाम क्या है आपका?
15: जी सफरोज अली बोल रहे हैं।
16: अच्छा, तो आपका तो मैसेज शामिल किए थे, करते हैं?
15: नहीं मेरा शामिल नहीं हुआ था उस शो में।
16: पक्का आप सुने थे?
15: जी मैम हम सुनते हैं डेली, कोई भी शो मिस नहीं करते हैं।
16: अच्छा ठीक है, आइए आज ऑनलाइन आ रहे हैं।
15: ठीक है, आप शामिल ही नहीं करते। वो नंबर है ना, क्या नंबर है वो वॉइस का? 98 वाला।
16: हाँ हाँ, इसी में व्हाट्सएप पे ही ना करते हैं।
15: हाँ,
16: तो मैसेज तो सबका सामिल किया जाता है।
15: मेरा नहीं हुआ था पिछले मंगलवार को, आप ही थे उस दिन, सोनी मैम तो नहीं थी।
16: आ जाइए, आज कर देंगे।
15: ठीक है मैम, देखते हैं।
16: ओके,
15: फिर भी तो चलते चलते गाना सरवाइव कर दे।
16: बिल्कुल कर दीजिए।
15: गाने का बोल है सूरज हुआ मध्यम गाना है ना, नहीं तो एक और है, मतलब ये दोनों में कोई सुनाइएगा। कब तक अकेले, अलका याग्निक का आवाज है।
16: कौन सा सॉन्ग?
15: कब तक अकेले है, ऐसा ही कुछ गाना है अभी हियर माय चॉइस में। कब तक अकेले गाना का नाम है, अलका याग्निक गाना है। सुनी है मैं, यही वाला गाना सुनाइएगा।
16: ओके
15: चलिए, तो और भी लोग
16: किसी को डेडिकेट है
15: जी मैम, आपको सुनी मैम को, सभी सुनने वालों को।
16: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 91.1।
15: ओके मैम, बाय बाय
16: बाय।

0: हेलो।
1: हेलो, हाँ नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 एफएम में।
1: मेरे भाभी से बात करी। हेलो,
0: हाँ
1: मैडम हमको गाना सुनना है
0: जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है
1: हमको। योर अनी के कोर से पूछो अपन लो, यही गाना सुनना है।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: अभी घर के लोग को सुनाना है, मेरे अपने भाभी को, अपने भतीजी को सुनाना है।
0: अच्छा जी, और वैसे आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम सुमन कुमारी है, साकिर इंदरवा के लगे। उसी समय से आपको कॉल करते करते बीजी बीजी बीजी बीजी लग गया।
0: अच्छा जी,
1: कब गाना सुनाएंगे मैडम?
0: सुन लीजिएगा, वैसे भी आज शाम को ये सॉन्ग बजने वाला है, 5 बजे फर्स्ट ही कॉल बजेगा।
1: सुनिए ना मैडम, और एक बार में हम लोग कॉल किए हैं तो दो गानों के रिकॉर्ड नहीं किए हैं?
0: एक दिन में 2 सॉन्ग।
1: हाँ,
0: एक कॉल के लिए बस एक गाना।
1: अच्छा, मतलब एक कॉल के एक गाना। चलिए ठीक है, और सब ठीक है ना मैडम?
0: हाँ, और
1: सुनिए ना आप।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
8: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57-902।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: नमस्कार भारती जी।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: धर्मदर्शी वाली बोल रहे हैं चंडीगढ़ से।
12: जी, क्या हाल चाल है?
13: बढ़िया। सोनी जी आजकल नहीं आ रहे हैं ना?
12: आती हैं तो योर वॉइस योर चॉइस का वही ना शो करती हैं।
13: बहुत दिन हो गया बात करके, 4-4 हफ्ता हो गया हम।
12: अच्छा, अभी तो फिलहाल ये वाला मतलब शो है जो हम ही चला रहे हैं
13: ना? ठीक है, अभी थोड़ा आ रहे हैं, आप लाइन में आ रहे हैं। अब बोलने का मुझे अनुभव बढ़ रहा है।
12: कोशिश कर रहे हैं।
13: ना ना बढ़िया अनुभव हो गया है, प्रोग्राम सुनते हैं ना पूरा दिन, अनुभव आपका अच्छा हो रहा है। और सब ठीक है ना?
12: हाँ हाँ सब ठीक है।
13: बारिश वरिश हो रहा है कि नहीं?
12: नहीं बारिश तो नहीं हुआ है और गर्मी भी तो बढ़ गया है।
13: गर्मी को तो पूछिए मत, सावन का महीना चालू होने वाला लग रहा है, साला मई अप्रैल का महीना। इतना गर्मी हम लोग का काम करना पड़ता है खुले में पूरा।
12: उधर बारिश हुआ और इधर अब

0: हम लोग की तरफ में थोड़ा भी पानी नहीं हुआ शुरू से लेकर अभी तक। अब देखिए अगस्त में हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी तो इधर गुजरात महाराष्ट्र का हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। आदमी दिखा रहा था न्यूज में पूरा रूम में पानी भर गया था।
1: उधर तो है, कहीं तो बाढ़ ही आ गया और कहीं सूखा ही पड़ गया है।
0: इधर आपके गोपालगंज को उधर बियर पड़ता है ना, उधर भी बाढ़ आ गया। ये बोलबम का सॉन्ग सुनवा दीजिए,
1: गाने की बोल बता दीजिए,
0: पवन सिंह की आवाज में।
1: अच्छा, कोई भी पवन सिंह की आवाज में?
0: हाँ बढ़िया, थोड़ा बोलबम का सॉन्ग सुनवा दीजिए, मिजाज थोड़ा मर जाएगा।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: अपना वरुण पांडे है, रंजीत है, सुनील है।
1: ओके चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 91.4 FM।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: हम बोल रहा हूँ निखिल, बहुत अच्छा प्रज्वलित हुआ
1: जी। कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: गाना मेरे को सुनना है, गाना हमको सुना दीजिए, तुम्हारा प्यार में कमजोर तो उसका छोड़ देना।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: आपको डेडिकेट है, सबको जितना रिमझिम के बानी टीम सबको डेडिकेट हुआ। मेरे कॉल करते हैं पहले तो बिजी बता रहे थे, हम बोलते ब्लॉक हो गई थी उससे हम लोग नहीं जुड़ सके हैं।
1: नहीं नहीं, नहीं बिजी बताता है, बिजी इसलिए बताता है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज से आते रहते हैं लगातार।
0: अच्छा, चलिए मैम गाना डेडिकेट है सुना दें।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: आ सकती है ना?
1: हाँ हाँ, और सब ठीक है।
0: गाना नहीं बज सकता है, एक ही लिसनर को एक ही बजते हैं।
1: हाँ, एक लिसनर का एक ही सॉन्ग।
0: ठीक है, थैंक यू।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?

0: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
2: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
5: ठक ठक
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फॉरमाइज के साथ रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे। समय 9:30 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7277-16-65-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोगों को पुराने गाने का फरमाइश करना है। ये बातें हर रोज आप सभी के बीच हम सभी साझा करते हैं, चाहे जो भी कार्यक्रम चले उस कार्यक्रम का नियमावली आप सभी के बीच प्रस्तुत की जाती है कि ऐसे कार्यक्रम में जुड़ना है। तो इस कार्यक्रम में पुराने गाने के साथ जुड़ना है तो आप पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने पसंद के गाने सुने। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 7277-16-65-96 पे। यहाँ पे आगे पहला मैसेज मेरे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मधु सरिया से राजू कुमार सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में राजू जी। कल हमें लगता है कि आपकी फरमाइश पूरी किए सो आज तो नहीं पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरी नज़र में तेरा इंतजार है, ये गाना सुनाए। और हम लखन पांडे गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे तो ना कोई आसमान चाहिए, मुझे तो ना कोई जहान चाहिए। तू तो सितारों की एक महफिल है, बस उस पूरी महफिल में से बस एक तू चाहिए। सोनू भाई नमस्कार, और आपको सावन महीने की शुरुआती आपकी कृपा बने रहे। शमीर भाई की गाना सुपर, और मैसेज कल के पहुंचे हुए हैं और आज भी इस डिवाइस में रिसीव हो रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि कुछ नशा तो ये धीमी बरसात का है। आप यूं ही हमें शराब ना

है तो कभी शॉपिंग करानी है। मास्टर रोज कहते हैं कहाँ है फीस के पैसे, उसे मैं कैसे समझाऊं कि अपनी माँ की बहू भी लानी है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मिसेस पहुँचा हुआ है। हेलो सर, मैं प्रिंस यादव चनावे गोपालगंज से बोल रहा हूँ और मुझे गाना सुनना है। गाने हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और आप बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि काकड़कुंड से हमको भी गाना सुनना है, सिकंदर राज बोलबम का, पवन सिंह का पुराना वाला। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का नाम बताएं, कौन से गाने सुनना है, तभी तो फरमाइश पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाँ भैया मुझको भी गाना सुनना है। बुलेट चौधरी तीन फेड़िया से जुड़े हुए हैं, खेसारी लाल की आवाज़ में कोई भी सावन का। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कोई भी नहीं, आप गाने का नाम बताएं और यह समय आपके लिए निर्धारित की गई है कि आप अपने पसंद के गाने फरमाएं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और अपना आगे मैसेज सेंड करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो सनम भैया, MD नवसाद दरभंगा भाजीतपुर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है नवसाद जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कैसे हैं आप आज, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा फरमाइश ज़रूर सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं अजय कुमार मिश्रा जी, ग्राम गणेश स्थान माझा जिला गोपालगंज से। तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज तो आते जा रहे हैं, तो मैसेज को रोकते हैं, गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं और पहले गाने की फरमाइश करते हैं पूरी लखन पांडे जी की। और इनके तरफ से गाने का बोल दिया गया है, मेरी नज़र में तेरा इंतजार है। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे।

दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ

0: से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी प्यारा। और इस शो से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने के फरमाइश वाला मैसेज हम बता दें, आगे गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। अजय कुमार मिश्रा जी की ग्राम गणेश स्थान माझा जिला गोपालगंज से मैसेज किए हुए हैं और कहते हैं कि मुझे फूल और कांटे फिल्म का गाना सुनना है, आप कल भी मेरा फरमाइश नहीं सुनाई। तो आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आप सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। यदि सुन रहे होंगे तो एक मैसेज भी ज़रूर करेंगे ताकि हमें भी एहसास हो कि हाँ, हमने आपकी फरमाइश पूरी की है तो आप सुन चुके हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोना भाई जी, मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में रोहित जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, और मैसेज करती हैं रोशनी। उससे पहले मैसेज लिखी है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय भैया जी, श्याम कुमार मोतिहारी से, और हमको गाना सुनना है दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरती है तो गा लेते हैं। बिल्कुल सुनाएंगे चाहत मूवी से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और हेलो सर, मैं दीपांशु गोपालगंज से बोल रहा हूं और मेरा एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फ़िलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज प्लीज़ आप चेक करके बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और लिंक भेजे हुए तो थोड़ा सा आप उस गाने का नाम बता दीजिए सिकंदर जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं उषा कुमारी, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भैया प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल लेके करके ही तो गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे, अभी तो एक ही गाने हम सभी सुने हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो जी, मैं रेखा पांडे गोपालगंज सरेवार नंबर 5 से, सर मेरा गाना भी प्ले कर दीजिए, मैं मंगलवार से आपका अपने गाने का इंतज़ार कर रही हूँ। वह गाना तो नहीं बताऊंगी, आज दूसरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, लेकिन मैसेज को शामिल करने से पहले आज फिर से हम आप सभी के बीच एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे सेहत से लाभ कई के अंतर्गत। आज हम सभी जानेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रामक इन्फेक्शन है जिसमें फेफड़ों की वायु थैलिया में सूजन आ जाती है, इनमें पानी या मवाद भर जाता है, इससे सांस लेने में कठिनाई होती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। निमोनिया के कई कारण हो सकते हैं जैसे बैक्टीरियल, वायरस, फंगस, धूल धुआं या भोजन तरल पदार्थ फेफड़ों में चले जाना। जोखिम किन लोगों के लिए अधिक हो सकता है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, मधुमेह, अस्थमा, हृदय रोग वाले लोग और कमजोर प्रतीक्षा वाले व्यक्ति, इन लोगों के लिए निमोनिया अधिक खतरनाक साबित होता है। निमोनिया के प्रमुख लक्षण है तेज बुखार और ठंडा लगना, खांसी बलगम के साथ या बिना बलगम के साथ दोनों हो सकते हैं, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द खासकर खांसते समय और तेज सांस चलना, कमजोरी और थकान महसूस करना, बच्चों में दूध ना पीना, सुस्ती या तेज सांस लेना, ये सारे लक्षण हैं। जाँचें इनके डॉक्टर द्वारा शारीरिक जांच, छाती का एक्सरे, रक्त जांच, बलगम की जांच, ऑक्सीजन स्तर की जांच। उपचार हैं, उपचार कारण पर निर्भर करता है जैसे कौन सी निमोनिया आपको है। तो बैक्टीरियल निमोनिया में डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक दवाएं लें। वायरल निमोनिया में आराम, तरल पदार्थ और आवश्यकता अनुसार दवाएं लें। बुखार के लिए पैरासीटामोल डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही लें और पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन लें। गंभीर परिस्थिति में अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन या अन्य उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बचाव है इनके निमोनिया और फ्लू के टीके समय पर लगवाएं, हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं, धूम्रपान से बचें, पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त नींद लें, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकें। ये सारे इनके लक्षण हैं और कुछ बचाव हैं। तो ऐसी जानकारी हर रोज़ आप सभी के बीच दी जा रही है सेहत से लाभ के अंतर्गत। तो इसका उपयोग आप सब अपने जीवन में थोड़ा अपनाएं और करें, यदि संभव हो तो दूसरों को इस जानकारी को साझा करें और उस व्यक्ति को अपने सूझबूझ के अनुसार सलाह दें और हो सके तो उसके साथ आप अपना समय भी देना चाहे तो दे सकते हैं ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। और आगे हम सभी जानेंगे कि कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि इनमें से कोई लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाने की कोशिश करें। सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी हो या नाखून नीले पड़ना, लगातार तेज बुखार, भ्रम, अत्यधिक सुस्ती या बेहोशी, बच्चा बहुत तेज सांस ले रहा हो, दूध ना पी रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और इसका इलाज कराए। ये सारी इनकी गंभीर अवस्था है। तो ऐसी अवस्था आप सभी के बीच आती है तो इसमें थोड़ा सा भी कोताही ना बरतें, इसको आप गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सूझबूझ के अनुसार अपने को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो फिलहाल आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे और जो भी चर्चा हुई इस पे आप लोग अपना सूझबूझ के अनुसार उपयोग करेंगे अपने जीवन शैली में। तो फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग और मैसेज करते हैं मनीष यादव। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग बजवा दीजिए, तो बिल्कुल आपका भी सॉन्ग बजेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि का हाल बा सोनम बाबू, हमू जुड़ गई बानी, तो कल के एगो हमरो गीतवा सुना दी, तो बिल्कुल सुनाएं और एक ही करके फरमाइश पूरा करते ही बने। फिलहाल रावर भी स्वागत भाई कार्यक्रम में और मिसेस के करतानी लवली गुप्ता के खरिया रक्सोल नेपाल बॉर्डर से आगे मिसेस पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम पूरी करते हैं
इस मिसेस को पहुंचाती हैं रोशनी और मिसेस करती हैं वाओ सुपर सॉन्ग। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, दिल लोए लोए आजा आजा माही, डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर है सब प्रियांशी पूजा, कुछ रेडियो फ्रेंड्स है रानी रजनी संतरा कुशवाहा सविता चौहान आशा चौहान निशा सिंह निशा भारती सबीना अपी और शिल्पी सिस्टर इरफान भैया कमरान भैया हरकेश भैया गुलाम भैया समीर भैया दिलीप भैया वीरेंद्र भैया लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं रोशनी, आप भी अपने गानों के साथ इंजॉय करें रेडियो 94.4 FM।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
2: रेडियो MGM 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश ले करेंगे और इस मैसेज को पहुंचाते हैं बीना उस्ताद दरभंगा भजीत पुरुष और गाने का बोल देते हैं शहंशा फिल्म से। गाने का बोल, जाने दो मुझे, जाना है आज किसी से मुलाकात है मेरी, कौन है वो। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए आपको धन्यवाद रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने बजाएंगे और फिलहाल आगे गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के शॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे सुन रहे हैं। सोशल लिसनर्स फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँच रहे हैं, तो मैसेज को भी शामिल करना है, तो हम आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। रेखा जी की और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। लेकिन रेखा जी, आपसे पिछले सप्ताह गाने सुनाने के बाद कुछ हम बोले थे कि आप रेखा जी हैं, तो रेखा जी वाली ही गाने की फरमाइश करेंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा, तो आप तो दूसरे गाने की फरमाइश कर दें। खैर, चलिए मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में हम गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और समय जो है समाप्ति का हो ही चुका है, और समाप्ति से कुछ आगे हम बढ़ गए हैं। तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे गाना मेरा सुनाने के लिए। MD नौसाद दरभंगा भजीतपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर मेरा नाम उषा कुमारी, तो आज तो पूरी नहीं कर पा रहे, और श्याम कुमार जी आपकी भी फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कई लोग हैं जो मैसेज किए हुए और अपने गाने के इंतज़ार में जी, समय के अभाव के कारण हम फरमाइश को पूरा नहीं कर पा रहे। आगे हम गाने को प्ले करेंगे और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं खेसारी लाल की आवाज़ में। कोई भी गाना सुनना चाहते हैं सावन का, तो इन्हीं के फरमाइश पूरा करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बुलेट चौधरी तीन फेड़िया से जुड़े हुए हैं, तो आप इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ हम सभी हैं, और कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगी। तो जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय होते तो बिल्कुल हम फरमाइश पूरा करते हैं आप सभी की, हमें जितना आदेश है उतना ही तक रुक सकते हैं, आगे नहीं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो 94 FM जो हमेशा कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: कसे मानू खाने नच देने सारे
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं? 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादूपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे स्त्री रोग बांझपन ल्यूकोरिया दिमाग की कमजोरी याददाश्त की कमी पेट रोग गैस्ट्रिक लीवर में सूजन बवासीर कान रोग पुराना बुखार नस रोग किडनी की पथरी पीठ की थैली में पथरी पेशाब की थैली में पथरी गठिया पुराना जोड़ों का दर्द साइटिका चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक।

और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आपके मनपसंद कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप हमें इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। जी हाँ, 9852788291। और कॉल के लिए हमारा नंबर है 7277166696। जी हाँ, 7277716596। तो दोस्तों, सावन के इस पावन अवसर पे हमारे रेडियो रिमझिम टीम की तरफ से सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक प्यारा सा गीत। इंजॉय कीजिए गाने को जब तक सभी श्रोतागण हमसे जुड़ रहे हैं।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग, कोई लड़की है जब वो हंसती है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि भारती जी, मैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से सावन के पहला सोमवार को हार्दिक शुभकामनाएँ आपको और आपके पूरे परिवार को। और कैसे हैं आप, मुझे एक गाना सुना दीजिएगा। तो जी बिल्कुल गाना सुनाऊंगी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, आप कैसी हैं, टाइम से भेजा हूं, सुना दीजिएगा, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं। और लिंक के माध्यम से गाना पहुँचा हुआ है और गाने के बोल हैं बिछिया। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी श्रोताओं के साथ।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। और मैं आपको आप सभी को एक बात और बता दूं कि यदि आप रेडियो रिमझिम के यूट्यूब फेसबुक ट्विटर पर विजिट करके गोपालगंज के हाल चाल के बारे में जान सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते, मैं संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम, और गाना सुने के सुना है और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनका भी गाना लिंक के माध्यम से पहुंचा हुआ है। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा है जो लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार, राधे राधे, हम भी जुड़ गए हैं और हमें एक फरमाइश किए हैं, गाना बजा दीजिएगा। और गाने के बोले बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पंकज जी की तरफ से मैसेज पहुंचा और लिख रहे हैं कि नाइस ओपनिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है। और वैसे ये दोनों लड़की और लड़के की तरह है मुझे, क्योंकि घटा घेर तो रहा है और बागी बारिश नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा सावन की प्रथम सोमवारी की ढेर सारा शुभकामनाएं। तो आप सभी को हमारी तरफ से भी सावन की पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत स्वागत है। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। इसी के साथ बढ़ेंगे बिना देरी किए अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा है जो लिख रहे हैं कि भारती मैडम, मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर से, और मुझे गाना सुनना है, मैंने पायल है छनकाई, और अर्जेंट में सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना मोहम्मद अंसारी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में, मैंने पायल है छनकाई। और इसी के साथ बढ़ेंगे, लिख रहे हैं कि भारती जी आप बहुत अच्छी हैं, अर्जेंट समझ गई और आपके आपका बात भी बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते मैम, मेरा मैसेज नहीं दिखता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सबका मैसेज दिख रहा है और सभी का मैसेज मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती मैम, कैसी हैं आप? मुकेश यादव गोपालगंज के। और हमारे जिगरी दोस्त उत्तम भाई, बिरजू भाई, देवेंद्र भाई, भास्कर जी, सबको नमस्कार बोलिएगा। तो मैंने बोल दिया है आपके तरफ से सभी को नमस्कार। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, हम अजय कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि आपकी पसंद, आपको प्यार भरा आदाब और प्लीज़ प्ले फिल्म नीला आकाश 1965 का, और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और गीत आखिरी गीत मोहब्बत का सुन लूँ तो चलूँ। और सहावर रोड गंज डुडवार से, और उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शामसुल कमर राही, थैंक यू फॉर यू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं, और गाने के बोल हैं आखिरी गीत मोहब्बत के सुन लूँ तो चलूँ। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं साकिब जम्मू एंड कश्मीर से बिहार का रहने वाला हूँ साकिब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं विमला कुमारी सोनी मैम कहाँ गई हैं और मेरी फरमाई से 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय राज मोबाइल सर्विस बिशनपुरा से गुड मॉर्निंग, मुझे भी सॉन्ग सुना दीजिएगा ये दिल आशिकाना से, और ये गाने के बोल हैं ये नटखटी। तो प्लीज़ गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार, राधे राधे, हम भी जुड़ गए हैं और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने के बोल हैं बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुशवाहा MP से। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के सॉन्ग, प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मुस्तफ़ा जी, सऊदी अरब से जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमशेर मुंबई से जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरे राज बाबा के नगरी से जुड़ चुके हैं और सावन का प्रथम सोमवार आपको मुबारक हो और हर हर महादेव। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपको भी सावन का पहला सोमवार मुबारक हो। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँची है, चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: क्या हाल है?
0: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: गाना सुनना है थम के बरस, थम के बरस मेरे महबूब के घर जाना है। बारिश हो रहा है अभी मेरे इधर। आपके इधर हो रहा है क्या?
0: अभी तो मैं बाहर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा, मौसम तो बनाया हुआ है।
1: मेरे इधर हो रहा है बारिश।
0: अच्छा, और
1: आज मेरा मोबाइल थोड़ा बड़ा वाला मोबाइल खराब हो गया था, व्हाट्सएप खराब हो गया, उसी कॉल कर दी।
0: अच्छा जी, तो गाना डेडिकेट भी है।
1: खास पहले आपको मनोरमा दीदी के है, सुन दीदी के है, आप पूरा रेडियो रिमझिम का है।
0: जी जी, चलिए फिर गाना आपका प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86 034 48 652 पे।
7: छोटे से ब्रेक के बाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और इसके साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार, मैं अभी प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ और सागिर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि हर हर महादेव भारती जी, हम शंभू यादव पुलिस लाइन से, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और हमारे साथ ही जुड़े हैं जिनका नाम है रंजन, दिलीप जी, सानिया जी और प्रतीक्षा जी, तो हमें शामिल कर लीजिएगा। और हर हर महादेव, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और आ गई नहीं हम हूँ, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। जी मैम, मैं उत्तम सोनी हरपुर से, और वाव सुपर सॉन्ग मैम, मेरा भी मैसेज शामिल कर लीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हाय मैम, हमको भी गाना सुनना है, तो गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आपको बता दूँ कि अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपका नाम क्या है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि खुशबू की तरह मेरी सांसों में रहना, लहू बन के मेरी नस नस में बहना, दोस्ती होती है रिश्तों का अनमोल गहना, इसीलिए दोस्तों को कभी अलविदा ना कहना। भारती जी नमस्कार, गाना सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया, मैं दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारा भी मैसेज थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी के मैसेज एक एक करके शामिल कर रही हूँ। और यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सोनी मैडम, सचिन कुशवाहा पुणे से, मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। तो उनका सॉन्ग लिंक के माध्यम से पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए बिना देरी किए गाने को सुनते हैं, क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
8: नमस्ते
7: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। हाँ जी, कैसे हैं आप? ई तो अभी ना देखनी है, जाके देखे पड़ी कि बारिश होता कि ना, लेकिन मौसम तो बने ले रहा है।
8: बनल बा मौसम, हम कोई से पूछनी है कौन बारिश होता कि ना, नहीं नहीं क्या होता अभी। तो गाना सुना दी।
7: बता दी कौन सा गाना सुना।
8: चंदा रे जाकर भैया से कहना, खाना तेरा याद करे।
7: और गाना क्यों के सुनाऊं के बाद?
8: जितना लोग सुनते सब कुछ सुने, हम सुने, रवि सुने, हमारे बेटी लोग बहुत सुने।
7: तो चलिए और गाना प्ले करते नहीं।
8: नमस्ते
7: जी। नमस्ते, रेडियो रंजू में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करिए अपना गाना के।
8: थैंक यू।

तो अभी हम लोगों ने सुना रामा जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रक्षाबंधन पे, और गाने के बोल थे चंदा रे मेरे भैया से कहना बहन याद करे। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा ग्राम जई छपरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, मुझे भी गाना सुनना है, गाना सुनवा दीजिएगा। और गाने के बोल हैं सावन आया बादल छाए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना है सनम बेवफा फिल्म का, कोई गाना मुझे। और गाने के बोल हैं रब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, और गाना सुनना है, गाने के लिंक पहुँची हुई है, और गाने के बोल हैं तुझे प्यार से देखने वाला। और चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं, सभी के साथ इंजॉय करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि संजय यादव जी की थैंक यू मैम मेरा गाना बजाने के लिए। तो आपने अपने गाने को इंजॉय किया, अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना है सनम बेवफा मूवी से, प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो अपनी बारी का वेट कीजिए, वैसे भी आज आपका दिन नहीं है, आपका तो 2 दिन पहले ही सॉन्ग बजाए हुए थे और फिर उसी दिन बजेगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखता है कि हेलो मैम, अमित बेरोजगार सिवान से और गाना सुनना है नाम ढेले भी या खुशी उहे गम दे और सुनाना चाहते हैं चंदन बेरोजगार को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ और लिख रहे हैं कि मूल्य वस्तुओं का नहीं होता है बल्कि हमारी ज़रूरत उन्हें मूल्यवान बना देती हैं। तो बात तो सही है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, हम अंकित राय गोपालपुर से और मुझे एक गाना सुनना है रेशम की तरह भैया रक्षाबंधन का सॉन्ग सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हाय मैम, मेरा भी हाजिरी लगा सकती हैं क्या? और मैं रंजीत चौधरी दुबई से और साथ में मेरे भाई विकास चौधरी, बट सॉन्ग नेम प्यार हुई ना दोबारा और मेरा भी सॉन्ग बजा दो यार प्लीज़। तो चलिए बिना देरी किए नीलकमल।

तो अभी हम लोगों ने रंजीत चौधरी जी की तरफ से नील कमल जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुना, हुई प्यार ना दोबारा हो। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मैं तारकेश्वर मांझी दुबई से। मैडम जी हमें भी गाना सुनना है और ये राजा जी एगो पुन कही दो और अपने ही हाथों से हमरा खून कही दो। शिल्पी राज के आवाज़ में तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नज़र लग जाती है जताया न कर, इश्क एक राज है बताया न कर, लाख समझाया शक करता है जमाना, जब तू पास से गुजरे तो मुस्कुराया न कर। बहुत ही खूबसूरत लाइन थी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी 54 से मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैं लिख रहे हैं कि मैं खामोश रहता हूँ, मुझे दर्द सुनना नहीं आता, हर किसी को अपना हाल बताना नहीं आता, कहते थे मेरे हंसी से महफिल सज जाती है और बस इतना टूट गया हूँ मुझे।

मुस्कुराना भी नहीं आता। ओहो, तो क्या बात हो गई है, और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मैं जमालुद्दीन, दिल्ली NCR से, मुझे अच्छा लगता है सुनना और मुझे गाना सुनना है, दिल का हाल सुने दिल वाला, और गाना सुना दीजिएगा, प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

और यहाँ जमालुद्दीन जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि शुक्रिया मैडम, पहली मर्तबा याद आए और इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। जी हाँ, 9852-78-291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। जी हाँ, 7277-16-596। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, नमस्ते, मैं विष्णु, मैं सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, और गाने के बोल हैं पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, मूवी लक्ष्य ऋतिक रोशन का, और डेडिकेट है अमित अलबेला और चंदन चंचल को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, और लिख रहे हैं 500 की नोट और एक्सरे की रिपोर्ट। बंदा भले ही उसके विषय में कुछ भी ना जानता हो, पर हाथ में आते ही ऊँचा करके देखता है ज़रूर। तो बात तो सही है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं जलंधर पंजाब से गोविंद जुड़ चुका हूं, और मैं मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, जो कि फरमाइश पहुँचे हुए अमित बेरोजगार जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है नाम धेले भी या खुशी उहे गम दी। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी हम लोग ने सुना नील कमल जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग नाम धेले भी है खुशी हुए गम दी, और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, मैं साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ, और आप कैसी हैं? सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया कुछ आईकोट गोपालगंज से रहने वाला हूँ, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम। सॉन्ग नेम संदेशी आते हैं, बॉर्डर सॉन्ग का ओल्ड सॉन्ग, और आपने मेरा गाना कल भी नहीं बजाया, और हमसे कोई दुश्मनी है क्या जो मेरा मैसेज शामिल नहीं कर रही है? तो नहीं, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरा गाना कब बजेगा? तो शायद मैंने आपका गाना शनिवार को बजाया था। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज अमित जी की तरफ से पहुँच गया, थैंक्स मेरा गाना बजाने के लिए। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून मैडम, क्या हाल चाल है? और मैं सोनू कुमार दुबई से जुड़ गया हूँ, और हमरो एगो फरमाइश में पूरा कर दी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि गाना के जरूर गुनगुना दें। और लिख रहे हैं कि मोहब्बत कर ली तुमसे बहुत सोचने के बाद, अब किसी को देखना नहीं तुझे देखने के बाद, दुनिया छोड़ दूँ तुम्हें देखने के बाद, खुदा माफ़ करे इतना झूठ बोलने के बाद। तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि विष्णु जी की तरफ से, और गाना सुनना है इनको, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, और ऋतिक रोशन जी का है, और मूवी है लक्ष्य। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97707065575।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे। आगे की तरफ और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम, मुकेश यादव बलि था मोहम्मदपुर से, और मुझे भी गाना सुनना है और गाने के बोल पहुँच बर्बादी भोला जी का गीत सुनना है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें केवल हिंदी सॉन्ग और भोजपुरी सॉन्ग सुनाया जाता है, इसमें भक्ति सॉन्ग नहीं सुनाया जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं सुना सकती। अगर आप हिंदी या भोजपुरी कोई भी गाने की फरमाइश करते हैं तो मैं आपको सुना सकती हूँ। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मैं गोपाल राय और बंगाली भाषा में कुछ लिखे हुए हैं जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, क्या हाल है आपका, और मैं संजय नवादा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: जी। हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: भारती जी। नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार
1: जी, सात मास्टर बोल रहे हैं ग्राम थाना से।
0: हाँ जी,
1: क्या हाल चल रहा मैडम?
0: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैसेज किए हैं, आप तो पढ़ नहीं रही हैं।
0: अच्छा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, आगे पीछे हो जाता है कभी कभी।
1: अच्छा अच्छा, एक हफ्ता दो हफ्ता चलाते चलाते आप भी फास्ट हो जाइएगा। तो तेरी मेहरबानी मूवी के गाना निकाल दीजिए।
0: तेरी मेहरबानी मूवी।
1: तेरी मेहरबानी आग लगी तन मन में जब पानी बरसे हाए, ऐसे में आ जा बेदर्दी सावन के दिन आए। और सुनने वाले सभी, आपको भी सुनवाना चाहता हूँ, और रेडियो रिमझिम जितना श्रोताओं सुनते हैं सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ। और हम लोग रोशन तिरंग में धनास आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी लोग सुनेंगे।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर दिए हैं, तब एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी जी, तो आपका गाना प्ले कर दिए हैं, तब एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी हम लोग ने सुना इरशाद मास्टर जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और गाने के बोल थे आग लगे तन मन में। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैडम जी, नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून मैडम जी, कैसी हैं मैडम जी। और मैं प्रीति रायदास विलेज लकड़ी दरगाह से डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से जुड़ चुकी हूँ और आज मुझे गाना सुनना है। और गाने के बोल हैं जीजा के छुटका भाई और एल्बम सॉन्ग है एल्बम नेम गवनवा ले जा राजा जी। और मैडम जी जल्दी है थोड़ा प्ले कर दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, हमको गाना सुनना है और टाटा जमशेदपुर से झारखंड से, मेरा नाम रेहान खान और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, यहाँ गाना सुनना है और गाने का देवी का आवाज़ में गाना है मनवा के ललसा पुरादी राजा जी और गाना सुनना चाहते हैं। और लिख रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा और मैडम जी तिजोरी में बंद करके रख दे ले पानी का, तो ना ऐसा कोनो बात नहीं है, सबके मैसेज शामिल कर जाता। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बाजे की लिखा था कि हेलो मैम, क्या हाल है और आपका, मैं संजय नवादा से और मुझे भी गाना सुनना है और गाने के बोल हैं देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा और बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसटी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले धनेश कुमार जी जो कि लिख रहे हैं कि अक्सर जब हम उनको याद करते हैं अपने रब से यही फरियाद करते हैं, उम्र हमारी भी लग जाए उनको, क्योंकि हम उनको खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, सरफरोज अली अखिल टोला से, गोपालगंज में बारिश हो रहा है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। और नहीं, अभी तो गोपालगंज में बारिश नहीं हो रहा है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम, जब मेरा नंबर आएगा तो एक नोटिफिकेशन दे दीजिएगा, क्योंकि हमें अभी हम ड्यूटी में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आप अपना मैसेज या गाने की फरमाइश कर सकते हैं, और आज आपका बज सकता है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पंकज जी कि मेरा भी गाना बज सकता है क्या, और लिख रहे हैं कि हुई प्यार ना दोबारा इससे, वैसे मुझे 4 बार हो चुका है। तो हमें भी बताएं कौन है। और इसी के साथ लिख रहे हैं कि वाह नाइस सॉन्ग कल्पना जी की आवाज़ में, जीजा के छोटका भाई है, और एल्बम है प्यार के रोग भैल से। और इसी के साथ इनकी तरफ से हमारे पास वॉइस पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।

0: आहे हेलो राम राम दोस्तों जुड़ के भोजपुरी या फरनाम बा और का हाल बा ठीक बा। हम रेडियो फैन पंकज अपन घर सिवान से इस के होस्ट और दोस्त रूह के सलाम बा और का हाल बा ठीक बा। उम्मीद बा कि सब मस्त बिंदास होखा। मौसम भी काफ़ी अच्छा बा, बारिश नहीं होत लेकिन बारिश के माहौल बनता आवता जाता। चलिए कौनो बात ना, तो चलिए आज मैं तो बहुत कम बोलम और गाना के रिक्वेस्ट रही। गाना के रिक्वेस्ट बटे गुलाम फिल्म से, गुलाम या गुलामी जान लिए। गाना के बोल बटे
1: आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा।
0: अब ये कर नया रिमिक्स नया एक ओरिजिनल बटे क्योंकि वो छोड़ी कॉल बटे कि जान ओरिजिनल बटे वो ओरिजिनल रही। तो ये गाना सुनने के बाटे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में तो सुनाएंगे गाना। और ये गाने के साथ हम जितना लोग हमारा के जाने पहचाने वाला बाटे तमाम दोस्त के हम ये गाना डेडिकेट करम और साथ में इसो के होस्ट और को होस्ट दोनों लोग के, हाँ यानी कि भारती मैम और मम्मा मम्मा मम्मा मनोरमा में। बाय बाय।

पंकज जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाने की बोल है आंखों से तूने ये क्या कह दिया। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी हम लोगों ने सुना पंकज जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग आंखों से तूने ये क्या कह दिया, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सरफरोज अली जी की, पंकज भाई का गाना बहुत ही अच्छा है और नाइस सॉन्ग मैम कुमार सानू की आवाज़ में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, हम अंकित राय गोपालगंज गोपालपुर से जुड़ चुके हैं और मेरा गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम सोनू कुमार दुबई से जुड़ चुके हैं और मेरे भी गाने की लिंक पहुंची हुई है, तो प्लीज़ मैम ज़रूर बजा दीजिएगा। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आसिफा खान जो कि लिख रही हैं कि गोपालगंज से जुड़ी हूं और मेरे भी गाने की लिंक पहुंची हुई है, तो प्लीज़ बजा दीजिएगा। और गाने के गाना है पवन सिंह की आवाज़ में भोजपुरी मूवी, तो चलिए डकैत मूवी से, तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289225567 या 9774-86164।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम बारिश में रेडियो सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, गाना चल रहा है तो इन्जॉय कीजिए सभी गाने को। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, गुड इवनिंग, अभी तो गुड आफ्टरनून हो रहा है। और लिख रहे हैं कि मैं फूलचंद अहमदाबाद गुजरात से, और मेरा भी एक फरमाइश है, कृपया करके चला दीजिएगा और आपके पास लिंक भेज रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और इसी के साथ हमारे साथ हमारी आरजे सोनी जी जुड़ चुकी हैं और लिख रही हैं कि हेलो, फरमाइश है प्ले कर दीजिएगा, और भेज रही हूँ। और लिख रही हैं कि पंकज जी आपको आपकी गाने की पसंद तो मैं पहले से ही कायल हूँ, और इस बार भी आपने ऐसा गीत चुना है जो सीधे दिल को छू जाता है, और इस बार इस खूबसूरत फरमाइश के लिए दिल से शुक्रिया। और यही हूँ कि और यूं ही अपनी प्यारी प्यारी फरमाइशों को समय समय पर भेजते रहिएगा। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, पवन सा ग्राम मरिया कगरिया बिहार, हमें भी गाना सुनना है और गाने के बोल पहुँचे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो गुड आफ्टरनून मैडम जी, और मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं सोनू कुमार दुबई से, और गाने की लिंक पहुंची हुई है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं, और गाना है बहकी बहेला पुरवैया उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और मैसेज करने वाले थे सोनू कुमार, और इसी के साथ इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो लिख रहे हैं कि थैंक यू मैडम जी गाना बजाने के लिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि छात्र से टीचर ने पूछा बताओ एक साल में कितनी रात्रि होती है, और छात्र बोला 10 रात्रि। टीचर 10 कैसे? छात्र 9 रात्रि और एक शिवरात्रि, टीचर अभी तक कोमा में है। तो बहुत ही शानदार चुटकुला है, और चुटकुला भेजने वाले हैं धनेश जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, भारती मैम नमस्कार, मैं नंद कुमार शर्मा सिगरौली मध्य प्रदेश से, फरमाइश गीत धीरे धीरे सीख जैबू रानी रनिया करे खेती, और गाना बजा दीजिएगा धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो बिना देरी किए प्ले करेंगे। बर्बादी सॉन्ग है और गाने को प्ले करते हैं और सभी के साथ इंजॉय करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3rd स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ 3rd स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
3: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5,00,000 से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
4: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
5: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
6: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
9: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा।
13: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
13: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AM पर।
9: नमः शिवाय।
10: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
9: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
10: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
10: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
10: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
9: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
10: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
9: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
10: बोलबम हर हर महादेव।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-91। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि आरजे सोनी मैडम जी को नमस्कार प्रणाम, सोनी जी रेडियो में इंतजार है और गाना बजा दी हमरो, और गाना के लिंक पहुँचल हुआ तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार भारती जी, कैसी हैं जरूर बताइएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है सोनी आरजे जी की तरफ से और वॉइस पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और देखते हैं क्या है वॉइस में।
6: नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आरजे सोनी, और मैं भी आप सभी के बीच जुड़ चुकी हूँ। आजकल तो वैसे मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन आप सबसे मिला प्यार हर रोज महसूस होता है, और आपकी लगातार आ रही प्यारी प्यारी फरमाइशों के लिए, काफी खूबसूरत फरमाइशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज मेरी ओर से आप सभी के लिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी गाने की फरमाइश है, और आप सभी को डेडिकेट है, और इसे मेरे स्नेह और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वीकार कीजिए, और यही अपना प्यार बनाए रखिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम को, जो कि कहता है सुनो दिल से। तो गाने की लिंक जो है हमने भारती जी को भेज दिया है, और भारती जी हो सके तो मेरे गाने की फरमाइश जो है जरूर प्ले करिएगा, और सभी लिसनर को गाने की फरमाइश जो है डेडिकेट है।
5: तो हमारे पास यहाँ सोनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने के बोल हैं तुम मिले दिल खिले, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना आरजे सोनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग तुम मिले दिल खिले, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद बेहद लाजवाब है, थैंक यू सो मच डियर यहाँ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी हमें गाना सुनना है, नाम अनीस मेरा साथ सुनने वाले हैं गुलनाथ समा रुखसार आसिफ, गाने का नाम है धनी हो सब धन तोहरे नुबाटे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि गाना बजा दीजिएगा और कब तक बजेगा, सोनी मैडम जी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, मस्त लाजवाब सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की लिंक पहुँची हुई है और गाना है जब दिल में केहू बस जाला। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि भारती जी नमस्ते, सोनी जी का गाना फरमाइश बजाकर चांद चांद लगा दिया आपने, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी जी का वॉइस सुन के दिल की तसल्ली हुई और हमारे बीच सोनी जी जुड़ी हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद और हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। तो मैसेज करने वाले हैं धीरेंद्र कुमार जी, और आपकी तरफ से प्रणाम बोल दिए हैं। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जीते हैं तेरा नाम लेकर, मरने के बाद क्या अंजाम होगा, कफन उठा के देख लेना, मेरा होठों पे तेरा नाम होगा। तो बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ जुड़े हुए हैं मुकिंदर कुमार कुशवाहा बंजारी से, तो अभी दुबई में है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं धर्मेंद्र कुशवाहा देवरिया से, सॉन्ग हाँ तू है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग सोनी जी का, और लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं भी एक गीत सुनना चाहता हूँ आकाशवाणी रेडियो रिमझिम के माध्यम से, और हमरा हमराज मूवी का सॉन्ग है सनम मेरे हमराज, सोनू वर्मा बिलवा जौनपुर उत्तर प्रदेश से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्कार, मैं दिनेश कुमार अहमदाबाद से, मुझे एक गाना सुनना है और गाने के बोल हैं सजना मैं तेरी और तू मेरा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं कि सोनीति का कहाँ है, और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से है, और सब बढ़िया बा, और सुपर सॉन्ग सोनीति, सुपर सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, मेरा सॉन्ग प्ले नहीं होगा क्या, और फेंटेक फैंटास्टिक सॉन्ग सोनी मैडम जी फरमाइश। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी जी के गाने के साथ हम भी जुड़ गए हैं, और सोनी जी को नहीं मेरी तरफ से भेज दीजिएगा भारती जी, नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार भारती जी, कैसी हैं जरूर बताइएगा, और ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, और गम खुद की खुशी में बदल जाएगा, दोस्तों सिर्फ मेरी तरफ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि माना कि मेरे मुकद्दर में तेरा साथ नहीं है दोस्त, मगर ख्वाबों से कोई और चुरा ले, इतनी किसी की औकात नहीं। और भारती जी मैं शायरी को, मेरे शायरी को पढ़ने का कष्ट कीजिएगा, और मेरी तरफ से सोनी जी को प्यार भरा नमस्कार बोलिएगा। वेरी ब्यूटीफुल योर सॉन्ग सोनी बहन, सुनकर मन मस्त हो गया मेरा। सोनी बहन, आपको आरजे से लिसनर बनने के लिए दिल से बधाई देते हैं, और प्लस 551 रुपये मिलते हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो चलिए, मैंने आपका मैसेज सोनी जी को पहुंचा दिया, और सोनी जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि सभी को दिल से धन्यवाद मेरा गाना पसंद करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हाय जी, मैं नमस्ते, मैं जुड़ गया हूँ दशरथ शर्मा जोगवा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मुझे गाना सुनना है, और गाने की लिंक पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि पहली बार जुड़ा हूँ, प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो और गाना सुनाना है अखिलेश शर्मा, पंकज शर्मा और उत्तम सोनी को सुनाना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए मैं आपके गाने को प्ले कर रही हूँ और गाने के बोल है मैरून कलर सड़िया, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मेहरून कलर सड़िया, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ये गाना सोनी जी को सुनाना चाहता हूँ, कृपया आप जल्दी से जल्द बजा दीजिएगा भारती जी। और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आपने मैसेज तो पढ़ दिया पर मेरा नाम नहीं पढ़ा, और यहाँ और नाम है उनका, मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम दुबई से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा। तो जी आपका भी गाना बजेगा। और लिख रहे हैं कि मैं अफ्रीका से जुड़ा हुआ हूँ, सोनू कुमार चौरसिया जो कि रामपुर खरैया का रहने वाला हूँ, और गाना सुनना है संदेश से आते हैं बॉर्डर मूवी का ओल्ड सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मोहम्मद इरफान जी लिख रहे हैं कि बहुत दर्द देती है ये सावन की बारिश भारती जी, और किसी की यादों के पन्ने परतों में खुल जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ एक और लाइन यहाँ पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिल ही दिल में तुम्हें प्यार करते हैं और चुपचाप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये जानते हुए भी आप मेरी किस्मत में नहीं हो पर पाने की कोशिश बार बार करते हैं। और लिख रहे हैं बाय बाय टू ऑल फ्रेंड, मिलते हैं अब कल एक नए अंदाज के साथ, और तब तक गर्मी में आप सभी खास ख्याल रखना अपना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज के लिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा गाना बजेगा क्या नहीं, और लिख रहे हैं कि अच्छा लगेगा मेरी धर्म पत्नी को अगर बजा दीजिएगा। तो आपके गाने की तो आज दिन नहीं है, और आपका गाना बजा था 2 दिन पहले, इसीलिए मैं नहीं बजा सकती, अपने बारी का इंतज़ार कीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा गाना नहीं बजेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, मैं आप सबको बता दूँ, जिस दिन जिसका दिन है प्लीज़ उसी दिन अपने गाने को बजाने के लिए कहें, और मुझे पता है, और मैं यहाँ लिखती भी हूँ कि किसका गाना कब बजा है और मुझे पता भी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने गाने को उसी दिन सुने जिस दिन आपकी बारी है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पाजी यूपी से कि जितनी दोस्ती मेरे बस में थी मैंने तुम्हें तुमसे की, फिर भी हम हार गए। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनाहगार हो गए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत ही खूबसूरत सी लाइन थी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि उत्तम सोनी जी की तरफ से, और लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, संदेश ही आते हैं। और इसी के साथ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
12: नमस्ते मैम।
11: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
12: मैम गाना सुनना था।
11: नाम बता दीजिएगा अपना।
12: साहिल अंसारी।
11: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
12: पूरी सॉन्ग।
11: गाने के बोल बता दीजिए।
12: नीलकमल सिंह का।
11: नीलकमल सिंह जी का कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं बताएंगे तब ना।
12: अपने मर्जी से।
11: नहीं, मैं तो अपने मर्जी से नहीं सुना सकती, क्योंकि मैं रोज आप सभी को अपने मर्जी से सॉन्ग पहला सॉन्ग तो सुनाती हूँ।
12: अपने पसंद का
11: आपको बताना होगा। जल्दी बताइए, लिसनर इंतजार कर रहे हैं गाने के लिए।
12: कौन सी का बजा दीजिए तब।
11: गाने के बोल बताइए।
12: सरिया पदालम नजरिया की सरिया की बतंगे को पाते।
11: और गाना किसी को डेडिकेट है?
12: आपको और मेरे भाई बहन और पूरे रेडियो रिंगिंग परिवार।
11: जी, तो चलिए आपके गाने को प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग पवन सिंह के आवाज में, सड़िया फिर से पहेली के पड़ जाइए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि संडे को भी प्ले नहीं किए थे मेरा गाना भोजपुरिया एक्सप्रेस में, आज कर दीजिए तो आपका दिन तो आज नहीं हुआ, मैं प्ले नहीं कर सकती। मैं बार बार आप सभी से बोल रही हूँ, जिस दिन आपका है प्लीज़ उसी दिन गाने प्ले करने को बोलिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मैं फगवाड़ा पंजाब से, मैं गाना सुनना था अल्ताफ राजा का इश्क और प्यार का मजा लीजिए, और ये गाना डेडिकेट है मेरी प्यारी वाइफ को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, हम अजय कुमार कुशवाहा दरौली सिवान से, हमके गाना सुने के बाद और अंकुश राज की आवाज़ में कोई भी सॉन्ग बजा दीजिएगा। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं अपना गाना तो बजाती हूँ फर्स्ट में, आप लोग सुनते ही हैं, और प्लीज़ गाने के बोल ज़रूर बताएं आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से, और गाने के बोल हैं दिल में तुम्हें बिठा के, और डेडिकेट है सोनी जी के लिए। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शंभू यादव हिमाचल प्रदेश। सोलन से तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय, मैं करण, फरमाइश है ओ सनम और प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और इसके साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है कि हम भी लाइन में हैं और लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, पवन सिंह का पवन सा ग्राम मरैया से तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं प्लीज़ मैडम हमारा भी गाना सुना दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी हम गाना का फरमाइश करेंगे, क्या आपके पास टाइम है, मिलेगा तो बजा दीजिएगा। तो आपके गाने की फरमाइश बुधवार को है, तो प्लीज़ आप अपना गाना बुधवार को ही सुन लीजिएगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो नमस्ते दीदी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, और मुझे गाना सुनना है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती क्योंकि आपका गाना मैंने शुक्रवार को ही प्ले किया था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो प्लीज़ अपने बारी का इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं भी एक गीत सुनना चाहता हूँ और आकाशवाणी रेडियो रिमझिम के माध्यम से हमराज मूवी का सॉन्ग सुनना है, और गाने के बोले सनम मेरे हमराज हुए और सोनू वर्मा बिलवा बिलाव जौनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पंकज जी की शुक्रिया भारती मैम मेरा गाना बजाने के लिए, और शुक्रिया आरजे सोनी मैम को, वैसे अभी सुन रही हैं तो बताइएगा कब आ रही हैं। और अपने हिस्से की मिठाई का वेट कर रहा हूँ। तो जी बिल्कुल, बहुत जल्द आएंगी और मिठाई लेके आएंगी। और इसी के साथ हमारे पास जो फरमाइश पहुँची हुई थी हमराज मूवी का गाना सुनना है सनम मेरे हमराज हुए, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सनम मेरे हमराज, और यहाँ पंकज जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग सनम मेरे हमराज। और इसी के साथ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जिंदगी बोली अभी तेरे बहुत इम्तिहान बाकी है, मैंने कहा तू जारी रख, मुझसे भी अभी जान बाकी है, मुझ में भी अभी जान बाकी है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं पाजी यूपी 54 से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है प्रवीण कुमार, जिला सिवान के रहने वाले हैं, और मुझे गाना सुनना है, गाना सुना दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि एक दो दिन पहले ही मैंने आपका गाना बजाया था, शायद शनिवार को बजाया था, तो मैं अभी गाना आपका प्ले नहीं कर सकती, फिर सैटरडे को बजाऊंगी। और इसी के साथ मेरे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि धनेश जी की तरफ से, और लिख रहे हैं मेरा गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद, और लिख रहे हैं कि आपको भीड़ में भी तन्हा रहना मुझको सिखा दिया, और तेरी मोहब्बत ने दुनिया को झूठा कहना सिखा दिया, किसी दर्द या खुशी का एहसास नहीं है अब तो सब कुछ ज़िंदगी ने चुपचाप सहना सिखा दिया। तो बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि, और अभी हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: क्या खबर है मैम
0: जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मेरा सूरज कुशवाहा बोल रहे हैं।
0: ओके, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आज सोमवार है, गाना सुनवा दीजिए भक्ति मोर जोगिया का मनाई करे।
0: भक्ति सॉन्ग तो मैं नहीं सुना सकती, आप हिंदी सॉन्ग कोई बता दीजिए या फिर भोजपुरी।
1: हिंदी सॉन्ग सुनवाइएगा
0: जी जी, क्योंकि भक्ति सॉन्ग इसमें नहीं बजता है, और भक्ति सॉन्ग
1: तो नहीं बजता है। तो सुनवा दीजिए कच्चे धागे का
0: गाने के बोल,
1: कोई भी सॉन्ग अच्छा है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है? तो चलिए आपका गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ। रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं विष्णु कुमार, वीके फास्ट फूड, मसीनाखा जिला से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, फिर चलते चलते मिलेंगे। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी, तो बाय बाय। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनना है, और करण कुमार नाम है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने के बोल हैं ओ सनम, और चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यह मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी हमारा भी हाजिर लगा देंगी तो बहुत अच्छा होगा। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पूरा बंडी पंजाब से, और लिख रहे हैं कि किशोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया बेटी अंशु के साथ जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं राधे राधे जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी राधे राधे। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि मैम आपके जुबा पर अपना नाम लिख दूँ, पाजी यूपी 54 से। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसके साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि मैम काफ़ी दिन बाद मैसेज किए थे और प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि भक्ति सॉन्ग तो मैं प्ले नहीं कर सकती। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुकिंदर कुमार कुशवाहा बंजारी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इनकी फरमाइश लिंक वॉइस के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
8: हेलो आरजे भारती मैम, गुड आफ्टरनून, मैं मुकिंदर कुमार कुशवाहा बंजारी से, मुझे सॉन्ग सुनना है, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, तो सुना दीजिए। ओके, और सोनी मैम आज जूरी बहुत अच्छा लगा, उनका भी सॉन्ग काफ़ी लाजवाब है। ओके मैम,

तो अभी हम लोग ने सुना मुकंदर जी का बहुत ही खूबसूरत सा गाने की फरमाइश पहुंची हुई, और गाने के बोल हैं आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852781 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मैं आप सभी से विदा लूंगी। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM और ये प्यारा सा सॉन्ग। और बाय बाय का मैसेज पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बहुत सारा मैसेज आया है, बाय बाय। तो आप सभी को बाय बाय और इन्जॉय कीजिए सारे गाने को।

0: हो जी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434, 6200042434।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: अरे काहे जिया दुखौला, अरे काहे जिया।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: 9.4
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: All right.

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-5-12-11-001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम।
3: सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861.
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैम।
7: नमस्कार,
8: भारती जी बोल रही है?
7: नहीं।
8: अच्छा, मुनर्मा मैम।
7: जी जी
8: मैम, गाना सुनना है। जी मैम, कैसी हैं आप?
7: जी मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
8: हम भी ठीक है
7: जी। तो अपना नाम बता दीजिए।
8: मैम मीता देवी नाम है।
7: अच्छा, कहाँ से बोल रही
8: है?
7: अच्छा, बताओ। सब बढ़िया, आप अपना बताइए, क्या कर रही हैं?
8: मैम दोपहरिये का खाना बना रही हूँ, आज तो फाइनल ना सोमवार है।
7: पूजा पाठ हो गया ना?
8: जी मैम हो गया।
7: चलिए तब तो फास्टिंग होंगी।
8: हाँ फास्टिंग है मैम। रिटर्न पांडे नहीं है, वो गाना है कि अब पटरी नहीं जानी, चांदनी सिंह गानी, रितेश पांडे के, वो शिव जी के गाना नहीं लिखा।
7: दो लाइन गा के बता देती तो।
8: मैम पहले वाला ये हम भूल गए हैं। अरे वो नहीं बोले कि अब पटरी नहीं, भांग नहीं पिसाई, पटरी नहीं जमी, चांदनी सिंह जुल, वही सुना लीजिए मैम।
7: अच्छा ठीक है, और सुनवाना भी है जी
8: आपको? भारती मैम को, समी मैम को, और खांडे वाला जो नंबर है उससे लगाते हैं ना तो कभी भी नहीं लगता है मैम। बड़ा वाला मोबाइल से लगेगा?
7: नहीं, छोटा वाला से भी लग सकता है, और बड़ा वाला दोनों से
8: मैम नहीं लगता है, लगाते हैं ना कभी कभी, माने हम लोग ज्यादा नहीं लगाते हैं, ए वाला में लगाते हैं। उतना करना नहीं आता, इंग्लिश नहीं पढ़े हैं लोग थोड़ा।
7: कॉल के माध्यम से? कोई बात नहीं, कॉल के माध्यम से आप जुड़ सकती हैं
8: मैम। जब भी लगाते हैं ना नंबर तो याद है, 72-77-16-65 कैंडी मगर नौ, मैंने और दिन करते थे ट्राई मगर नहीं लगता है। लगता है मैम कि मेरा मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है।
9: नहीं नहीं, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होगा।
8: अच्छा।
9: आप जब कॉल कर रही हैं तो कोई या फिर यहाँ पे दिक्कत होगा या फिर
8: बोल चुका बोल रहा था वही बता रहा बताता था हमेशा बताता है।
9: हाँ हाँ, नेटवर्क इश्यू की वजह से।
8: हाँ तो वही बताता है। अच्छा कोई बात नहीं, आपसे बात हो जाता है वही बात वही बात है। ठीक है मैम,
9: गाना प्ले करते हैं। नमस्कार, गाना प्ले करते हैं।
8: ठीक है मैम,
9: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: थैंक यू मैम,
9: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते, मैं गोपाल हो गया बोल रहा हूँ, राम का वास्ता जिला गुना से।
1: नमस्ते
0: जी, भारती जी बोल रहे हैं ना आप?
1: नहीं,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: उस दिन बात हुई थी ना आप?
1: जी जी,
0: शुक्रवार को लगाया था मैंने।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, अभी तो हमारे घर पर ही है।
1: क्या
0: अभी तो घर पर है हम तो।
1: अच्छा
0: जी
1: जी, तो फरमाइश बता दीजिए।
0: फरमाइश सुनवा दीजिए, वो रंग सुगंधा करना है।
1: कौन सा?
0: वो वाला है ना, तुमने देखे मेरी यहाँ इसमें क्या मेरी कथा है, कुमार सानू हल्का गाया है। आवाज है
1: जी जी,
0: और क्या?
1: और गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है ना ये गाना हमारे दोस्तों के लिए।
1: ओके
0: जी।
1: अच्छा, आप रेडियो रिमझिम को कितना समय से सुन रहे हैं?
0: रेडियो रिमझिम सुन रहा है, होगा 5-6 महीने हो गए, होगा 5-6 महीने हो गए। अभी जब उस बात हुई थी उनसे, अरे सोनी जी मैडम थी, उससे बात हुई थी पहले शुरू में।
1: अच्छा अच्छा, तो रेडियो रिमझिम के बारे में आपको कैसे पता चला?
0: जी हमने चला कर देखा इसलिए।
1: अच्छा,
0: लोग सुनते हैं रिमझिम के कार्यक्रम उनको।
1: कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम?
0: रेडियो रिमझिम कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं, कार्यक्रम आते हैं जी, और विविध भारती से भी जुड़ा हुआ है हम तो, सभी कार्यक्रम सुनते हैं आपके।
1: अच्छा, रेडियो रिमझिम के मतलब कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है आपको?
0: सबसे कार्यक्रम तो यही अच्छा लगता है, कोरिंग प्रोग्राम कम मिल जाता है तो सुनते हैं जी, और समाचार वगैरह सभी सुनते हैं हम तो, टाइम मिल जाता है तो।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो ये रेडियो रिमझिम को आप कैसे सुनते हैं?
0: मोबाइल ऐप पे।
1: मोबाइल ऐप के जरिए?
0: हाँ।
1: अच्छा चलिए बढ़िया। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम बारिश हो रही है अभी तो।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: बोल रहे हैं जिला गुना ककवासा गांव।
1: अच्छा, और अपना नाम क्या बताया है?
0: गोपाल ओझा।
1: अच्छा जी, तो आपका गाना प्ले करें? जी, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है, हमारे दोस्त है सुनील साहब, ज्योति साहब जी के डाटा है उन्हीं के लिए।
1: अच्छा ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी करिए
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 एफएम में।
0: क्या हाल है
1: जी? बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया है। नाश्ता हो गया?
1: हो गया। और आपका?
0: हाँ हो गया है।
1: हाँ क्या हो रहा है?
0: बस ऐसे ही बैठे हैं। सुनिए ना, जब हम व्हाट्सएप पे मतलब वो आस पास देते है तो बजता नहीं है?
1: बजता है, 12 बजे चालू होता है वो तो।
0: हाँ
1: जी, तो बजता होगा।
0: नहीं, मेरा मैसेज नहीं किया जाता है।
1: क्या ना, बहुत सारे मैसेज आए रहते हैं तो कहीं उसी को पहले देखूंगी,
0: क्योंकि हम 2-3 साफ से भेज रहे हैं और मेरे मैसेज ही नहीं चेक हो रहे हैं। उसके बाद भी भेजते हैं कि मेरा कब बजेगा तो भी नहीं चेक किया जाता है। और कल भी भेजे थे, कल भी नहीं चेक हुआ है।
1: हम उनसे बोलते हैं कि अपना नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: शाजिया नवादा से।
1: तो मौसम कैसा है उधर का?
0: हाँ हरियाली है, हरी भाई। उधर का मौसम कैसा है?
1: इधर का भी वही सुहाना मौसम हुआ है,
0: बहुत सुहाना हुआ है।
1: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: आज की फरमाइश अभी सोच रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: ये पिछा कमर में लग ही गया तो सोचने का भी मौका नहीं मिला।
1: कोई ना, पर हम तो सोच के बता सकते हैं।
0: वो गाना है ना, हम दम की कसम हम दम न मिला, वही वाला बता दीजिए।
1: दो लाइन गा के सुना सकती हैं?
0: ये तो हम सुन रहे, मेरी भाभी बताइए तो हम उसका लिंक बोल।
1: कोई बात नहीं है।
0: और ये सॉन्ग सबसे पहले आपको सुनाना चाहती हूँ और सभी लिस्नर को, मैं पुराने सभी मतलब जो भी जुड़े हैं और अपने घर में सबको सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके, तो सादिया जी आप रेडियो रिंगम को कैसे सुनती हैं?
0: हम मोबाइल से सुनते हैं, मोबाइल एक छोटा वाला खदाया है उसी में सुनते थे। पहले रेडियो था, अब वो रेडियो खुद भी आते मोबाइल से सुनते हैं।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो रेडियो रिंगम का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
0: हमको बुहाई सर बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए बढ़िया। तब आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है ना?
0: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप ना बताइए।
1: जी यहाँ पे भी सब कोई ठीक है। ठीक है साजिया जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन गढ़ जिला गुना मस्त देखते।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: बस रेडियो सुन रहे हैं यहाँ और।
1: बढ़िया, तो क्या हो रहा है?
0: बस बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ?
1: आपके मौसम बनाया हुआ है।
0: पानी गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। और क्या
1: जी, अब तो सावन चालू है तो बारिश तो हो गई है।
0: जी जी जी, आज चलो सोमवार से बारिश हो रही है, भोलेनाथ स्नान कर रहे हैं। जी
1: तो आज का फरमाइश बता दीजिए।
0: जी आज की फरमाइश है मैडम जी, पिक्चर का नाम है अंधा कानून और गाने के बोले ये टाइटल सॉन्ग ये अंधा कानून है। और सबसे पहले ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा, और गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल जी है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ जी है। हेलो
1: जी जी, वैसे क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ नहीं, खाना खा के फ्री हुए अभी। मैंने सोचा कि कॉल लगाया जाए, दो दिन ट्राई कर रहा था, अब जाके लगाया।
1: अब लग गया ना?
0: जी
1: बढ़िया।
0: तो ये गाना कब तक बजेगा मैडम जी मेरा?
1: ये गाना आपका कल बजेगा।
0: कल बजेगा
1: जी,
0: ठीक है, धन्यवाद
1: जी। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन बजते हैं तो कहते हैं।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: थैंक यू, कैसी हैं आप?
13: जी बढ़िया है, आप कैसी हैं?
14: सब बढ़िया। मैम मुझे गाना सुनना है।
13: बता दीजिए।
14: ओल्ड मूवी है, इज्जत मूवी है, और उस मूवी का गाना है ये दिल तुम दिन कहीं लगा नहीं, तो वो गाना मुझे सुनना है, और वो गाना मतलब पूरा बजाइएगा।
13: जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
14: सबसे पहले आपको और सारे लिसनर्स को।
13: वैसे आपका नाम?
14: खुशी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, गोपालगंज।
13: अच्छा खुशी जी, मतलब आप गोपालगंज में कहाँ से बोल रही हैं?
14: गोपालगंज एक देर बाद
13: जी। तो क्या कर रही हैं खुशी जी?
14: अभी तो आपके पास कॉल कर रही थी, मुझे तो
13: अब लग गया ना आपका कॉल।
14: हाँ वो अब 10 मिनट बाकी रह गए, हमको लगा कि आज लगेगा ही नहीं कॉल।
13: नहीं देखिए लग गया ना।
14: हाँ
13: जी। तो आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है?
14: हाँ सब सब सब अच्छा।
13: चलिए अच्छी की बात है। तो खुशी जी आप रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनती हैं?
14: हमें ऐसे तो स्टडी टाइम में तो थोड़ा कम टाइम मिलता है, बट ऐसे जब टाइम मिलता है तो सुनती हूँ। और ये नंबर वैसा याद रहता है कि जब भी कुछ छुट्टी हो या टाइम मिले तो कॉल कर दीजिए।
13: मतलब रेडियो रिंगटोन को मतलब कैसे सुनती है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मतलब ऐप के जरिए सुनती हैं या फिर?
14: वो तो मैं हमेशा सुनती हूँ, मतलब जैसे मैं सेल फोन नहीं यूज करती हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी स्टडीज के टाइम मतलब नहीं चलाता है फोन इसलिए। ओके मैम मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा।
13: जी जी। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।
14: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार
1: मैम। नमस्कार।
0: सुधीर कोल बोल रहा हूँ, जिला देवघर झारखंड से। मैं
1: जी, अपना नाम क्या बताएं?
0: सुधीर कोल बोल रहा हूँ, जिला देवघर झारखंड।
1: ओके, क्या हाल चाल है सुधीर जी?
0: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
0: आप भर्ती में बोल रहे हैं ना या मनोरमा में?
1: हेलो जी,
0: आप भर्ती में बोल रहे हैं, मनोरमा में बोल रहे हैं?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: जी जी जी, आपसे दूसरी बार बात हो रही है।
1: जी, अब क्या हो रहा है?
0: अभी क्या हो रहा है, ट्राई करते करते अब लगी मैम, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 11 बजे कोशिश करते हैं लगाने का। आज सुना दीजिए मैम, सावन बोलोम का गीत है, 36 बास और सावित्री कर्मकार का कथा बोलोम गीत है। बोलोम है सावन के महीने में, तिथि को बोलोम है। आज बोलोम
1: जी, आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
0: जी, आए दिलोगे धन सावन के महीना हूँ, तरह गीत के बोल।
1: ओके, और डेडिकेट भी है?
0: जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रिंगे को पूरी टीम को और जितने भी लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ। और कुछ फ्रेंड को रहे, मदन को लें, शंकर साहब है, भोलानाथ को लें, कृष्ण को लें, राजकुमारी है, युगल को लें, कमली को लें, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैम।
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 FM में।
5: बहुत स्वागत
4: जी, बढ़िया है। आप ना बताइए, आप कैसे हैं?
5: मैं भी ठीक है। और उधर मौसम कैसे
4: है? मौसम तो बारिश हो रही है जी। अपना नाम बता दीजिए।
5: रहमत अंसारी
4: जी, कहाँ से बोल
5: रहे हैं? अभी तो मैं कश्मीर में हूँ।
4: अच्छा जी,
5: हमको एक गाना सुनना था।
4: बता दीजिए।
5: मैंने जब बोला फूल तुमने भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ये गाना
4: जी। तो अपना गाना प्ले करते हैं जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
0: जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है?
0: हमारा तो ठीक है, अपना बताइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया है।
0: पहचान लिए?
1: नहीं, आवाज से तो पहचाना हुआ लग रहा है, लेकिन नाम बता दीजिए।
0: अच्छा, हमारे फरीदा पड़ेगा ना, फरीदा खातून
1: जी।
0: पर हाँ, पौधा जुड़े है ना। हाँ, तो जब भी कॉल करते हैं तो लगता नहीं है, कब उसी से पड़ता है तो कब बीजी बीजी बीजी बीजी जाता है, इसलिए हम नहीं जुड़ पाते। आज सुनेगा, सुने का आपका बहुत जवाब चल रहा है इस वक्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, हमको हम सब सुन रहे हैं।
1: वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: हम सिवान जिला से। सिवान जिला से रेडियो, रेडियो से नहीं चलता है ना? उस बगल से।
1: अच्छा जी,
0: जी हाँ। तो बोलते हैं कि वॉइस मैसेज कब से चलता है? 12 बजे से लेकर कब तक चलता है?
1: 4 बजे तक।
0: अच्छा, तो नंबर एक बार बोल दीजिएगा।
1: वो नंबर तो मुझे याद नहीं है, उसमें बताया जाता है, आप एक बार सुन लीजिएगा।
0: जी जी, लाइटे तो बोलिएगा, इस तरह से मत बोलिए, लाइटे पर बोलिएगा ना, तो हम सब ले लेंगे। गाना बजा सकते हैं?
1: बिल्कुल।
0: तो अपना परिचय नहीं दिया, आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं
1: जी, मेरा नाम मनोरमा।
0: कितना लाचवाब नाम है, कितना मधुर सा है, बोली कितना बन जाएगा।
1: अच्छा जी, बिल्कुल आपके जैसा है ना।
0: नहीं, हमारे तो बहुत अच्छे है ना, मोटा है आप, इतना
1: नहीं, नहीं, है, आप बहुत नहीं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, इसी ने तो आपको आपको पहचान रहा है, लेकिन नाम बताने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो इसीलिए पूछे आपका नाम।
0: जी जी जी जी, नहीं नहीं, तो पहचान लीजिएगा धीरे धीरे, जब आपको तो गाना हमको सुना दीजिए।
1: बता दीजिए
0: गाना के बोल है, याद है नहीं, दूसरा गाना सुना दे हम।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ये गाना सुना दीजिए हमको।

0: समझिए
1: जी, आप तो बहुत अच्छा गा लेती हैं।
0: नहीं आप जैसे आप लोग थोड़ी हम सब गाते हैं,
1: ऐसा बात थोड़ी, आप बहुत अच्छा गा ले रही हैं।
0: अच्छा जी, थैंक यू।
1: तो यही गाना सुनिएगा।
0: हाँ यही गाना सुना दीजिए, स्पेशली आपके लिए है, आपसे पहली बार बात हो रहा है ना।
1: जी जी,
0: आपके के लिए ये गाना है।
1: ओके, और भी लोगों को डेडिकेट है।
0: जी जी, बात नाम भा दे।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो सबसे पहले आप हैं
1: जी,
0: उसके बाद सादत अंसारी जी है, रवि जी है, उर्मिला जी है, और क्या बोलते रामदेव जी है, संतोष जी है, अरमानो लाख जी है, अजित नारी जी, में दोस्त हमारे सुन रहे हैं लोग, पागल से नहीं रही है, उनका उसके लिए है स्पेशली गाना याद करिए यही।
1: ओके जी,
0: ओके बाय,
1: गाना प्ले करते हैं आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगम 90.4 FM।

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आवाज बहुत कम आ रहा है।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, आप बताइए। इशाद मास्टर बोल रहे हैं ग्राम तनाव से।
1: ओके, क्या हाल चाल है इशाद जी?
0: ठीक है, अपना सुनाइए। मनोरमा जी।
1: जी,
0: और सब?
1: और सब बढ़िया है। आप अपना बताइए, क्या हो रहा है?
0: अरे हम लोग का सिलाई हो रहा है, खेत रुका रहा था, रुका गया। हम लगे हैं काम में, कार्यक्रम चल रहा था सुबह से। सब रेडियो रिंकी परिवार ठीक है आप लोग?
1: कोई बढ़िया जी, तो फरमाइश बता दीजिए।
0: फरमाइश तो वह लगा रहे थे 11-5 में, तो बहुत बिजी बचा, तो छोड़ दिए कि लास्ट में लगाएंगे, तो दो बार लगाए बस लग गया। उसे निगाहें मूवी का गाना सुनवा दीजिएगा
1: जी।
0: निगाहें मूवी, सावन के झूलों में, सावन के झूलों में मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। और सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और जितने रेडियो रिंकी में सभी लोग सुनेंगे, हम लोग भी सुनेंगे। जनाव से रोशन टेलर में काम करते हैं हम लोग
1: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं
0: जी?
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकी 90.4 FM।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल है आपका? सब
1: ठीक है मैम।
0: तो क्या हो रहा है? हाँ
1: आइए बर्फ हमें हम मैम हमको भूल गई।
0: जी, आप ऐसे बोल सकते हैं?
1: बहुत अच्छी बात फोन किए हैं। अच्छी बात।
0: अच्छा जी।
1: देख लीजिए।
0: वो क्या ना कि मतलब एक कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता है,
1: जी
0: इसीलिए।
1: मौसम कैसा है इधर दोपहर?
0: मौसम तो सुहाना है।
1: बहुत सुहाना है। हम सब गाना सुना दीजिए।
0: जी, गाना सुनाएंगे। आप अपना नाम बता दीजिए जी एक बार और।
1: अफाक आलम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बिहार बरारी हरते।
0: बिहार में कहाँ से?
1: बरारी हरते।
0: अच्छा,
1: अपना दुकान है।
0: किस चीज का दुकान है?
1: टेलर, बॉम्बे टॉप टेलर।
0: अच्छा,
1: जान रही हूँ। हम जानी मैम हमको भूल गई है।
0: नहीं
1: तो गाना सुना दीजिए मैम।
0: जी बता दीजिए।
1: आप भी 1 घंटा पहले बज रहा था, उसी में नियत को भी बता दी। फादर के मदर के बारे में।
0: कौन सा?
1: फादर मदर मैंने माता पिता के।
0: अच्छा,
1: याद आ गया?
0: 2 लाइन गा के सुना सकते हैं?
1: नहीं मैम सुनना नहीं। आप सुनने नहीं उठा रही, वो कर गया।
0: चल कोई बात नहीं, आप गाना थोड़ा भी बता दीजिएगा तो हम बजा सकते हैं।
1: जी मैम फादर मदर। कब तक?
0: ये गाना आपका कल बजेगा?
1: 7 बजे।
0: जी, 5 से 7 के बीच।
1: मैम तो हम ये खाली चढ़ाई की जो 5 से 7 बजे तक तो मेरा नाम सुनवाई है।
0: वो क्या है ना कि बहुत सारे कॉल आ जाते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है।
1: जी आज नहीं हो पाए।
0: कोशिश रहेगा कि आज ही हो जाए। जी,
1: ठीक है मैम।
0: जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: मैम अभी पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई करते हैं?
1: 8वां क्लास के, अभी 8वां में।
0: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
1: अच्छी चल रही है मैम। आज नहीं गए।
0: क्यों?
1: मैम इसी तरह आज गाना सुनने का मन।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया।
1: ठीक है मैम।
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकू 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमरजैट पर।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन।

0: से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: पिक इट अप, पिक इट अप,
2: हेलो,
1: नाउ पिक योर फोन अप,
2: हेलो,
1: पिक इट अप, पिक इट अप,
2: हेलो,
1: नाउ पिक योर फोन अप।
3: जब फोन दे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
6: मनोरंजन ना
5: जी, जी
6: क्या बात है, ये तो पहला नंबर तो सावन के पहला सोमवार के हार्दिक बधाई आपको, आपको रेडिंग को
5: जी जी आपको।
6: और ये आज ये तीस बार कॉल किया लगा दी के बाद भी नहीं उठा, दीदी के बाद में तीसरी कॉल हो गई, आज परेशानी हो गई।
5: अच्छा जी,
6: आज कितना बिजी चल रहा है,
5: क्या करिएगा, कॉल करता है तब तक दूसरा
6: पानी पीने का फुर्सत नहीं मिलता
5: है।
6: इतने कॉल दस बारह के बाद उठी होगी, इतने कॉल आ चुकी है,
5: अभी तो 7-8 कॉल हो चुका है।
6: चलिए और तो सुनाइए
5: जी, सब बढ़िया। आप अपना नाम बता दीजिए।
6: मैं तुम्हारे मित्र दिल्ली से।
5: तो क्या हाल चाल है आपका?
6: ठीक है, थोड़ी पहचान लीजिए यार, पुराने हो गए।
5: पहचान तो रहा है लेकिन नाम नहीं याद मुझे।
6: और तो पहचान होना चाहिए ना, आप बात करके बहुत अच्छा लगता है, पिछले बार भी आप आइए बहुत अच्छा बात करने करने की शैली आपकी बहुत अच्छा है। तो आप उसे है ना, क्या करते हैं, कितने दिन से घूमते हैं, ये तो पूछने की शैली हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूछनी चाहिए क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग सुना हूँ ना, तो अली आपका रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे बहुत चीजें से पूछे हैं, क्या करते हैं, कितने दिनों से सुनते हैं, कैसा लगता है। ये अली बार चिट्ठी में था ये तो बार में की बहुत बढ़िया, और तबियत आने सही चल रहा है
5: जी जी, सब बढ़िया।
6: और सोनी जी से बात होता है, सोनी जी से बात होता है कि नहीं?
5: बात तो होता है, सोनी जी तो अभी नहीं आएंगे क्योंकि छुट्टी पे हैं, अभी और
6: कुछ वो तो मुझे पता है छुट्टी पे है, लेकिन आने का कोई प्रोग्राम अभी नहीं है।
5: नहीं अभी तो कोई नहीं है,
6: मुझे
5: टाइम लगेगा,
6: लगना भी चाहिए अपनी जिंदगी है। तो आज कुछ मायूस आपकी आवाज लग रहा है क्यों?
5: नहीं कुछ नहीं,
6: तो धीरे बोल रहा है।
5: अच्छा आवाज स्लो आवाज आ रहा है,
6: स्लो भी आ रहा है, ऐसे मायूस मायूस एकदम बोल रहा है।
5: नहीं जी, तो फरमाइश बता दीजिए आज का।
6: मेरा फरमाइश कलमना पटवारी का है, गाना ही बोल है बोलबम का, हमसे धनिया ना पिसाई है गाने के पर, ये गाना आपको और भारती मैम को, धोनी मैम को, दोनों सर को, जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सबको सुनाना चाहता हूँ, तो आज का गा दीजिएगा, बढ़िया रहेगा
5: जी जी जरूर।
6: चलिए
5: तो गाना प्ले करते हैं आपका,
6: इंतजार रहेगा
5: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार
1: से बोला था आसाम से महेंद्र राउत।
0: जी नाम बता दिया अपन
1: महेंद्र राउत आसाम से।
0: अच्छा
1: गाना है वो सुना कर
0: मैंने
1: देश प्रेमी भोजपुरी गाना है वो।
0: अच्छा
1: देश प्रेमी भोजपुरी को गाना सुने कर बहुत दिन से लगाओ था 140-142 बार लगाओ नहीं तो अभी
0: जी गाना बहुत सारा कॉल आवत रहे
1: तो बहुत हम करे के पड़ा आसाम में तो बहुत बाढ़ भयल बा उन्हें कोई सन
0: बा खबर इन्हें भी बारिश होता
1: है आसाम के तो बाढ़ के खबर मिलने हुई सब के
0: लेकिन गोपाल के एरिया में भी बाढ़ नहीं की आई उन्हें देहात के एरिया में आई
1: बा तो बाढ़ आसाम में जो रात शिव सागर चराए देव कहल जाला एकदम पानी का गोटे गाँव चल गए बहुत बल माना 100 आदमी गए पानी में दहा के आओ सब ठीक बात सब
0: चलिए बढ़िया
1: चलिए तब गाना सुना दी हमारे सुने वाला बालो हम दानी चकी कला प्रार्थना सुनील अनिल श्रोतागण सब सुनाएं गाना
0: गाना रहा और काल बजी
1: काल हो जाए
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-11। जी हाँ, 80-29-94-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, नमस्कार मैडम।
13: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: जी मैडम, कमलेश बोल रहे हैं आरासुआ से।
13: जी, क्या हाल चाल है कमलेश जी?
12: आप लोग का मैडम?
13: जी जी, आपका आवाज कट के आ रहा है।
12: अरे आप लोग ठीक है ना? सब कुछ सही है ना?
13: जी जी, यहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया है।
12: मौसम तो बहुत ठंडा हुआ है, बारिश हो रहा है क्या उधर?
13: बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश के जैसा मौसम बनाया हुआ है।
12: ठंडा मौसम है ना। गाना सुनना चाहते हैं मैडम
13: जी? बता दीजिए।
12: हम तो गाना सुनना चाहते हैं, सब भूखे हुनर में हरारे मिले हुनर, गाना नहीं है प्रमोद करेंगे तो गाना सुनना है।
13: ओके, तो ये गाना किसी को सुनाना भी है?
12: हमारा मुकेश मिश्री है, उनको सुनाना चाहते हैं। जितना लोग सुन रहे हैं रेडियो रिंगिंग करके आने वाले हैं, सब किसी को सुनाना चाहते हैं। और आप
13: भी? ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
12: ऐसे हम काम करते हैं, हेल्पर ही हैं, घर बना रहे हैं।
13: अच्छा,
12: घर बना रहे हैं, जुड़ाई कर रहे हैं।
13: अच्छा, तो अभी कहाँ
12: है? यहीं पे। काम कर रहे हैं, काम पे ही।
13: अच्छा,
12: मौसम मौसम होना चाहिए काम का। सोनी मैडम कहीं गई है क्या मैडम?
13: छुट्टी पे है।
12: कितना दिन के लिए गई?
13: अब आएंगे।
12: चलिए ठीक है मैडम, बजेगा ना शाम के गाना?
13: जी जी बजेगा।
12: ठीक है मैडम, इंतजार करेंगे।
13: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
12: जी मैडम, नमस्कार।
13: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
0: इसके दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार क्षेत्र संग्राम सिंह प्रदीप चंपारण बिहार से संजय कुमार का।
1: ओके, कैसे हैं संजय जी?
0: एकदम बिल्कुल बढ़िया। आपका सुनिए, आप कैसे हैं? आप इंजिन सपोर्ट कैसे हैं
1: जी? सब कोई बढ़िया है।
0: इसके दिल से धन्यवाद है। आज तक अभी तुम्हारी है तो कही ना कि बहुत धन्यवाद होंगे
1: जी। जी आपको भी,
0: आपको भी रेडियो परिवार सभी परिवार का। और सब सुनाइए, उधर का हाल खबर सुनाइए
1: जी। सब बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। बारिश हुआ है कि नहीं आजकल?
1: बारिश तो हो रहा है।
0: अभी नहीं हो रहा है। कल हम लोग तो कल बरसा है, अभी नहीं बरसा है।
1: इधर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है बारिश भी।
0: जी जी जी, मौसम सुहाना है।
1: मौसम सुहाना है। तो क्या हो रहा है
0: अभी? तो कोई ना, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है हमारे। अभी तो रूम पे बैठे हैं, आपसे बता रहे हैं। खेती बाड़ी हो रहा है तो अभी कभी ना काम लगा है, तो कुछ लोग गए हैं काम करने के लिए। चल रहा है जी जी। आज गाना सुना दीजिए। सावनी गाना तो बात करता है।
1: कौन सा?
0: सावनी गीत बात करता है। सावनी हिंदी गाना बात करता है
1: ना?
0: तो गाना एक बजा दिए। जय शंभु कहो, जय शंभु कहो, इस तरह से गाना है।
1: सुनाएंगे। और ये आप गाना किस किस सुनवाना चाहते हैं?
0: क्रिकेट में सबसे पहले आपको आपके रेडियो परिवार संपूर्ण परिवार को हो गया खान से मोहम्मद सारे जी जान लगता था कुछ आज की बगान से अजुकवाडम से नगर पानी दीपक दास जयगान ठाकरे जिम्मेदार दर्जन आलर से हमारे नाम से जाना चाहते थे दोस्तों। विशेष करके रेडियो दिल्ली से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार का राजेंद्र भाभी पंचवाल गौतम उत्तर प्रदेश का है। विशेष करके उनको सुना हुई अभी आपके विदा लेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू।
1: सुनते रहिए सबके साथ

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: पिक इट अप, पिक इट अप,
6: हेलो,
5: नाउ पिक योर फोन अप,
6: हेलो,
5: पिक इट अप, पिक इट अप,
6: हेलो,
5: नाउ पिक योर फोन अप,
6: हेलो।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैडम जी, कौन बोल रहे हैं? भारती जी बोल रही है, सोनी जी बोल रही है?
7: मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
8: अच्छा, आज मेरी पहली बार बात हो रही है मैडम जी आज।
7: जी,
8: खाना हो गया आपका?
7: और आपका?
8: मेरा भी हो गया।
7: चलिए बढ़िया, नाम बता दीजिए अपना।
8: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगर, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
7: ओके, तब क्या हाल चाल है आपका?
8: बस रेडियो सुन रहे हैं आपका, और क्या है।
7: चलिए बढ़िया, तो बता दीजिए फरमाइश।
8: फरमाइश है, पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोले समझी तेरी गोरी चने के खेत में।
7: एक बार फिर से बता दीजिए।
8: पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोले समझी तेरी गोरी चने के खेत में।
7: ठीक है, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
8: जी, ये सोनी जी मैम को है, भारती मैम को है, आपको है और अपने गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है और जितेंद्र धाकड़ जी है।
7: तो
8: और जितने सभी रेडियो और रिमझिम सुन रहे हैं उनको सबके लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
7: ओके
8: जी
7: जी, तो आपका गाना प्ले करें।
8: कब बजेगा ये
7: गाना आपका? कल बजेगा।
8: ठीक है
7: जी, तो गाना प्ले करते हैं।
8: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
7: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मधु सर यहाँ से बोल रहे हैं, राजकुमार।
1: अच्छा,
0: सॉन्ग सुनना है
1: जी, बता दीजिए।
0: बोलबम के खेसारी लाल के आवाज में कोई भी अच्छा सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है किसी को?
0: रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: तब क्या हो रहा है, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, एग्जाम तो नहीं गए, छुट्टी में है।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाड़ी उड़ी चलाते हैं खेत पर।
1: और रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं?
0: यही मोबाइल में।
1: इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं, रेडियो हेडफोन के माध्यम।
1: अच्छा, ये बढ़िया। और ये रेडियो रिमझिम कितने समय से सुन रहे हैं आप?
0: हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम?
0: अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कैलाश से धुआं धुआं है।
3: अरे का हो, काहे मन मार के बैठल बड़ू, कोनो प्रॉब्लम बा?
4: ए जी, एगो बात कही।
3: कहा?
4: बड़ा मन करता देवघर जाए के जी।
3: तब
4: देखी न बाबा, कई दिन से सपनों में आओ तनी, अपना नगरी में बुलावा तनी।
3: सपना तो हमहू देखते, लेकिन क्या करी, पैसे नहीं खेरे।
5: ए साल रहेगा, पर साल चल जाये, ठीक बा? गाड़ियों खाली नहीं खिसा
4: तो हम अब की बार ना मानो, हम तो जेबे करोगे।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: Your phone.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493456 या 9707 0675।

विक्रम के उत्तर से प्रसन्न बैताल अपनी शर्त के अनुसार फिर उड़ा और अपनी जगह पर जाकर उसी डाल पर लटक गया। विक्रम फिर वहां पहुंचा, उसने बैताल को अपने वश में फिर किया और कंधे पर लाद कर चल पड़ा। सदा की तरह इस बार भी राह काटने के लिए बैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी आरंभ की। अब की बार कहानी थी पुण्यपुर नामक नगर के राजा की, जिसका नाम था वल्लभ। राजा वीर था, प्रतापी था, पर उसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण था। वो बात बात पर राजकोष का धन लुटाता था।

इतना बढ़िया सितार वादन तो हमने कभी नहीं सुना। मंत्री जी, इनके वाद्य को स्वर्ण मुद्राओं से भर दो, हमारी तरफ से पुरस्कार।

0: वाह वाह कलाकार महोदय, आप तो सचमुच बहुत बड़े कलाकार हैं।
1: धन्यवाद महाराज।
0: ऐसी प्रतिभा, इतना परिश्रम, वाह! क्या ये सब चित्र आपने हमारे लिए बनाए हैं?
1: हाँ महाराज, मुझे आशा है कि इससे राजमहल की शोभा बढ़ेगी।
2: राजमहल के लिए इतने सारे चित्र तो अधिक होंगे महाराज, एक या दो चित्र ही बहुत होंगे।
0: मंत्री जी, कला का आदर करना आप नहीं जानते। यदि इन चित्रों के लिए यह महल छोटा हुआ तो हम एक नया महल बनाएंगे, लेकिन हम इन चित्रों को वापस नहीं लौटाएंगे।
1: महाराज की जय हो।
2: मेरा विचार तो यह है महाराज।
0: सुनिए, आप एक तराजू लाइए और उस तराजू में इन कलाकार के तोल के बराबर इन्हें सोने की मुद्राएं हम भेंट करेंगे।

0: बस करो, वजन तो पूरा हो चुका है।
1: एक थैली स्वर्ण मुद्रा की और डालो।
0: इस तरह से तो सारा राजकोष लूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा प्रजा के काम के लिए।
1: ये सारी स्वर्ण मुद्राएं आपकी हैं चित्रकार जी, आप इन्हें ले जा सकते हैं।
2: मल्ल महाराज की
3: जय।
4: मल्ल महाराज की
3: जय।
4: मल्ल महाराज की
3: जय।
0: कलाकारों का आदर करना तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि आप इसी तरह से पुरस्कार बांटते रहे तो सारा राजकोष खाली हो जाएगा। कल आपने 10 हाथी खरीदे, हमारे पास तो पहले से ही कई हाथी है जिनका प्रतिदिन का खर्चा ही।
5: वाह, ये स्थान तो बहुत सुंदर है, कितनी तेज हवा चलती है यहाँ पे, क्यों सेनापति जी?
6: जी महाराज,
5: हम यहाँ पे एक महल का निर्माण करेंगे, सुंदर विशाल महल।
0: एक मंत्री होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि यदि आप कोई गलत निर्णय ले रहे तो मैं आपको रोकू। नए महल की कोई आवश्यकता नहीं है।
5: बस बस, हम समझ गए, आप यही कहेंगे कि राजकोष लूट जाएगा। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हम राजा होते हुए भी दास है, नौकर है, हमें अपनी इच्छा भी पूर्ण करने का अधिकार नहीं।
0: नहीं महाराज, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत कहिए।
7: आज फिर आपको नींद नहीं आ रही, लगता है आज फिर आपको कोई चिंता है। ऐसे तो आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे।
0: क्या करूं समझ में नहीं आता।
7: कुछ मत सोचिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए।
0: नहीं, यदि मेरे मंत्री होते राज्य की आर्थिक हानि हुई तो ये अपराध मेरा है। या तो मुझे स्थिति को ठीक करना चाहिए या तो चिपक छोड़ना चाहिए।
7: मेरी एक बात मानिएगा आप।
0: कहो।
7: क्यों ना राजकाज से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले ले, कहीं तीर्थ स्थान पर चलते हैं।
0: ठीक है, हम चलेंगे।

0: सुनिए, सूरज डूब चुका है। रात अधिक होने से पहले हमें इस सुनसान जगह से तीर्थ के लिए जल्दी निकल जाना चाहिए।
1: हाँ हाँ ठीक है, पर पहले ये भोजन तो करेंगे फिर निकलेंगे।
0: जैसे आपकी इच्छा।
1: बैठो।

0: है क्या? पहले तो ये द्वीप यहाँ नहीं था,
1: अभी पानी से उभरा है।
0: मगर ये लड़की कौन है?
1: पता नहीं, सब कुछ रहस्यमय है। मुझे तुरंत राजा को सूचना देना चाहिए।
0: तीर्थों से लौटने के बाद दे देना।
1: नहीं, एक मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि ऐसे कोई विशिष्ट घटना देखो तो राजा को तुरंत सूचित करो। पता नहीं राज पर कोई नई विपदा ना आ रही हो।
2: वाह, आश्चर्य है, ऐसी विचित्र बात तो हमने आज दिन तक सुनी ही नहीं। हम आज इस रहस्य को अपनी आंखों से देखेंगे।
1: कुछ सैनिकों को साथ ले जाइए।
2: मंत्री जी, बांसुरी बजाती एक रहस्यमयी कन्या को देखने के लिए सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारा।

0: वीआई जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी पीडीएफ प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
6: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 99393-65923।

0: आप है वो राक्षस जो मुझे
1: राक्षस मैं तुम्हें राक्षस दिखाई देता हूँ
0: फिर आप कौन है
1: मैं हूँ वल्लभ इस प्रदेश का राजा
0: आप यहाँ क्यों आए हैं
1: तुमसे मिलने बहुत मीठी बांसुरी बजाती हो तुम
0: चले जाइए मेरे मानी आप यहाँ से चले जाइए
1: क्यों जाऊँ यहाँ से

0: यहाँ एक राक्षस आने वाला है आज ही की रात। यदि आप दिख गए तो वो आपको मार डालेगा।
1: मुझसे साफ साफ बात करो, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई और ये राक्षस कौन है?
0: मैं गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता गंधर्व के राजा हैं। वे मेरे जहाँ विवाह करना चाहते थे, वो व्यक्ति मुझे स्वीकार न था। क्रोधित होकर मेरे पिता ने मुझे इस जादुई द्वीप पर राक्षस के आहार बनाने के लिए छोड़ दिया।
1: तो ये जादुई द्वीप है?
0: हाँ, उस राक्षस ने पहले हम गंधर्वों पर बहुत अत्याचार की। मेरे पिता ने उसे हार मानकर ये समझौता की कि हर अमावस्या के पहली रात में वो इस द्वीप पर बहुमूल्य वस्त्र रखेंगे, जिसे ग्रहण कर राक्षस हम गंधर्वों पर कृपा करेगा। कभी धन, कभी भोजन, कभी दास दासी।
1: तो क्रोधित हो तुम्हारे पिता ने तुम्हें राक्षस को भेंट कर दिया।
0: आपका हित इसमें है कि आप यहाँ से चले जाइए।
1: तुम्हें छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर मुझ में अंश भर भी वीरता है, स्त्री के प्रति सम्मान है, राजा के कार्यों के प्रति मान है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकता। तुम निश्चिंत रहो, राक्षस से मैं लड़ूंगा। देखता हूं वो राक्षस कौन है और उसमें कितनी शक्ति है।
0: मैंने तो अपनी प्राण की मोह छोड़ दी। यदि तुम विजयी हुए तो मैं शेष जीवन तुम्हारी रहूंगी।

0: बड़ी सुंदर भेंट भेजी है आज गंधर्व राज ने। अरे तुझे भी भेजा है गंधर्व राज ने?
1: हाँ मैं भी तुम्हारे लिए भेंट लाया।

0: जी, आप ये तीर किसने मारे?
1: हमारी सेना ने। आपकी रक्षा के लिए मैं हमारी सेना लेके आया था।
0: वाह,
1: और यदि आप इसी तरह से पुरस्कार बांटते रहे तो सारा राजकोष खाली हो जाएगा।
0: हाँ महाराज, एक मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि आप कोई गलत निर्णय ले रहे तो मैं आपको रोकूं।
1: ये गंधर्व लोक की कन्या है, हमारे राज्य की भावी महारानी।
2: वल्लभ महाराज की
3: जय!
2: वल्लभ महाराज की
3: जय!
2: वल्लभ महाराज की
3: जय!
4: नई महारानी की
3: जय!
4: नई महारानी की
3: जय!
0: हमारे विवाह की तैयारियां आज से आरंभ की जाएं।
1: यह विवाह पूरी धूमधाम और आनंद पूर्वक होगा, जिसमें राज्य का हर नागरिक भाग लेगा।
3: महाराज की जय!
2: महाराज की
3: जय!
0: आनंद का ये उत्सव पूरे माह चलेगा, जिसमें सारे देश के संगीतज्ञ, गायक, वादक, नर्तक, नर्तकियां और नाटक की मंडलियां आमंत्रित की जाएंगी। हमारी तरफ से सभी दिशाओं में निमंत्रण भेज दिए जाएं। सभी कलाकारों को हम अधिक अधिक और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार देंगे। सभी को सह सम्मान ठहराने की व्यवस्था की जाए। कवियों और चित्रकारों को भी आमंत्रित किया जाए।
2: कला पार्की महाराज वल्लभ की
3: जय!
0: हम उन्हें भी पुरस्कार देंगे। आसपास के सारे महाराजाओं को निमंत्रित करने के लिए हमारे विशेष दूत कल ही चले जाएंगे। पूरे नगर को सजा दिया जाए। पूरा नगर हमारा अतिथि होगा और इस काम के लिए जितने भी धन की आवश्यकता हो राजकोष से ले लिया जाए।
3: महाराज!

0: इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल यकायक रुक गया और उसने विक्रम से किया प्रश्न। मंत्री को राजा के विवाह के समाचार से प्रसन्न होना चाहिए था, फिर वो दुखी क्यों हुआ? उसे इतना गहरा आघात क्यों लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए?
1: जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ।
2: बेताल, मंत्री की चिंता यह थी कि राजा वल्लभ के द्वारा की गई घोषणा और वचन का यदि पालन किया जाए तो राजकोष में इतना धन नहीं है, यदि न किया जाए तो इससे राजा का सम्मान गिरेगा। क्या करे क्या न करे, इसी चिंता और हताशा में निर्णय न कर पाने के कारण वो हृदयाघात से मर गया। एक ओर राजा, दूसरी ओर राज्य। मंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राज्य के हित की रक्षा करे और राजा के सम्मान की रक्षा करे। वो निश्चय नहीं कर पाया कि ऐसे क्षण और ऐसी स्थिति में वो क्या करे।
0: क्षमा कीजिए, आप लोगों से जो मैंने धूमधाम से विवाह संपन्न करने की घोषणा की थी वो मैं पूरी न कर सका। मंत्री जी जो मुझे जीवन भर न समझा सके वो आज अपने प्राण देकर मुझे समझा गए। राज्य का धन जनता की सेवा और जनता के हित के लिए है। हमारी विलासिता, हमारे आनंद और हमारे व्यक्तिगत रुचियों के लिए नहीं है।
3: सोच करके अपना न्याय देता है। तू चुप रहना भी जानता तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, मगर अब मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूं विक्रम।
4: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैम।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, भाजपा के नीरज कुमार को 18,953 मतों से किया पराजित। भाजपा ने कहा पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, हार के कारणों की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को दी बधाई। सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भी। और मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जीत मिली है। उन्होंने भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 14,273 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रही। वे अपना जमानत भी नहीं बचा सकी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: मतगणना के पहले राउंड से ही जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली थी। यह बढ़त 31वें राउंड तक बरकरार रही। उन्हें कुल 49.23% मत मिले। भाजपा के नीरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 34.4% मत मिला। तीसरे स्थान पर रही राजद की रेखा कुमारी को 10.4% मत मिला। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। भाजपा को 35 वर्षों बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। उपचुनाव में कुल 34.31% मतदान हुआ था, जो वर्ष 2010 में अस्तित्व में आए इस विधानसभा क्षेत्र का अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
8: बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और रंग अबीर लगाकर बधाई दी।

0: पार्टी के सूत्रधार और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के लिए बांकीपुर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव का परिणाम एक बड़े बदलाव की शुरुआत है।
1: बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए।
0: पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है।
2: जिन लोगों ने हमारे लिए ये जीत दिलाई है, बांकीपुर की जनता का एक स्वर से हम सब जनसुराज के लोग धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बांकीपुर में लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। जनता बहुत ज्यादा दुखी थी, उन्होंने इस बार मन बना लिया था कि इस मौके पर बदलाव लाना जरूरी है, नहीं तो वो संकेत नहीं दे पाएंगे जो ऐसे समय में प्रजातंत्र को बचाने के लिए दिया जाना चाहिए।
0: इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार मिलने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता होगी।
3: बांकीपुर का लगातार हम लोगों ने विकास किया है, आगे भी बांकीपुर हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे किस कारण से हमें कम मत मिला और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे और जो जीतने वाले प्रत्याशी है उनको अग्रिम बधाई।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी जनादेश का सम्मान करती है।
4: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं।
0: जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि हार से न तो सरकार पर कोई असर होगा और न ही इससे राज्य की राजनीति ही प्रभावित होगी।
5: क्या असर पड़ेगा, 202 का बहुमत है, जनता ने अपार समर्थन दिया है, असर तो पड़ेगा आरजेडी पर, असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। नहीं, नाराजगी नहीं है, ये वोट दूसरे जगह शिफ्ट होता दिख रहा है, जो आरजेडी का वोट वो जा रहा है दूसरे तरफ और हमारा तो जो वोट है वो बिलाई है।
0: राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता मीसा भारती ने कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी।
6: राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा था और राष्ट्रीय जनता दल के जो लीडर्स हैं और सब लोग बैठ करके आकलन निकालेंगे कि आखिर कहां गलती रह गई, कहां चूक रह गई, क्योंकि हम राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के उठाती रही है और बात करती रही है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी की जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि वे जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी प्रशांत किशोर को हार्दिक बधाई दी। राज्यसभा ने आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विधेयक पेश करते हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और पूर्णतः डिजिटल बनाना, भुगतान में देरी कम करना, कारोबार सुगमता बढ़ाना तथा कुछ प्रावधानों को अपराध मुक्त करना है। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा से दूरी बनाने का आरोप लगाया। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 और राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित हुआ, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के बाहर विपक्ष यह आरोप लगाता है कि उसे सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, लेकिन जब चर्चा का अवसर मिलता है तो वह उसमें हिस्सा नहीं लेता।
7: आज दो महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था, इतना इम्पोर्टेंट बिल्स आया है वो हिस्सा नहीं ले रहे, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स पे सब सांसद बोलना चाहिए।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 जुलाई से यह समाचार संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण FM रेनबो चैनल पर भी किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सारण जिले के अमनौर में सबसे अधिक 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 4 अगस्त को राज्य के पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों के एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा तथा सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। एक रिपोर्ट।
2: सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ताधाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जिला मुख्यालयों से संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: मिथिला का लोक पर्व मधुश्रावणी आज से शुरू हो गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नव विवाहिताएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और नाग नागिन की पूजा अर्चना करती हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान को सफल बनाने में बिहार की सक्रिय भागीदारी की अपील की है। आज औरंगाबाद में आकाशवाणी संवाददाता कमल किशोर से बातचीत में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, परिचर्चा और संगोष्ठी आयोजित करने का आग्रह किया।
3: हम बिहारवासियों से अपील करना चाहें और खासकर माननीय विधायकों से, माननीय विधान परिषद से, जो विधानमंडल के सदस्य हमारे जाकर उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में निश्चित तौर पर परिचर्चा कर लोगों से मिलकर गोष्ठी के माध्यम से इस अभियान को एक आंदोलन रूप देने की जरूरत है। जब अभियान आंदोलन बनेगा तो निश्चित तौर पर जनता का सहयोग मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है नशा मुक्त भारत का साकार होगा।
0: नेपाल के दक्षिणी मैदानी और मधेश क्षेत्र में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री पालेन्द्र शाह ने देशवासियों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने मैथिली भाषा में लोगों से भाईचारा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहने की अपील की।
4: हम आम नागरिक, नागरिक समाज, धार्मिक समुदाय, सब आदरणीय अगुवा, सब राजनीतिक दल आ जिम्मेवार संचार के माध्यम सबके धैर्यता आ संयमता अपना के शांति, सद्भाव, भाईचारा आ राष्ट्रीय एकता कायम राख के लिए सरकार के तरफ से हार्दिक अपील कर रहल छी।
0: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि 12 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित होगी, जिसमें संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। वहीं 13 अगस्त को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते। भाजपा के नीरज कुमार को 18,953 मतों से किया पराजित। भाजपा ने कहा, पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, हार के कारणों की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को दी बधाई। सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रमजम, सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रमजम, सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो MJ।

0: सुनिए।
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।

0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 6545-67666।
8: ओम नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
9: बोलबम हर

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
10: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर उप महाप्रबंधक पर्यावरण के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। विस्तृत नियमों शर्तों के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। आवेदन 19 अगस्त 2026 तक भेजे जा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मानव संसाधन प्रभाग द्वारका, नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है स्थानीय बैंक अधिकारी LBO के 545 पदों के लिए आवेदन। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ये लिंक देखिए pnb.bank.in/recruitments। अंतिम तिथि रहेगी 9 अगस्त 2026। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यंग प्रोफेशनल लीगल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत पात्रता नियम और शर्तों के लिए देखिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.nmrcnoida.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप करियर टैब के तहत आवश्यक जानकारी को देख सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन उचित माध्यम से इस प्रकार भेजें कि वे 14 अगस्त 2026 को सायं 6 बजे तक कार्यालय के पते पर पहुंच जाएं। रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन नेशनल लिमिटेड में प्रबंधक विधि के चार पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिकतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। विस्तृत विज्ञापन और रूपरेखा के लिए देखिए वेबसाइट www.ircon.org। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल सेंटर में इन पदों को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चिकित्सा अधिकारी जी एनेस्थीसियोलॉजी एक पद अनारक्षित, चिकित्सा अधिकारी एफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक पद, चिकित्सा अधिकारी ई इंटेंसिविस्ट यानी गहन चिकित्सा एक पद, चिकित्सा अधिकारी ई मेडिकल ऑन्कोलॉजी सॉलिड ट्यूमर एक पद, चिकित्सा अधिकारी ई नाभिकीय औषधि एक पद, चिकित्सा अधिकारी ई विकृति विज्ञान, चिकित्सा अधिकारी ई सर्जिकल ऑन्कोलॉजी प्रभारी अधिकारी डिस्पेंसरी एक पद जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित है। सहायक आहार विशेषज्ञ खाद्य सेवा एक पद अनारक्षित और सहायक आहार विशेषज्ञ खाद्य सेवा एक पद, ये पद भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 शाम 5:30 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर की वेबसाइट tmc.gov.in। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त का कार्यालय जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र आमंत्रित कर रहा है निवारक अधिकारी समूह ख के एक पद के लिए आवेदन। इस संबंध में विज्ञापन पहले भी प्रकाशित हो चुका है और अब आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई जा रही है। रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अगस्त 2026 में प्रकाशन के बाद 45 दिन और आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। नियम और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.jaipursez.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
11: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
13: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक। हर शनिवार समय 10:00 से 2:00 PM तक।
13: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
14: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
15: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
16: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
17: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
14: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
16: सुनिए,
18: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
16: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
18: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
16: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
19: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
18: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
19: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
18: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
20: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
21: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
20: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
21: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
20: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
22: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
23: रेडियो रिमझिम,
22: सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9939365923।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
15: प्रसाद क्लिनिक,
16: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
15: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
16: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
17: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी।
19: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
20: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
19: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
21: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
19: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
22: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
19: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
23: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
19: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
24: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
19: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
0: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भिखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
5: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
2: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
5: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
25: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
25: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
25: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
25: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
26: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
27: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
25: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
25: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
25: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
25: कॉल करें 70-70-75-63 या 70-70-75-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
28: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
29: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
30: ठक ठक।
31: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
30: अच्छा मिला ही नहीं।
31: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
30: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
31: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
30: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
32: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल।
0: टीबी मरीजों को फूड बास्केट का किया गया वितरण। यह हलूम को लेकर दंडाधिकारियों साथ जिला पदाधिकारी ने की ब्रीफिंग। ईवीएम वेयर हाउस का किया गया निरीक्षण। सावन की पहली सोमवारी को उमड़ी सभी शिवालयों में भीड़ और अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने गोपालगंज क्लब में आयोजित कार्यक्रम में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया। यह कार्यक्रम चेंबर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज एवं लायंस क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसके माध्यम से चयनित टीबी मरीजों को पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पौष्टिक आहार के साथ स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण भी आवश्यक है। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में चेहल्लुम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण रोहित कुमार और डीएसपी मुख्यालय तथा अनुमंडल पदाधिकारी सदर डॉक्टर प्रेरणा सिंह और सामान्य शाखा के प्रभारी अजय कुमार सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर समय से पहुंचकर पूरी सतर्कता एवं सजगता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। आज श्रावण की पहली सोमवारी पर जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। माताएं, बहनें और पुरुष श्रद्धालु भी सुबह से ही हर हर महादेव के जय घोष के साथ भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी बड़े शिवालयों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। साथ ही धनेश्वर नाथ और सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भारी जन सैलाब को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारियों ने लगातार काम किया। इसको लेकर आज शांतिपूर्ण तरीके से सभी क्षेत्रों में भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान वेयर हाउस की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी, अग्निशमन एवं सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, लॉग बुक संधारण तथा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रखरखाव का गहन जायजा लिया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. शशि प्रकाश राय को सुरक्षा मानकों के अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा वेयर हाउस की निगरानी व्यवस्था को सदैव सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में कुचायकोट थाना की पुलिस ने रंगदारी के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बसंत शाह को गिरफ्तार किया। यह कुचायकोट के रामगढ़वा निवासी प्रभु शाह का पुत्र बताया जा रहा है। इधर थावे पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे आधा दर्जन प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी गोविंदा मुसहर पिता केदार मुसहर पिता स्वर्गीय तप्ती मुसहर और इनके साथ 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक दूसरे मामले में प्राथमिकी अभियुक्त प्रसाद मुसहर पिता स्वर्गीय भोला रावत उर्फ भोला मुसहर, ये सभी मठ गौतम चौरिया टोला थाना थावे के रहने वाले हैं। इन दोनों पर एक ही मामले में काउंटर केस दर्ज किया गया था और इसी में इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अब दोनों पक्ष से गिरफ्तार आधा दर्जन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं कुचायकोट पुलिस ने 119 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों में ऋतिक रोशन पिता सत्येंद्र सिंह साकिन तरैया जिला छपरा और विधायक राय पिता किताबो राय साकिन विदित कोवा थाना राजेपुर जिला मोतिहारी और तीसरा संजय कुमार पिता चंदेश्वर शर्मा थाना सिवाय पट्टी जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। तीनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थावे पुलिस ने भी 11 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विदेशी टोला में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां से शराब के साथ अभियुक्त योगेंद्र शाह उर्फ भूअर, पिता झगरू शाह जो विदेशी टोला थावे का रहने वाला है, और मनोज प्रसाद, पिता स्वर्गीय भरत प्रसाद, यह भी विदेशी टोला थावे का निवासी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। विजयपुर थाना की पुलिस ने भी 27 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुसहरी बाजार मछली हत्ता के पास छापेमारी की, जहां से शराब तस्कर मंगल राम को गिरफ्तार किया गया। यह मुसहरी बाजार के ही भूजल राम का पुत्र बताया जा रहा है। जादोपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त विनय यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह गुमनिया थाना बिशंभरपुर के बबुना यादव का पुत्र बताया जा रहा है। उत्पाद पुलिस ने एक क्रेटा कार से 720 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पकड़ा है। यह कार्रवाई कुचायकोट के जलालपुर कुर्म टोला रोड पर पुलिस ने की, जहां से गाड़ी और शराब को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें तस्कर शुभम शर्मा जो महुआ टोला थाना कुचायकोट का निवासी है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इसका एक साथी भीम यादव जो बिशंभरपुर के सिसवा का रहने वाला है, यह फरार हो गया है। पुलिस ने दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी शुभम शर्मा के बयान पर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जन समस्याओं को सुनने के बाद उसे निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने का प्रयास किया। जादवपुर थाना की पुलिस ने रामपुर टेंगराही गांव में 15/7/2026 के हुए एक फायरिंग के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी के किनारे अवैध शराब के क्रय विक्रय को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से 22 लीटर अवैध देशी शराब, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया था। इसी मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर तकनीकी अनुसंधान शुरू किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम का भी गठन किया था और इस टीम के द्वारा जांच पड़ताल करते हुए इस मामले में नामजद अभियुक्त मुकेश यादव, पिता साधु यादव, साकिन भगवानपुर थाना नौतन जिला पश्चिमी चंपारण को बरईपट्टी तीनमुहानी के समीप से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे भी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थावे के सेंट्रल बैंक के बाहर रखी एक मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। इस घटना को लेकर बरगछिया गांव निवासी करण कुमार सिंह ने थावे थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मानिकपुर निवासी वाईबी गिरी की मां सोना देवी का 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव मानिक

0: संभावना है, बारिश की संभावना बनी हुई है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो रिमझिम के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। टीबी मरीजों को फूड बास्केट का किया गया वितरण। यह हलूम को लेकर दंडाधिकारियों साथ जिला पदाधिकारी ने की ब्रीफिंग। ईवीएम वेयर हाउस का किया गया निरीक्षण। सावन की पहली सोमवारी को उमड़ी सभी शिवालयों में भीड़ और अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रामझिम 94.4 FM पे समय 9:20 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को सावन की पहली सोमवारी को ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो रामझिम परिवार की तरफ से। अब कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे कुछ मैसेज है और मैसेज लिखा गया है कि सुनो सर नमस्कार, मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से मैसेज किए हुए, कहते हैं कि हमें भी SMS फरमाइश में, मैं भी SMS फरमाइश में जुड़ गया हूं और हमें भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है जीना सिर्फ मेरे लिए। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में दीपक एंड जेलर जी, आप बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा नाम सत्यम है श्यामपुर से और गाने का नाम है जो पेड़ लगाए थे पहले, यही गाना सुना दे। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, यदि ऐसे गाने हमें मिलते हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कितना दर्द है मोहब्बत में तन्हाई अलग जुदाई अलग, वेवफाई अलग और घर वालों को पता चले तो कुटाई अलग, सुनो भाई नमस्कार। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और लिखे हुए कि रोशनी क्या हुई रात को, भूल गई हो सूरज क्या निकला चांद को, भूल गई हो माना मुलाकात नहीं होती कुछ दिनों से, तुम तो याद करना भूल गई हो, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप। और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। रोहित जी देहरादून से जुड़े हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं गजाला विदेशी टोला से और मुझे गाना सुनना है और गाने का बोल है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और पहले श्रोतागण की फरमाइश हम पूरी करते हैं। मनीष राजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से मैसेज किए हुए हैं, गाने का बोल देते हैं, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रामझिम 94.4 FM पे।

4FM सुन रहे आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा गाना सुन रहे थे हम सभी। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है आप सभी को, तो पुराने गाने या 90s के गाने की फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश बेझिझक आपको हम सुना सकें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप? और बिल्कुल बढ़िया है। आशा चौहान मिले सराफरा परसौनी से जुड़ी हैं, तो बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सर? मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से जुड़ी हैं, कहती हैं कि मस्त सुपर सॉन्ग, बिल्कुल। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गुड आफ्टरनून, मुझे गाना सुनना है। ओह, कई मैसेज पहले से भी किए हुए, अभी मैसेज किए हुए हैं। गुड नाइट सर, मैं श्यामदेव मांझी भीदबिरवा गोपालगंज से, और मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय, मैं पल्लवी कुमारी मीरगंज नरेनिया से, और मुझे फूल और कांटे फिल्म का गाना सुनना है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। बस आपसे निवेदन है कि आप कौन से गाने सुनना चाहती हैं, उस गाने का भी नाम बता दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर, मेरा फरमाइश है, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और बने रहे हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और अगली फरमाइश हम प्ले करते हैं दीपक एंड जेलर जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 94.4 FM पे।

रेडियो रिमझिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और काफ़ी प्यारा शो दोस्त सुन चुके हैं हम सभी और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कौन सी जगह से आप मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और यहाँ पे कुछ आगे भी मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और अगले गाने की फरमाइश भी हम पूरी करते हैं। और अगले गाने की फरमाइश हम बता दें किन की होगी और इस मैसेज को करती हैं गजाला विदेशी टोला से और गाने की फरमाइश करती हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है, मैसेज शामिल कर लें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि सर मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपका मैसेज तो मेरे पास पहुंचा हुआ है, हम पढ़ भी चुके हैं और आप शायद नहीं सुन पाए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा गाना बज गया, क्या सुनो सर। बिल्कुल आपके गाने तो बज गए और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर मेरे को भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फ़िलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं खुशी उपाध्याय पसन्मा से और कौन से गाने सुनना है। ओ चलिए इश्क न करना गाने की फरमाइश की, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं पलवी। तो बिल्कुल आपकी मैसेज भी हमारे पास पहुंची है और आपकी भी फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है और आप बन रहे हमारे साथ। थोड़ा सा सब्र करें, आपकी भी नंबर आएगी और आपके भी गाने बजेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं और सुनते हैं गजाला की।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84 710 3992 या 9765 65 750।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: Excuse me boss, you have a text message.
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल के...
5: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कई, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, हेलो, प्रणाम, सलाम मेरे तरफ से प्यारे प्यारे और लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती विलेज उझोलिया उचका गांव प्रखंड से, और मेरे भी हाजिरी लगा दीजिए, सॉन्ग है ये हो मैडम जी मान जाइए, डेडिकेट करती हूँ ऑल लिसनर को। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, और आज मैं 11 दिन बाद जुड़ी हूँ शो से, तो बिल्कुल स्वागत है। कहते हैं कि तो मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग नेम दम दम डमरू बजाए ले, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है। आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, और सिंगर पवन सिंह की आवाज़ में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सावन की पहली सोमवारी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैसेज लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, सभी दोस्तों को सलाम बोल लीजिएगा, और मैं साजिया नवादा से, और सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है, और बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। अगली फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और इस गाने की फरमाइश करते हैं गणेश स्थान माझा से अजय कुमार मिश्रा जी, और गाने का बोल देते हैं मुकेश का कोई भी गाना। तो चलिए मुकेश जी की गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं। अभी हम सभी मुकेश जी के आवाज़ों में गाने सुन रहे थे और दर्द भरा सॉन्ग, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज करती हैं पल्लवी कुमारी और गाने की फरमाइश करती हैं फूल और कांटे मूवी से। गाने का बोल, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज हम मिल कर ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुकेश का प्यारा सा सॉन्ग सुनाने के लिए। अजय कुमार मिश्रा जी मैसेज करते हैं, चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए और इंतज़ार करने के लिए। आगे बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा कहाँ गया, तो बिल्कुल आपका भी है और एक एक करके ही तो फरमाइश हम पूरी करेंगे। मैसेज करती हैं खुशी उपाध्याय, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि मेरा नंबर कब आएगा, बिल्कुल एक एक करके ही तो आएगा, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और सबको ही अपने अपने गाने के लेकर इंतज़ार में लगे हैं, तो एक एक करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ढेर सारी मैसेज आती जा रही है तो मैसेज को रोकते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, तुमसे मिलने को दिल करता है।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के,
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। सुपर सॉन्ग लाजवाब, माई फेवरेट सॉन्ग। और मैसेज करती है निशा भारती। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा नहीं बजेगा क्या? तो बिल्कुल आपका बजेगा, लेकिन क्या है किया जाए। आपसे भी तो पहले कई लोग मैसेज किए हुए हैं, वो भी तो अपने गाने को लेकर इंतज़ार में लगे हैं कि मेरा भी बजे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बोलबम का गाना था सर, सेवा में लागल बानी भोले बाबा के। ओ तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन समय तो बहुत निकल चुके हैं। और इस मैसेज को करते हैं अपना नाम कहीं नहीं दिए हुए मंकेश साहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल मंकेश साहनी जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा फरमाइश सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पल्लवी कुमारी। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि

हाय सोनू बाबू, कैसे हैं? सावन की पहली सोमवार की आपके सभी यूनिट और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे हमें भी एक सॉन्ग सुनाए भाई, रफ़ी जी की स्वर है तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल स्वागत है और आगे मैसेज इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। तो बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे प्ले करते हैं। और यहाँ पे

अगले गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को करते हैं भीम भारती। और गाने का बोल दिया गया है, जीता जीता था जिसके लिए मरता था। तो इसलिए आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ। और इस मैसेज को छपरा बिहार रसूलपुर थाना पंचायत बलिया गांव बलिया से मैसेज किया गया है। तो आप यदि सुन रहे हैं तो थोड़ा सा मैसेज एक और कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप अपने पसंद के गाने सुन चुके। तो फिलहाल गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम छिम 94.4 FM पे।

कमाल के शाम रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि कहो उसी से जो ना कहे किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले नसीब से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए खुशी से। सुपर सैड सॉन्ग दिलवाले मूवी से मैसेज करती हैं निशा भारती। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा नहीं बजेगा क्या असर, आज बजा दीजिए। तो क्या ही करें, एक ही करके तो सबकी फरमाइश पूरी कर रही हैं, कर ही रहे हैं, और सब कोई एक ही मैसेज कर रहा है कि मेरा और हमारा नहीं बजेगा क्या। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स सर, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए, भीम भारती जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश करती हैं इश्क न करना, इस मैसेज को करती हैं खुशी उपाध्याय पसरमा से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं। यहाँ पे राजू जी जुड़े हुए मधुसरिया से और कहते हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, तो आज तो नहीं सुना पाएंगे, कई मैसेज हमारे पास पहले से भी पहुँचे हुए हैं और कई अभी आ रहे हैं, तो कोशिश है, देखते हैं आगे कितना हम सुना पाते हैं, बहुत कम समय है। आगे गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: इश्क
1: बिल्कुल इश्क ना करना। और इस गाने के फरमाइश की थी खुशी पसरमर से, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कई, और आगे मैसेज इनके तरफ से पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सर, लास्ट उम्मीद था। चलिए, आपकी उम्मीद पूरी हुई और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश हम देखते हैं। अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं निशा भारती की, और इनके तरफ से गाने का बोल दिया गया है ये हो मैडम जी मान जाइए ना। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और चलिए 18 तो बहुत पीछे छूट चुका है, अभी 26 चल रहा है। और इस गाने की फरमाइश की थी निशा भारती, मैसेज करते हैं थैंक यू सो मच। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस गाने की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोतागण सत्यम जी हैं श्यामपुर से, और गाने की फरमाइश किए हुए भजन टाइप्स। तो चलिए अंतिम में आपके गाने हम प्ले करते हैं, क्योंकि आप थोड़े अलग ही गाने के फरमाइश किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके गाने को हमने रोक रखा था। और आपकी फरमाइश को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और आगे से ध्यान रखिएगा कि आप जनरल साधारणतः गाने की फरमाइश करिएगा, ताकि कहीं भी कभी भी बज सके और आपके गाने को हमें रुकना पड़ा। और चलिए आगे, कई मैसेज हमारे पास है तो मैसेज को शामिल तो नहीं कर पा रहे और ना ही गाने के फरमाइश पूरी कर पा रहे हैं। आगे एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ था और उसमें कई बार लिखा गया है कि मेरा नहीं सुनाइएगा क्या, और ये नए गाने की वजह से हम इनकी फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कबूल है कबूल है कबूल है तेरी बेवफाई मुझे कबूल है, इसी करके गाने का नाम दिया गया है। और हमने गाने को ढूंढ रखा था लेकिन गाने नहीं होने के कारण इनकी फरमाइश हम रुक रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश हम सत्यम जी की पूरी करते हैं और इनकी फरमाइशों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, बहुत समय आगे निकल रहे हैं हमारे समाप्ति से। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो रमझिम 94.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

मुझे लग रहा है हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं जो इस भजन को पहले सुन चुके होंगे, है ना? एक बार हाथ उठाइए जिन्होंने भी हमारे इस भजन को पहले सुन लिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। थोड़ा हारमोनियम का आवाज ज्यादा कर देना, बढ़ा देना थोड़ा थोड़ा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: झलम
1: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: All right।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: भारती जी बोल रही हैं?
1: नहीं।
2: अच्छा, मनोरमा मैम।
1: जी,
2: मैं गाना सुनना है। जी मैम, कैसी हैं आप?
1: जी मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
2: हम भी ठीक है
1: जी। तो अपना नाम बता दीजिए।
2: मैम मीता देवी नाम है।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रही है?
2: हाजीपुर।
1: अच्छा, तब बताओ।

0: सब बढ़िया। आप अपना बताइए, क्या कर रही हैं?
1: मैं दोपहरिया का खाना बना रही हूँ। आज तो पहला ना सोमवार है।
0: पूजा पाठ हो गया ना?
1: जी मैम, हो गया।
0: चलिए, तब तो फास्टिंग होंगी।
1: हाँ, फास्टिंग है मैम। रिजल्ट संडे नहीं है, एगो गाना है कि अब पटरी नहीं जानी चांदनी सिंह बनी। रितेश पांडे के एगो शिव जी के गाना नहीं दिखा,
0: दो लाइन गा के बता देती तो।
1: मैम पहले वाला हम भूल गए हैं। अरे वो नहीं बोले कि अब पटरी नहीं भांग नहीं पिसाई तो पटरी नहीं जमी।
0: हाँ हाँ,
1: चांदनी सिंह बोल, वही सुना लीजिए मैम।
0: अच्छा ठीक है, और सुनवाना भी है जी
1: आपको? भारती मैम को, समी मैम को, और खांडे वाला जो नंबर है उससे लगाते हैं ना तो कभी भी नहीं लगता है मैम। बड़ा वाला मोबाइल से लगे
0: नहीं, छोटा वाला से भी लग सकता है, और बड़ा वाला दोनों से
1: मैम नहीं लगता है। लगाते हैं ना कभी कभी, माने हम लोग ज्यादा नहीं लगाते हैं, ए वाला में लगाते हैं। उतना करना नहीं आता, इंग्लिश नहीं पढ़े हैं लोग थोड़ा।
0: तो कॉल के माध्यम से? कोई बात नहीं, कॉल के माध्यम से आप जुड़ सकती हैं।
1: मैम जब भी लगाते हैं ना नंबर तो याद है, 72, 77, 16, 65 मगर नहीं, मैंने और दिन करते थे ट्राई मगर नहीं लगता है। लगता है मैम कि मेरा मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है।
0: नहीं नहीं, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब कॉल कर रही हैं तो कोई या फिर यहाँ पे दिक्कत होगा या फिर
1: बोल रहा था, वही बता रहा बताता था, हमेशा बताता है।
0: हाँ हाँ, नेटवर्क इश्यू की वजह से।
1: हाँ तो वही बताता है। अच्छा कोई बात नहीं, आपसे बात हो जाता है, वही बात वही की बात है। ठीक है मैम,
0: तो गाना प्ले करते हैं। नमस्ते, गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है मैम, ठीक है
0: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम का कवास्ता जिला गुना का।
1: नमस्ते
0: जी, भारती जी बोल रहे हैं ना आप?
1: नहीं,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: हाँ, उस दिन बात हुई थी ना आप।
1: जी जी,
0: शुक्रवार को लगाया था मैंने।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, अभी तो हमारे घर पर ही है।
1: क्या
0: अभी तो घर पर है हम तो।
1: अच्छा
0: जी
1: जी, तो फरमाइश बता दीजिए।
0: फरमाइश सुनवा दीजिए, वो रंग से लंबा करना है।
1: कौन सा?
0: वो वाला है ना, तुमने देखे मेरी यहाँ इसमें क्या मेरी कथा है, कुमार सानू हल्का गाया है आवाज है।
1: जी जी,
0: और क्या?
1: और गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है ना ये गाना हमारे दोस्तों के लिए।
1: ओके
0: जी।
1: अच्छा, आप रेडियो रिमझिम को कितना समय से सुन रहे हैं?
0: रेडियो रिमझिम सुन रहा है, पाँच छह महीने हो गए। अभी जब उस बात हुई थी उनसे, अरे सोनी जी मैडम थी, उससे बात हुई थी पहले शुरू में।
1: अच्छा अच्छा, तो रेडियो रिमझिम के बारे में आपको कैसे पता चला?
0: जी हमने चला कर देखा इसलिए।
1: अच्छा,
0: लोग सुनते हैं रिमझिम के कार्यक्रम उनको।
1: अच्छा, कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम?
0: रेडियो रिमझिम कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं, कार्यक्रम आते हैं जे और विविध भारती से भी जुड़ा हुआ है हम तो, सभी कार्यक्रम सुनते हैं आपके।
1: अच्छा, रेडियो रिमझिम के मतलब कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है आपको?
0: सबसे कार्यक्रम तो यही अच्छा लगता है, फोन इन प्रोग्राम समय मिल जाता है तो सुनते हैं जी, और समाचार वगैरह सभी सुनते हैं हमसे, टाइम मिल जाता है तो।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो ये रेडियो रिमझिम को आप कैसे सुनते हैं?
0: मोबाइल ऐप पे।
1: मोबाइल ऐप के जरिए?
0: हाँ।
1: अच्छा चलिए बढ़िया। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम बारिश हो रही है अभी तो।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: बोल रहे हैं जिला गुना ककवासा गांव।
1: अच्छा, और अपना नाम क्या बताया है?
0: गोपाल ओझा।
1: अच्छा जी, तो आपका गाना प्ले करें? जी, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है, हमारे दोस्त है सुनील साहब, ज्योति साहब, जीतन दाता है, उन्हीं के लिए।
1: अच्छा ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी करिए।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: क्या हाल है
3: जी? बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
2: हम भी बढ़िया है, नाश्ता हो गया?
3: हो गया। और आपका?
2: हाँ हो गया है।
3: हाँ, क्या हो रहा है?
2: बस ऐसे ही बैठे हैं। सुनिए ना, जब हम व्हाट्सएप पे मतलब वो आस पास देते हैं तो बचता नहीं है?
3: बचता है, 12 बजे से चालू होता है वो तो।
2: हाँ
3: जी, तो बचता होगा।
2: नहीं, मेरा मैसेज नहीं किया जाता है।
3: क्या ना, बहुत सारे मैसेज आए रहते हैं तो कहीं उसी को पहले देखूंगी।
2: क्योंकि हम 2-3 साल से भेज रहे हैं और मेरा मैसेज ही नहीं चेक हो रहे हैं। उसके बाद भी भेजते हैं कि मेरा कब बजेगा तो भी नहीं चेक किया जाता है। और कल भी भेजे थे, कल भी नहीं चेक हुआ है।
3: हम उनसे बोलते हैं कि अपना नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: शाजिया नवादा से।
3: तो मौसम कैसा है उधर का?
2: हाँ, हरियाली है, हरी भरी। उधर का मौसम कैसा है?
3: इधर का भी वही सुहाना मौसम हुआ है,
2: बहुत सुहाना हुआ है।
3: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
2: आज की फरमाइश अभी सोच रहे हैं।
3: बिल्कुल,
2: आज मैं बल्कि आई थी तो पीछा कबर में लग ही गया, तो सोचने का भी मौका नहीं मिला।
3: कोई ना, आप आराम से सोच के बता सकती हैं।
2: वो गाना है ना, हम दम की कसम हम दम न मिला, वही वाला बता दीजिए।
3: दो लाइन गा के सुना सकती हैं?
2: ये तो हम सुन ले, मेरी भाभी बताई है तो हम उसका लिंक
3: करें। कोई बात नहीं है।
2: अब ये सॉन्ग सबसे पहले आपको सुनाना चाहती हूँ और सभी लिस्नर को, मेरे पुराने सभी मतलब जो भी जुड़े हैं और अपने घर में सबको सुनाना चाहती हूँ।
3: तो सादिया जी, आप रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनती हैं?
2: हम मोबाइल से सुनते हैं, मोबाइल एक छोटा वाला खदाया है उसी में सुनते थे। पहले रेडियो था, अब वो रेडियो खुद भी आते मोबाइल से सुनते हैं।
3: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो रेडियो रिमझिम का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
2: हमको बुहाई सर बहुत अच्छा लगता है।
3: चलिए बढ़िया। तब आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है ना?
2: हाँ अलहमदुल्ला सब ठीक है, आप ना बताइए।
3: जी यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। ठीक है साजिया जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
2: थैंक यू मैम।
3: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बस रेडियो सुन रहे हैं यहाँ पर। और
0: बढ़िया, तो क्या हो रहा है?
1: बस बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ?
0: आपके मौसम बनाया हुआ है
1: हमारे यहाँ, रात भर का पानी गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। और क्या
0: जी, अब तो सावन चालू है तो बारिश तो हो गई।
1: जी जी जी, आज चला सोमवार है, बारिश हो रही है, बोलेना काम कर रहे हैं।
0: जी तो आज का फरमाइश बता दीजिए।
1: जी आज की फरमाइश है मैडम जी, पिक्चर का नाम है अंधा कानून और गाने के बोले यही है टाइटल सॉन्ग, ये अंधा कानून है। और सबसे पहले ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा, और गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल जी है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ जी है। हेलो
0: जी। जी वैसे क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं, खाना खा के फ्री हुए अभी, मैंने सोचा कि कॉल लगाया जाए, बहुत दिन ट्राई कर रहा था, अब जाके लगाया ये।
0: अब लग गया ना?
1: जी जी। तो ये गाना कब तक बजेगा मैडम जी मेरा?
0: ये गाना आपका कल बजेगा।
1: कल बजेगा
0: जी।
1: ठीक है, धन्यवाद
0: जी। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 एफएम।
1: थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: थैंक यू, कैसी है मैम?
2: जी बढ़िया है, आप कैसी हैं?
3: सब बढ़िया मैम। मुझे गाना सुनना है।
2: बता दीजिए।
3: ओल्ड मूवी है, इज्जत मूवी है, और उस मूवी का गाना है ये दिल तुम दिन कहीं लगा नहीं, तो वो गाना मुझे सुनना है। और वो गाना मतलब पूरा बजाइएगा
2: जी। और गाना किसी को सुनाना भी है?
3: सबसे पहले आपको और सारे लिसनर्स को।
2: ओके, वैसे आपका नाम?
3: खुशी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, गोपालगंज।
2: अच्छा खुशी जी, मतलब आप गोपालगंज में है, कहाँ से बोल रही हैं?
3: गोपालगंज एक देरवा से
2: जी। तो क्या कर रही हैं खुशी जी?
3: जी अभी तो आपके पास कॉल कर रहे थे, मुझे तो
2: अब लग गया ना आपका कॉल।
3: हाँ वो अब तो 10 मिनट बाकी रह गए, हमको लगा कि आज लगेगा ही नहीं कॉल।
2: नहीं देखिए लग गया ना।
3: हाँ
2: जी, तो आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है?
3: हाँ सब सब सब अच्छा।
2: चलिए अच्छी की बात है। तो खुशी जी आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनती हैं?
3: हमें ऐसे तो स्टडी टाइम में तो थोड़ा कम टाइम मिलता है, बट ऐसे जब टाइम मिलता है तो सुनती हूँ। और ये नंबर हमेशा याद रहता है कि जब भी मुझे छुट्टी हो या टाइम मिले तो कॉल कर दीजिए।
2: मतलब रेडियो रिमझिम को मतलब कैसे सुनती हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मतलब ऐप के जरिए सुनती हैं या फिर?
3: वो तो मैं हमेशा सुनती हूँ, मतलब जैसे मैं सेल फोन नहीं यूज करती हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी स्टडीज के टाइम मतलब नहीं चलाता है फोन इसलिए। ओके मैम, मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा।
2: जी जी, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: थैंक यू।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: सुधीर कोलपुर जिला देवघर झारखंड से।
0: जी अपना नाम क्या बताना?
1: सुधीर कोलपुर जिला देवघर झारखंड।
0: ओके, क्या हाल चाल है सुधीर जी?
1: बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
0: जी जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: आप भर्ती में बोल रहे हैं या मनोरमा में?
0: हेलो जी,
1: आप भर्ती में बोल रहे हैं या मनोरमा में बोल रहे हैं?
0: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
1: जी जी जी, आपसे दूसरी बार बात हो रही है।
0: जी तब क्या हो रहा है?
1: क्या हो रहा है, ट्राई करते करते अब लगी है सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 11 बजे से कोशिश करते हैं लगाने का। आज सुना लीजिए मैम, सावन बोलवन का गीत है, 36 बास और सावित्री कर्मकार का कथा बोलवन गीत है। बोलवन है सोन सावन के महीने में, ठीक है बोलवन है आए बोलोगे
0: जी। आप 2 लाइन गा के सुना सकते हैं?
1: जी, आए बिलोगे धन सावन के महीना हुआ तरह के गीत के बोल।
0: ओके, और डेडिकेट भी है?
1: जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रिंगी को पूरी टीम को और जितने भी लिसनर हैं सब को सुनाना चाहता हूँ। और कुछ कह रहे हैं मदन को लें, विष्णु प्रसाद यादव है, भोलानाथ को लें, कृष्ण को लें, राजकुमारी है, युगल को लें, कमली को लें, इन पर सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं?
1: जी मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगी 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद

0: आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 एफएम में। जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
2: मैं भी ठीक हूं। और उधर मौसम कैसे
1: है? मौसम तो बारिश हो रही है। जी अपना नाम बता दीजिए।
2: रहमत अंसारी
1: जी, कहाँ से बोल
2: रहे हैं? अभी तो मैं कश्मीर में हूँ।
1: अच्छा जी,
2: हमको एक गाना सुनी थी,
1: बता दीजिए।
2: गाने का बोला है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ये गाना आपको मेरी रिंगी सुनने वाले बताएं, सबको सुनाना चाहते
1: हैं। जी तो आपका गाना अपनी करते हैं जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगी 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 एफएम में।
0: जी, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है?
0: हमारा तो ठीक है, अपना बताइए।
1: जी, मेरा भी बढ़िया है।
0: पहचान लिए?
1: नहीं, आवाज से तो पहचाना हुआ लग रहा है, लेकिन नाम बता दीजिए।
0: अच्छा, हमारे फरीदा पड़ेगा ना, फरीदा खातून
1: जी।
0: इस बार हाँ, सौ बार जुड़े है ना। हाँ, तो जब भी कॉल करते हैं तो लगता नहीं है, कब सीचे पड़ता है तो कब बीजी बीजी बीजी बीजी जाते, इसलिए हम नहीं जुड़ पाते। आज सुनिएगा, सुनने का आपका बहुत लज्जाबाद चल रहा है इस वक्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हम सब सुन रहे हैं
1: जी। पैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: हम सिवान जिला से। सिवान जिला से
1: मतलब
0: रेडियो से नहीं चलता है ना? उस बगल से।
1: अच्छा जी,
0: जी हाँ। तो बोलते हैं कि वॉइस मैसेज कब से चलता है? 12 बजे से लेकर कब तक चलता है?
1: 4 बजे तक।
0: अच्छा, तो नंबर एक बार बोल दीजिएगा।
1: वो नंबर तो मुझे याद नहीं है, उसमें बताया जाता है, आप एक बार सुन लीजिएगा।
0: जी जी, लाइफे तो बोलिएगा, इस तरह से मत बोलिए, लाइफे तो बोलिएगा ना, तो हम सब ले लेंगे। गाना बजा सकते हैं?
1: बिल्कुल।
0: तो अपना परिचय नहीं दिया, आपका नाम क्या पड़ेगा मैम?
1: जी, मेरा नाम मनोरमा।
0: कितना लचीला नाम है, कितना मधुर सा है, बोली कितना बन जाएगा।
1: अच्छा जी, बिल्कुल आपके जैसा है ना।
0: नहीं, हमारे तो बोलते थे ना मोटा है, आप इतना
1: नहीं, नहीं, है, आप बहुत नहीं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, इसीलिए तो आपको बोली, आपको पहचान रहा है, लेकिन नाम बताने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो इसीलिए पूछे आपका नाम।
0: जी जी जी जी, नहीं नहीं, तो पहचान लीजिएगा धीरे धीरे, जब तो गाना हमको सुना दीजिए।
1: बता दीजिए
0: गाना क्या बोल है, याद है नहीं, दूसरा गाना सुना दे हम।
1: जी जी, बिल्कुल
0: ये गाना सुना दीजिए हमको।

0: सर
1: जी आप तो बहुत अच्छा गा लेती हैं।
0: नहीं आप जैसे आप लोग थोड़ी हम सब गाते हैं क्या?
1: नहीं ऐसा बात थोड़ी, आप बहुत अच्छा गा ले रही हैं।
0: अच्छा जी थैंक यू।
1: तो यही गाना सुनिएगा।
0: हाँ यही गाना सुना दीजिए, स्पेशली आपके लिए है, आपसे पहली बार बात हो रहा है ना।
1: जी जी
0: आपके के लिए ये गाना है।
1: ओके और क्या भी लोगों को डेडिकेट है?
0: जी जी बात नाम भादे।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले आप हैं
1: जी,
0: उसके बाद शहादत अंसारी जी है, रवि जी है, उर्मिला जी है, और क्या बोलते रामदेव जी है, संतोष जी है, अरमान लाख जी है, आज इतना रील जी में दोस्त हमारे सुन रहे हैं लोग पागल से नहीं रील है उनका के लिए है, स्पेशली गाना याद करिए यही।
1: ओके जी
0: ओके बाय।
1: गाना प्ले करते हैं आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009494911। जी हाँ, 8009494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार,
2: आवाज बहुत कम आ रहा है।
3: क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक है, आप बताइए। इशाद मास्टर बोल रहे हैं ग्राम तनाव से।
3: ओके, क्या हाल चाल है इशाद जी?
2: ठीक है, अपना सुनाइए। मुनम्मा जी।
3: जी जी।
2: और सब?
3: और सब बढ़िया है। आप अपना बताइए, क्या हो रहा है?
2: अरे हम लोग का सिलाई हो रहा है, खेत रुका रहा था, रुका गया, लगे हैं काम में। कार्यक्रम चल रहा था सुबह से। सब रेडियो रिमझिम परिवार ठीक है आप लोग?
3: कोई बढ़िया जी। तो फरमाइश बता दीजिए।
2: फरमाइश वह लगा रहे थे 11-5 में, तो बहुत बिजी पता है, तो छोड़ दिए कि लास्ट में लगाएंगे, तो दो बार लगाए बस लग गया। उसे निगाहें मूवी के गाना सुनवा दीजिएगा।
3: जी,
2: निगाहें मूवी, सावन के झूलों में, सावन के झूलों में मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
3: ओके।
2: और सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और जितनी रेडियो रेंजी में सभी लोग सुनेंगे, हम लोग भी सुनेंगे। जनाव से रोशन टेलर में काम करते हैं हम लोग
3: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
2: जी
3: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है मैम,
0: तब क्या हो रहा है? हाँ
1: आइए बर्फ खाने।
0: जी,
1: हम जानी मैम हमको भूल गई।
0: नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं?
1: बहुत 80 बार फोन किए हैं, 80 बार।
0: अच्छा जी।
1: देख लीजिए।
0: वो क्या ना कि मतलब एक कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता है।
1: जी,
0: इसीलिए
1: मौसम कैसा है इधर? दो फल
0: मौसम तो सुहाना है।
1: बहुत सुहाना है। हम सब गाना सुना दी।
0: जी, गाना सुनाएंगे। आप अपना नाम बता दीजिए जी एक बार और।
1: अफाक आलम,
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बिहार बरारी हरके।
0: बिहार में कहाँ से?
1: बरारी हरके।
0: अच्छा,
1: अपना दुकान है।
0: किस चीज का दुकान है?
1: टेलर, बॉम्बे टॉप टेलर।
0: अच्छा,
1: जान रही हूँ। हम जानी मैम हमको भूल गई है।
0: नहीं,
1: गाना सुना दीजिए मैम।
0: जी बता दीजिए।
1: अब भी 1 घंटा पहले बज रहा था, 2-3 मिनट तो भी बता दी। फादर के मदर के बारे में।
0: कौन सा?
1: फादर मदर मैंने माता पिता के।
0: अच्छा अच्छा
1: याद आ गया।
0: 2 लाइन गा के सुना सकते हैं?
1: नहीं मैम उतना नहीं, आप सुने नहीं उठा रही, वो कर गया।
0: अच्छा कोई बात नहीं, आप गाना थोड़ा भी बता दीजिएगा तो हम बजा सकते हैं।
1: जी मैम, फादर मदर कब तक?
0: जी गाना आपका कल बजेगा
1: 7 बजे।
0: जी, 5 से 7 के बीच।
1: मैम तो हम ये खाली चढ़ाई की 5 से 7 बजे तक तो मेरा नाम सुनवाई है।
0: वो क्या ना कि बहुत सारे कॉल आ जाते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है।
1: आज नहीं हो पाए,
0: कोशिश रहेगा कि आज ही हो जाए। जी,
1: ठीक है मैम।
0: जी वैसे क्या करते हैं आप?
1: मैम अभी पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई करते हैं?
1: 8वां क्लास की, अभी 8वां में।
0: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
1: अच्छी चल रही है मैम, आज नहीं गए।
0: क्यों?
1: मैम इसी तरह आज गाना सुनने को मन।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया।
1: ठीक है मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकू 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिम 90.4 FM में।
3: मनोरमा जी ना?
2: जी जी।
3: और क्या बात है, ये तो पहले नंबर तो सावन के पहला सोमवार के हार्दिक बधाई आपको, आपको पूरी टीम को।
2: जी जी आपको।
3: और ये आज ये 30 बार कॉल किया तो लगा दी के बाद भी नहीं उठा, इसके बाद में तीसरी कॉल हो गई, आज परेशानी हो गई।
2: अच्छा जी।
3: आज कितना बिजी चल रहा है,
2: क्या करिएगा, कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता।
3: पानी पीने का फुर्सत नहीं मिलता है।
2: नहीं नहीं,
3: इतने कॉल दस 12 के पहले उठी होगी, इतने कॉल आ चुकी है।
2: अभी तो 7-8 कॉल हो चुका है।
3: चलिए और तो सुनाइए।
2: जी सब बढ़िया। आप अपना नाम बता दीजिए।
3: मैं तुम्हारे मित्र दिल्ली से।
2: तो क्या हाल चाल है आपका?
3: ठीक है, थोड़ी पहचान लीजिए यार, गाने हो गए।
2: पहचान तो रहा है लेकिन नाम नहीं याद मुझे।
3: वही तो पहचान होना चाहिए ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। पिछले बार भी आप आइए, बहुत अच्छा बात करने करने की शैली आपकी बहुत अच्छा है। तो आप पूछते हैं ना क्या करते हैं, कितने दिन से घूमते हैं, ये तो पूछने की शैली हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूछनी चाहिए। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में सुना हूँ ना, तो अली सुना हूँ आपका रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत किसी से पूछे हैं क्या करते हैं, कितने दिनों से सुनते हैं, कैसा लग रहा है। ये पहली बार किसी ने कहा ये करने की बहुत बढ़िया। और तो तबियत पानी सही चल रहा है?
2: जी जी सब बढ़िया।
3: और सोनी जी से बात होता है? नहीं, सोनी जी से बात होता है कि नहीं?
2: बात तो होता है, सोनी जी तो अभी नहीं आएंगे क्योंकि छुट्टी पे हैं अभी। और कुछ
3: वो तो मुझे पता है छुट्टी पे है, लेकिन आने का कोई प्रोग्राम अभी नहीं है?
2: नहीं अभी तो कोई नहीं है, टाइम लगेगा,
3: लगना भी चाहिए, अपनी अपनी जिंदगी है। तो आज कुछ मायूस आपकी आवाज लग रहा है क्यों?
2: नहीं कुछ नहीं,
3: बहुत तो धीरे बोल रहा है।
2: अच्छा आवाज स्लो आवाज आ रहा है?
3: स्लो भी आ रहा है, ऐसे माइक माइक एकदम बोल रहा है।
2: नहीं जी, तो फरमाइश बता दीजिए आज का।
3: मेरा फरमाइश है अपना पटवारी का है, गाना ही सॉन्ग है बोलबम का, हमसे धनिया ना पिसाइए गाने के पर। ये गाना आपको और भारती मैम को, सोनी मैम को, सोनू सर को, जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सबको सुनाना चाहता हूँ। तो आज का गा दीजिएगा, बढ़िया रहेगा।
2: चलिए तो गाना प्ले करते हैं आपका।
3: इंतजार रहेगा
2: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार।
0: शाम से बोला था, मैं शाम से महेंद्र राउत।
1: जी नाम बता दिए अपन।
0: महेंद्र राउत का शाम से
1: अच्छा
0: गाना है वो सुना कर रहा, मैंने देश प्रेमी भोजपुरी गाना है वो।
1: अच्छा
0: देश प्रेमी भोजपुरी वो गाना सुने कर रहा, बहुत दिन से लगाओ था, 140-142 बार लगाऊनी तो अभी
1: गई जगह। अच्छा जी, गाना बहुत सारा कॉल आवत रहे
0: तो बहुत हम करे के पड़ा ला। शाम में तो बहुत बाढ़ भयल बा, उन्हें कोई कम था खबर
1: इन्हें भी बारिश होता।
0: शाम के तो बाढ़ के खबर मिलने हुई सब के ऊके,
1: लेकिन गोपाल के एरिया में बाढ़ नहीं की आई, उन्हें देहात के एरिया में आई
0: बा। तो बाढ़ है शाम में जो रात शिव सागर चराए देव कहल जाला, एकदम पानी का गोटे गाँव चल गए, बहुत माना 100 आदमी गए पानी में दहा के। और सब ठीक बात है?
1: चलिए बढ़िया।
0: चलिए तब गाना सुना दी हमारे सुने वाला बालो, हम दानी चकी कला प्रार्थना सुनील अनिल और श्रोतागण सब सुनाएं गाना।
1: गाना रहा और काल बजी
0: काल हो जाए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को

0: बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश के जैसा मौसम बनाया हुआ है।
1: ठंडा मौसम है ना। गाना सुनना चाहते हैं मैडम
0: जी? बता दीजिए।
1: हम तो गाना सुनना चाहते हैं, सब भूखे हुनर में हरारे मिले हुनर, वो गाना नहीं है। प्रमोद करेली का गाना सुनना है।
0: ओके, तो ये गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हमारा मुकेश मिश्री है, उनको सुनाना चाहते हैं। जितना लोग सुन रहे हैं आने वाले सब किसी को सुनाना चाहते हैं। और आपको भी?
0: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
1: ऐसे हम काम करते हैं, हेल्पर ही है, घर बना रहे हैं। घर बना रहे हैं, जुड़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो अभी कहाँ है? यहीं पे।
1: हाँ, काम कर रहे हैं, काम पे ही।
0: अच्छा,
1: मौसम अच्छा ऐसे ही मौसम होना चाहिए सावन का। सोनी मैडम कहीं गई है क्या मैडम?
0: हाँ हाँ, छुट्टी पे है।
1: कितना दिन के लिए गई है?
0: अब आएंगे।
1: चलिए ठीक है मैडम, बजेगा ना शाम के गाना?
0: जी जी बजेगा।
1: ठीक है मैडम, इंतजार करेंगे हम।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
0: इसके दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार क्षेत्र संग्राम वाराणसी प्रदीप चंपारण बिहार से संजय कुमार का।
1: ओके, कैसे हैं संजय जी?
0: एकदम बिल्कुल बढ़िया। आपने सुनाइए, आप कैसे हैं? आप रेडियो पूरे इंजिन सबको कैसे हैं
1: जी? सब कोई बढ़िया
0: है। चलिए, इसके दिल से धन्यवाद है। आज तो पहले तुम्हारी है तो कहीं ना कहीं लिए बहुत बहुत धन्यवाद होंगे
1: जी। जी आपको भी,
0: आपको भी रेडियो परिवार सभी और सब सुनाइए, उधर का हाल खबर सुनाइए
1: जी। सब बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। बारिश हुआ है कि नहीं आजकल?
1: बारिश तो हो रहा है।
0: आज नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, कल हम लोग तो कल बरसा है, अभी नहीं बरसा
1: है। इधर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है बारिश।
0: जी जी जी, मौसम सुहाना है।
1: मौसम सुहाना है।

0: क्या हो रहा है?
1: अभी तो कोई ना, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है हमारे, अभी तो रूम पे बैठे हैं, आपसे बाहर आ गए हैं। खेती बाड़ी हो रहा है तो अभी तो अभी अभी काम लगा है, तो कुछ लोग गए हैं कार्य करने के लिए, चल रहा है। जी, आज आज गाना सुना दीजिए। सावनी गाना तो बात करता है।
0: कौन सा?
1: सावनी गीत बात करता है।
0: हाँ हाँ बात है।
1: सावनी हिंदी गाना बात करता है ना?
0: हाँ हाँ बजेगा।
1: तो गाना एक बजा दिए। जय शंभु कहो, शंभु कहो, इसी तरह से गाना है, सुना दीजिए।
0: सुनाएंगे। और ये आप गाना किस किस सुनवाना चाहते हैं?
1: क्रिकेट में, क्रिकेट में सबसे पहले आपको, आपके रेडियो परिवार संपूर्ण परिवार को कृष्ण हो गया। शखान से मोहम्मद सारे जी गाने लगता था कुछ आज की पगहा से अजित कुमार कला दर्पोर्डम से नगे स्वामी दीपक दास जयगान छात्रे जिन्नता दर्जन उन्हें ऑर्डर से हमारे नाम से जाना चाहते हैं दोस्तों। विशेष करके रेडियो बिल्डिंग से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार का राजिंदर भाभी आसंतलाल गौतम उत्तर प्रदेश का है। विशेष करके उनको सुना हम अभी आपके विदा लेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका गाना प्ले करते हैं।
1: थैंक यू।
0: सुनते रहिए सबके साथ।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: नमस्कार मैडम जी, कौन बोल रहे हैं? भारती जी बोल रही है, सोनी जी बोल रही है?
2: मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
3: अच्छा, आज मेरी पहली बार बात हो रही है मैडम जी आज।
2: जी,
3: खाना हो गया आपका?
2: और आपका?
3: मेरा भी हो गया।
2: चलिए बढ़िया, नाम बता दीजिए अपना।
3: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
2: ओके, तब क्या हाल चाल है आपका?
3: बस रेडियो सुन रहे हैं आपका, और क्या है।
2: चलिए बढ़िया, तो बता दीजिए फरमाइश।
3: फरमाइश है, पिक्चर का नाम है घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी घोड़ी चने के तेत में।
2: एक बार फिर से बता दीजिए।
3: पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी घोड़ी चने के तेत में।
2: ठीक है, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
3: जी, ये सोनी जी मैम को है, भारती मैम को है, आपको है और अपने गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है और जितेंद्र धाकड़ जी है।
2: तो
3: और जितने सभी रेडियो और रिमझिम सुन रहे हैं उनको सबके लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
2: ओके
3: जी
2: जी, तो आपका गाना प्ले करें।
3: कब बजेगा ये
2: गाना आपका? कल बजेगा।
3: ठीक है
2: जी, तो गाना प्ले करते हैं।
3: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
2: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
0: मधुसरिया से बोल रहे हैं, राजकुमार।
1: अच्छा,
0: संग सुनना है
1: जी, बता दीजिए।
0: बोलबम के खेसारी लाल के आवाज में कोई भी अच्छा संग बजा दीजिएगा।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है किसी को?
0: रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: तब क्या हो रहा है, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, आज काम पर नहीं गए, छुट्टी में है।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाड़ी उड़ी चलाते हैं खेत पर।
1: और रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं?
0: यही मोबाइल में।
1: इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं नहीं, रेडियो हेडफोन के माध्यम।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। और ये रेडियो रिमझिम कितने समय से सुन रहे हैं आप?
0: हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम?
0: अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कैलाश से धुआं धुआं है।
3: अरे गाओ, काहे मन मार के बैठल बड़ू, कोनो प्रॉब्लम बा?
4: ए जी, एगो बात कही।
3: कहो।
4: बड़ा मन करता देवघर जाए के जी।
3: तब
4: देखी न बाबा, कई दिन से सपना में आओ तनी, अपना नौगरी में बुलावा तनी।
3: सपना तो हम देखते हैं, लेकिन क्या करी, पैसे नहीं खेरे।
5: ए साल रहेगा, पर साल चल जाये, ठीक बा? गाड़ियों खाली नहीं खिसा।
4: तो हम अब की बार ना मानो, हम तो जेबे करो।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: Your phone.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हाँ भाई भैया कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तिर्या छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति काव कहा थे सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।